बीटिंग वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 और 40 सेकंड हुए हैं। आरंभ हो रही है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: मीडियम वेव 241.5 4 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच टीआरएम 1233 किलोहर्ट्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया। इसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम अभियान शामिल है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्वीप

0: द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। G7 देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जाँच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वादा किया। G7 ने कैंसर का इलाज ढूंढने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान NMBA के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहल का भी अनावरण करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज मुंबई के वर्ली साइकिल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि ये आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता के एक अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स OTT प्लेटफॉर्म वेव्स और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। खेती की बातें कार्यक्रम में मक्का की खेती विषय पर जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
2: किसान भाइयों, आज हम मक्का की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। खेत की तैयारी के लिए एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें तथा अन्य 2-3 जुताइयां देसी हल अथवा कल्टीवेटर से करनी चाहिए। मक्का की भरपूर पैदावार लेने के लिए उर्वरकों का संतुलित प्रयोग आवश्यक है। किसान भाइयों को चाहिए कि वे पहले मिट्टी की जांच करा लें, फिर उसी अनुसार उर्वरकों का प्रयोग करें। अगर मिट्टी की जाँच संभव न हो तो सामान्य संस्तुति के अनुसार उर्वरक देना चाहिए। मक्का की जो देसी किस्में हैं

0: उन्हें कम उर्वरकों की आवश्यकता होती है। लेकिन जो संकुल किस्में हैं उनमें देसी प्रजातियों की तुलना में ज़्यादा उर्वरक देना पड़ता है। अगर आप संकर किस्में बो रहे हैं तो सबसे ज़्यादा उर्वरकों की आवश्यकता होती है, यानी संकर किस्मों के लिए 120 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से तत्व के रूप में प्रयोग करना चाहिए। मतलब ये कि अगर 1 हेक्टेयर खेत है तो लगभग 250 किलोग्राम यूरिया, 370 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 95 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की आवश्यकता होती है। और यदि 1 बीघा खेत है तो कुल लगभग 62 किलोग्राम यूरिया, 92 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 24 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की आवश्यकता होगी। अगर आप संकुल प्रजातियां बोते हैं तो प्रति हेक्टेयर 80 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश तत्व के रूप में देना चाहिए। कहने का मतलब ये कि 1 बीघा खेत में 20 किलोग्राम नत्रजन, 10 किलोग्राम फास्फोरस और 10 किलोग्राम पोटाश यानी 42 किलोग्राम यूरिया, 61 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और लगभग 16 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश उर्वरक के रूप में देना चाहिए। अगर देसी प्रजातियां बोते हैं तो प्रति हेक्टेयर 132 किलोग्राम यूरिया, 184 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 48 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश। कहने का मतलब ये कि 1 बीघा में 33 किलोग्राम यूरिया, 46 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 12 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की आवश्यकता होगी। इन उर्वरकों का प्रयोग किस तरह से करना है उसे भी जान लें। चाहे संकर किस्में हों, संकुल हों या देसी किस्में, नत्रजनी उर्वरकों की आधी मात्रा तथा फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा कूड़ों में बुआई के समय बीज के नीचे डालना चाहिए तथा शेष नत्रजन को 2 बराबर बराबर भाग में बांटकर टॉप ड्रेसिंग के रूप में 2 बार में प्रयोग करना चाहिए। पहली टॉप ड्रेसिंग बुआई के 25 से 30 दिन बाद तथा दूसरी नर मंजरी निकलते समय देनी चाहिए। यह अवस्था संकर मक्का में बुआई के 50 से 60 दिन बाद एवं संकुल मक्का में 45 से 50 दिन बाद आती है। अगर खेतों में दीमक का प्रकोप होता है तो लिंडेन की लगभग 30 किलोग्राम मात्रा आखिरी जुताई के समय प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिला देना चाहिए। मक्का में जिंक की कमी प्रायः हो जाती है। इस तत्व की कमी से पत्तियों के नस के दोनों ओर सफ़ेद लंबी धारियां बन जाती हैं, तो अगर जिंक की कमी की संभावना हो तो अंतिम जुताई के समय 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिला देना चाहिए। मक्का की बुआई कूड़ों में ही करनी चाहिए तथा कूड़ से कूड़ की दूरी 60 सेंटीमीटर रखते हैं। केवल D765 और कंचन प्रजाति के लिए कूड़ से कूड़ की दूरी 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बीज की बुआई लगभग 5 सेंटीमीटर की गहराई पर करते हैं। मक्का की जो उन्नतशील प्रजातियां हैं उन्हें भी जान लें। गंगा 2, गंगा 5, गंगा 11, प्रकाश, JH 3189 मक्का की संकर किस्में हैं। मक्का की जो संकुल किस्में हैं वह हैं तरुण, नवीन, कंचन, श्वेता, D765, सूर्या, आज़ाद, उत्तम और नवज्योति। तो इनमें से जो भी प्रजातियां आप बोना चाहें लेकर के बुआई करें। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर मक्का की खेती करनी चाहिए।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में मक्का की खेती विषय पर जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। खेती की बातें कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:10 हो चुके हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम आराधना।

परमात्मा भक्त के हृदय स्थल में विराजते हैं। वो भक्त के हर श्वास प्रश्वास को संचालित करते हैं। वो जीवन के प्राण हैं, वो ही जीवन के मूल आधार हैं। ऐसे प्रभु के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हैं।

भक्त प्रभु से अपने आराध्य से मिलना चाहता है। उसके क्षण के दर्शन मात्र को उसके सजल नेत्र तरसते रहते हैं। ऐसे प्रभु की हम वंदना करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं।

0: आराधना कार्यक्रम में आज आपने उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन, विदुषी गिरिजा देवी, प्रीति सागर और लक्ष्मी शंकर के स्वरों में भक्ति रचनाएं सुनी। आराधना कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु। विचार बिंदु कार्यक्रम में आज की कड़ी का शीर्षक है संकल्प शक्ति।
1: सन 1910 में जर्मनी की एक ट्रेन में एक 16 वर्षीय किशोर यात्रा कर रहा था। पैसे के अभाव में वो टिकट न ले सका। टिकट निरीक्षक को देखते ही उसने सीट के नीचे छिपने की कोशिश की, पर वो टिकट निरीक्षक की नजरों से बच नहीं सका। उसने किशोर से टिकट मांगा। टिकट तो उसके पास था नहीं, पास में अखबार का एक टुकड़ा पड़ा था। किशोर ने उसे हाथ में उठाया, मन में संकल्प किया कि ये टिकट है, और उसने टिकट निरीक्षक के हाथों में वो टुकड़ा थमा दिया। मन ही मन ये संकल्प दोहराता रहा कि हे परमात्मा, उसे वो कागज का टुकड़ा टिकट दिखाई पड़ जाए। उसके आश्चर्य का तब ठिकाना न रहा जब देखा कि निरीक्षक ने उस कागज के टुकड़े को वापस लौटाते हुए ये कहा कि क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारे पास जब टिकट है तो सीट के नीचे छिपने की आवश्यकता क्या है? अबाउट माई सेल्फ पुस्तक में वुल्फ मेसिंग नामक एक रूसी परामनोवैज्ञानिक इस घटना का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि उस दिन से मेरा पूरा जीवन बदल गया। पहले मैं अपने आप को असहाय, असमर्थ और मूर्ख समझता था, पर उस घटना के बाद ये विश्वास पैदा हुआ कि मेरे भीतर कोई महान शक्ति सोई पड़ी है जिसे जगाया और उभारा जा सकता है। उन प्रयत्नों में मैं प्राणपण से लग गया और सफल भी रहा। सन 1910 से 1950 तक मैसिंग को दुनिया भर में ख्याति मिली। उसकी संकल्प शक्ति की विलक्षणता का परीक्षण अनेक बार विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के समक्ष किया गया। स्टालिन जैसा मनोबल संपन्न व्यक्ति भी मैसिंग से डरने लगा। भयभीत होकर स्टालिन ने उसे गिरफ्तार करा लिया। स्टालिन को सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं था। मैसिंग की परीक्षा उसने स्वयं ली। उसने मैसिंग से कहा, तुम मेरे सामने अपने सामर्थ्य का परिचय दो। वो सहर्ष इसके लिए राजी हो गया। स्टालिन ने आदेश दिया, कल 2 बजे तुम्हें छोड़ा जाएगा। एक व्यक्ति तुम्हें मास्को के एक बड़े बैंक में ले जाएगा। तुम्हें बैंक के कैशियर से 1,00,000 रुपए निकलवाकर लाना होगा, पर ध्यान रहे, तुम मात्र अपनी वाणी का प्रयोग कर सकते हो, किसी शस्त्र का नहीं। दूसरे दिन पूरे बैंक को सैनिकों से घिरवा दिया गया। 2 व्यक्ति छद्म वेश में मैसिंग के पीछे पीछे चल पड़े ताकि वो किसी प्रकार की चाल न चल सके। ट्रेजरर के सामने उसे खड़ा कर दिया गया। मैसिंग ने जेब से एक कोरा कागज निकाला, एकाग्र नेत्रों से देखा और ट्रेजरर को दे दिया। ट्रेजरर गौर से उस कागज को उलट पलट कर देखकर आश्वस्त हो गया कि वो एक चेक है और सही है। उसे अपने पास रखकर उसने 1,00,000 रुपए मैसिंग को दे दिए। उन्हें लेकर वो स्टालिन के पास पहुंचा और रुपए सौंप दिए। सारा विवरण जानकर स्टालिन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इतने पर भी स्टालिन को उसकी संकल्प शक्ति

0: पर पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। उधर मैसिंग वो धनराशि लेकर खजांची के पास पहुंचा, पूरी बात बताई। उसने चेक समझकर रखे हुए कागज को दोबारा देखा तो वो अब मात्र कोरा कागज था। धनराशि वापस करते हुए मैसिंग ने खजांची से कहा, महोदय क्षमा करें, यह संकल्प शक्ति का एक छोटा सा प्रयोग था। आपको इसका दंड न भुगतना पड़े इस कारण रुपए लौटाने आ गया। पूरे प्रकरण के पश्चात स्टालिन ने मैसिंग से पूछा, यह असंभव कार्य तुमने किस प्रकार और किस शक्ति के सहारे किया? मैसिंग बोला, यह और कुछ भी नहीं, संकल्प बल का एक छोटा चमत्कार है। मैंने मात्र इतना किया कि मन को एक विचार, एक लक्ष्य के लिए एकाग्र किया। मैसिंग के द्वारा स्टालिन को एक नया सूत्र हाथ लगा कि मनुष्य के भीतर कोई ऐसी अविज्ञात शक्ति विद्यमान है जो प्रत्यक्ष सभी आयुधों से भी अधिक सामर्थ्यवान है। उसके द्वारा असंभव स्तर के कार्य भी पूरे किए जा सकते हैं। स्टालिन ने मैसिंग की अतीन्द्रिय सामर्थ्य के परीक्षण के लिए नामोर नामक एक मनः शास्त्री को नियुक्त किया, जो अपने समय का मनोविज्ञान का मूर्धन्य विशेषज्ञ माना जाता था। लंबे समय तक उसने मैसिंग का अध्ययन किया। अंततः उसने घोषणा की कि मन की अचेतन शक्ति चेतन की तुलना में अधिक सबल है। उसे उभार कर अच्छे बुरे दोनों ही तरह के काम लिए जा सकते हैं। मैसिंग के भीतर का अचेतन प्रचंड रूप से जागृत है। उसी के माध्यम से वो प्रचंड संकल्प की प्रेरणा देकर दूसरों को सम्मोहित कर लेता है और अपने प्रयोजन में सफल हो जाता है। वस्तुतः ये सारा चमत्कार संकल्प शक्ति का है। साधना द्वारा हर कोई ये शक्ति अर्जित कर सकता है।
1: विचार बिंदु कार्यक्रम में आज की कड़ी का शीर्षक था संकल्प शक्ति। आलेख एवं वाचन स्वर अरुण पांडे का था। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
2: मैं डॉक्टर अंबिका प्रसाद यादव आज आप लोगों से साथ ये बात करना चाहता हूं कि ब्लड प्रेशर ना हो इसके लिए हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए, ब्लड प्रेशर ना हो इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि हमें अपना वजन नियंत्रित करना चाहिए, अपना खान पान दुरुस्त करना चाहिए, हमें अपनी बुरी आदतें छोड़नी चाहिए। बुरी आदतें, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, टोबैको च्यूइंग करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। खाने में हरी साग सब्जियां, फल फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। खाने में अधिक वसा युक्त चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए। कहते हैं ना कि ज्यादा फैटी फ्राइड चीजें नहीं खाने चाहिए। और खाने में हमें नमक की मात्रा को नियंत्रित करना चाहिए। खाने में हमें दाल सब्जी में जो एक कुक्ड साल्ट है या पका हुआ नमक है वही लेना चाहिए, वो भी ज्यादा नहीं होना। जो अनकुक्ड साल्ट खाते हैं, जैसे खाने में अलग से नमक डालते हैं, फल भी खा रहे हैं उसमें नमक डाल लिया, कोई और भी चीज ले रहे हैं तो उसमें एक्स्ट्रा नमक डाल लिया, ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर होने की संभावना ज्यादा होती है। और स्ट्रेस को कम करना चाहिए। आज लोग हमेशा स्ट्रेस में रह रहे हैं, हम वही फैटी फ्राइड फ्रूट ज्यादा खा रहे हैं और कोई नियमित व्यायाम नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की संभावना होती है। तो अगर हमें ब्लड प्रेशर से बचना है तो अपने खाने में हरी साग सब्जियां, फल फ्रूट का सेवन बढ़ाना होगा। हमें कुछ साबुत चीजें दाने खाने चाहिए, जैसे भुना चना, भिगोया चना, अंकुरित चना, ये सब चीजें लाना चाहिए, भुना हुआ चना, ये सब चीजें लेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर हम अपने खाने में घी तेल की ज्यादा लेंगे तो इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और खाने में अगर नमक भी ज्यादा सेवन कर रहे हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और अगर हम अपना दिनचर्या नियमित नहीं कर रहे हैं, अगर हम रात को कायदे से सो नहीं रहे हैं, हमें नींद नहीं आ रही है, नींद सही तरीके से नहीं ले रहे हैं, हमेशा तनाव में रह रहे हैं, ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो अपने को चाहिए कि हरी साग सब्जियां, फल फ्रूट्स का सेवन ज्यादा करें, नियमित व्यायाम भी करें। व्यायाम से भी शरीर स्वस्थ रहता है और व्यायाम से स्ट्रेस कम होता है। स्ट्रेस कम होने की वजह से, तनाव कम होने की वजह से ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। तो हम लोगों को चाहिए कि एक नियमित रूप से व्यायाम करें, हरी साग सब्जियां फल फ्रूट का सेवन ज्यादा करें, स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल ना लें और खाने में नमक की मात्रा नियंत्रित करें। अगर हम इन चीजों पर ध्यान रखेंगे तो हम अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर किसी को ब्लड प्रेशर एक बार हो ही गया है तो उसको नियमित रूप से अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ब्लड प्रेशर की जांच करानी चाहिए और ब्लड प्रेशर के हिसाब से जो डॉक्टर दवाएं देता है उसको रेगुलर खाना चाहिए। आजकल क्या हो जाता है कि एक बार लोग डॉक्टर के पास गए, एक बार दिखा के चले आए, एक दवाई लिख दिया, वो खा रहे हैं, दोबारा उसके पास जाते ही नहीं। लोग लगता है कि हम ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर

0: ठीक है, नहीं आप जाइए डॉक्टर पे नियमित रूप से विजिट करिए, कम से कम हर 2-3 महीने पे तो मिलिए, अगर हर महीने नहीं मिल सकते तो। अगर डॉक्टर को लगता है कि नहीं इस दवा से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है, तो वो दवा की मात्रा बढ़ा सकते, और जितनी दवा पे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है वो दवा रेगुलर लेते रहिए। कई बार कुछ लोगों के दिमाग में ये भ्रांति है कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ गया तो हमें दवा नहीं खानी है, और कई बार लोग दवाई छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर आप दवाई छोड़ दोगे तो सडन जो बीपी बढ़ता है उसकी वजह से कई बार नाक से खून जा सकता है, इसे एपिटैक्सिस बोल सकते हैं। कई बार उससे हो सकता है कि ब्रेन की नस अगर फट जाएगी तो सेरिब्रल हैमरेज बोलते हैं, आपको फालिज हो जाएगा। तो नियमित रूप से आपको जितनी दवा पे ब्लड प्रेशर नॉर्मल है वो दवा खाते रहना चाहिए, और डॉक्टर के पास नियमित रूप से जाके अपनी जांच करानी चाहिए। अपने खान पान को दुरुस्त रखिए, शारीरिक व्यायाम करिए, ब्लड प्रेशर नियंत्रित रखिए, खाने में ज्यादा नमक का सेवन ना करें, और डॉक्टर के पास नियत समय पर जाके अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं। अगर इन सावधानियों को ध्यान करेंगे तो आपको ब्लड प्रेशर की वजह से कोई भी समस्या नहीं होगी।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आपने असामान्य रक्तचाप से होने वाली समस्याएं और समाधान विषय पर डॉक्टर अंबिका प्रसाद यादव से ये जानकारी सुनी। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ।

मंडप में श्रीराम और सीता का विवाह संपन्न हो चुका है। दूल्हा दुल्हन अब एक आसन पर बैठे हैं। पुत्र के विवाह संस्कार के साथ पिता के मन में अपने वंश वृक्ष के फूलने फलने की कल्पना मूर्त रूप धारण करने लगती है। वशिष्ठ मुनि की आज्ञा पाकर राजा जनक ने अन्य कन्याओं मांडवी श्रुतकीर्ति तथा उर्मिला को मंडप में बुलवाया। कुशध्वज की ज्येष्ठ कन्या मांडवी, जो गुण शील सुख और शोभा की प्रतिमूर्ति थी, पूरे विधि विधान के साथ राजकुमार भरत को ब्याही गईं। उसी प्रकार उर्मिला का ब्याह लक्ष्मण से हुआ। सुंदर नेत्रों वाली श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की भार्या बनी। अपने चारों पुत्रों को वधुओं सहित देखकर अवध नरेश ऐसे आनंदित हो रहे हैं मानो उन्होंने यज्ञ श्रद्धा योग तथा ज्ञान इन चार राजसी क्रियाओं द्वारा अर्थ धर्म काम और मोक्ष प्राप्त कर लिया हो।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ। गायक कलाकार थे श्रीकांत पारगांवकर और रवींद्र साठे। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। बीटीएम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर। कार्यक्रम विवरण में आइए सुने आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत हेडिंगले लीड्स में भारत और नीदरलैंड्स के बीच खेली जाने वाली क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे। आज शाम 6:30 से इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। युवावाणी कार्यक्रम में आज शाम 5:15 पर युवा श्रोता सुनेंगे आज की बात। कार्यक्रम मार्गदर्शन के अंतर्गत दर्शन शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए करियर की संभावनाएं विषय पर युवा साथी सुनेंगे प्रोफेसर सतीश चंद्र दुबे से बातचीत। साथ ही युवा श्रोता सुनेंगे यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 5:00 और शाम 6:10 पर। कुछ बातें कुछ गीत आप सुनेंगे दिन 2:30 पर। प्रस्तुति शुचि उपाध्याय की होगी। नंदलाल रवि और साथियों के गाए लोकगीत आप सुनेंगे 9:50 पर और दिन 1:45 पर। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में दिन 1:15 पर। अन्य कार्यक्रमों के अलावा बहने सुनेंगी कार्यक्रम जायका और गीत संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दिन 12:45 पर आप सुनेंगे संजय वर्मा का विचित्र वीणा वादन। 7:31 पर आप सुनेंगे विदुषी कृष्णा चक्रवर्ती का सितार वादन। सुगम संगीत के कार्यक्रम में दिन 12:30 पर भजन प्रस्तुत करेंगे कुमार अम्बरीश चंचल। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन 12:00। व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस आप सुनेंगे दिन 11:00। फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार आप सुनेंगे दिन 10:00। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा आप सुनेंगे 8:45।

0: 40 मिनट पर और गुड मॉर्निंग बनास आप सुन सकते हैं अब से कुछ ही पलों बाद यानी सुबह 7 बजे। श्रोताओं हम आपको याद दिलाएं आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत हेडिंगले लीड्स में भारत और नीदरलैंड्स के बीच खेले जाने वाले क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे आज शाम 6:30 से। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। युवावाणी कार्यक्रम में आज शाम 5:15 पर युवा श्रोता सुनेंगे आज की बात। कार्यक्रम मार्गदर्शन के अंतर्गत दर्शन शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए करियर की संभावनाएं विषय पर युवा साथी सुनेंगे प्रोफेसर सतीश चंद्र दुबे से बातचीत। साथ ही युवा श्रोता सुनेंगे यूथ डायरी इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में दिन 1:15 पर अन्य कार्यक्रम के अलावा बहने सुनेंगी कार्यक्रम जायका और गीत संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दिन 12:45 पर आप सुनेंगे संजय वर्मा का विचित्र वीणा वादन। सुबह 7:31 पर आप सुनेंगे विदुषी कृष्णा चक्रवर्ती का सितार वादन। सुगम संगीत के कार्यक्रम में दिन 12:30 पर भजन प्रस्तुत करेंगे कुमार अम्बरीश चंचल। नंदलाल रवि और साथियों के गाय लोकगीत आप सुनेंगे दिन 1:45 पर और सुबह 9:50 पर। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। संस्कृत में समाचार थोड़ी देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: ईएम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। फ्रांस देशस्य एवियन नगरे G7 शिखर सम्मेलनावधौ प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना विभिन्नानां राष्ट्राणां नेतृभिः सह द्वैपाक्षिकोपवेशनं कृत्वा विस्तृतं कूटनीतिक कार्यं विहितम्। विदेश मंत्रालयानुसारं प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना तथा तस्य कनाडा देशस्य समकक्षीयेण मार्क कार्नी इत्यनेन च भारत कनाडा देशयोः संबंधेषु सकारात्मकतायाः स्वागतं कृतम्। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर इत्यनेन सह मिलित्वा प्रधानमंत्री श्रीमोदी 35th दूरदृष्ट्यांतर्गतं भारत यूके संबंधानां प्रगतिं समीक्षितवान्। प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलनावधौ UAE अध्यक्षेण शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान इत्यनेन सहापि मिलितवान्। तथा च पश्चिम एशिया क्षेत्रे चिरस्थायी शान्तिं सुरक्षां स्थिरतां च प्रवर्धयितुं संवादस्य कूटनीतेः अन्ताराष्ट्रिय विधेः सार्वभौमत्वस्य प्रादेशिक अखण्डतायाश्च सम्मानस्य महत्वम् अधोरेखितम्। केन्या देशस्य राष्ट्रपतिना विलियम रूटो इत्यनेन सहापि श्रीमोदी मेलनं कृतवान्। श्रीमोदी अवदत् यत् भारतं केन्या च वैश्विक दक्षिणस्य आकांक्षासु दीर्घकालं यावत् सहभागित्वं कुर्वन्ति। जापान देशस्य प्रधानमन्त्रिणा सह मिलित्वा श्रीमोदी अवधानं दत्तवान् यत् भारत जापान देशयोः सम्बन्धः विविधेषु क्षेत्रेषु निरन्तरं सुदृढं भविष्यति। फ्रांस देशस्य एवियन नगरम अद्य वैश्विक कूटनीतेः केन्द्रः अस्ति यत् G7 शिखर सम्मेलनस्य महत्वपूर्णे चरणे अस्ति। भारतस्य सहभागी देशस्य रूपेण सहभागित्वेन सर्वेषां दृष्टिः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेन सह बहुप्रतीक्षितायां द्वैपाक्षिक सम्मेलने दृढतया निबद्धः अस्ति यत् अद्य शिखर सम्मेलनावधौ भविष्यति। 25th फरवरी मासे वाशिंगटन डीसी इत्यत्र अंतिम वारम मेलनानंतरम उभयोः मध्ये एतत् प्रथमं मेलनं भविष्यति। अद्यतनस्य संवादस्य समये तौ बहुविध क्षेत्रेषु द्वैपाक्षिक सहयोगं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यतः। तथा च

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस।

हेलो हाय नमस्कारम सुप्रभातम गुड मॉर्निंग बनारस, क्या हाल है? सब बढ़िया, मस्त, जबरदस्त और चकाचकना? हाँ जी, मैं भी बिल्कुल मस्त, जबरदस्त और चकाचक हूँ। दोस्तों, सूरज की सुनहरी किरणों ने गंगा के पावन जल को अपने सुनहरे रंगों से रंगना शुरू कर दिया है। मंदिरों की घंटियां गूंज रही है, घाटों पर आस्था की डोर और भी मजबूत हो रही है और हवाओं में घुल रही है काशी की वही पुरानी सुकून भरी खुशबू। तोड़ जाइए जनाब, दिल खोल कर मुस्कुराइए और अपने इस नए दिन का स्वागत कीजिए, क्योंकि हर सुबह अपने साथ नई उम्मीदें, नए अवसर और नई खुशियां लेकर आती है। तो बिना देर के फटाफट से अपने रेडियो और मोबाइल सेट का बढ़ा लीजिए वॉल्यूम और चाय की गर्मा गर्म चुस्कियों के साथ सुनिए अपना फेवरेट और नंबर वन मॉर्निंग शो दवन एंड ओनली गुड मॉर्निंग बनारस, जहां सुबह की शुरुआत होती है सकारात्मक विचारों, मधुर संगीत और काशी की खूबसूरत बातों के साथ। और साथ ही कीजिए आज के अपने मॉर्निंग साथी शुचि का स्वीकार, प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग।

0: पड़ी।
1: हाँ जी, जल्दी जल्दी उठ जाइए जनाब, इससे पहले कि आप कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आजकल गुड मॉर्निंग बनारस में हम आपको सैर करा रहे हैं अपनी काशी के घाटों की, उनसे जुड़ी कहानियों की और किस्सों की। दोस्तों, काशी के घाट सिर्फ पत्थरों की सीढ़ियां नहीं है, बल्कि ये इतिहास, आस्था, संस्कृति और जीवन के अनगिनत रंगों को अपने भीतर समेटे हुए हैं। हर घाट की अपनी एक कहानी है, अपनी एक पहचान है और अपनी एक अलग अनुभूति है। इन्हीं घाटों की श्रृंखला में आज हम आपको लेकर

चल रहे एक ऐसे घाट की ओर जो अपनी सादगी, शांति और स्थानीय जीवन की झलक के लिए जाना जाता है। तो आइए गंगा की ठंडी हवाओं का एहसास करते हुए काशी की इस अनमोल धरोहर गुलेरिया घाट की ओर ले चलते हैं और जानते हैं इससे जुड़ी कहानियों को और इसकी विशेषताओं को।

वाराणसी के ऐतिहासिक घाटों में से एक गुलरिया घाट है, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। 20वीं सदी तक ये गुलरिया घाट दांडी घाट का हिस्सा था, लेकिन 1821 में बनारस के प्रतिष्ठित व्यापारी लल्लू जी अग्रवाल और बाबू सागरमल के संयुक्त प्रयास से इसे अलग पहचान मिली। घाट का ऊपरी हिस्सा एक प्राचीन मंदिर और कुश्ती स्थल को समेटे हुए है, जो यहाँ की परंपरा और इतिहास को जीवंत बनाता है। इसके अलावा द्वारका के शारदा पीठ की एक शाखा भी यहाँ स्थित है, जहाँ गिरुआ वस्त्र धारण करने वाले दंडी तपस्वी साधना करते हैं। गुलरिया घाट, जो कभी 20वीं सदी की शुरुआत तक दांडी घाट का हिस्सा था, ये वाराणसी के ऐतिहासिक धरोहर का भी एक अहम हिस्सा है। इस घाट के नाम के विषय में मान्यता है कि इसका नाम एक विशाल गुलर के पेड़ के नाम पर रखा गया था, जो यहाँ के सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का प्रतीक है। बात करें इस घाट के जीर्णोद्धार की, तो सन 1958 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने गुलरिया घाट का जीर्णोद्धार और संरक्षण कर इसे नई पहचान दी। इस घाट के किनारे स्थित विशिष्ट संपत्तियों का स्वामित्व संबंधित मंदिरों, ट्रस्टों और स्थानीय निवासियों के पास है, जो इसकी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता बनाए रखता है। तो दोस्तों, ये था काशी का शांत, सरल और अपनी अलग पहचान रखने वाला गुलरिया घाट। काशी के हर घाट की तरह ये घाट भी हमें जीवन का एक अलग संदेश देता है। यहाँ की शांति, गंगा की अविरल धारा और आसपास का सहज वातावरण मन को एक अनोखा सुकून प्रदान करता है। हे बनारस, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। दोस्तों, बातें तो और भी होती रहेंगी, लेकिन बातों के साथ साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। तो सुनिए ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक और बने रहिए गुड मॉर्निंग बनारस में अपनी होस्ट और दोस्त शुचि के साथ।

वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी। और दोस्तों, चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देते हैं आपको आज की ताजा खबर। तो चलिए करते हैं शुरुआत, देखते हैं क्या हो रहा है देश दुनिया और अपने शहर बनारस में खास। भीषण गर्मी को देखते हुए बढ़ी स्कूलों की छुट्टियां, शिक्षा विभाग का आया आदेश। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को देखते हुए बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। शासन ने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में चल रही ग्रीष्मकालीन छुट्टियों की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब प्रदेश के सभी सरकारी सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त विद्यालय 15 जून के बजाय 25 जून से खुलेंगे। नए आदेश के अनुसार विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश 20 मई से 24 जून तक प्रभावी रहेगा। इससे पहले विद्यालयों को 15 जून से खोलने की तैयारी थी, लेकिन लगातार पड़ रही गर्मी और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए छुट्टियों को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक तथा अन्य विद्यालय कर्मचारी भी 21 जून तक अवकाश पर रहेंगे। हालांकि 22 जून से सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों को विद्यालयों में उपस्थित होकर शैक्षणिक और प्रशासनिक तैयारियां पूरी करनी होगी, ताकि 25 जून से नियमित रूप से कक्षाओं का संचालन शुरू किया जा सके। इसी क्रम में 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। विभाग ने निर्देश दिया है कि योग दिवस पर शिक्षक एवं छात्र सामूहिक योगाभ्यास में भाग लेंगे और योग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। 8.98 करोड़ से शहीद उद्यान का हो रहा कायाकल्प, 2 माह में पूरा होगा काम, मेयर और नगर आयुक्त ने देखा निर्माण कार्य। जी हां दोस्तों, शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में नगर निगम ने प्रयास तेज कर दिए हैं। सिग्रा स्थित शहीद उद्यान के व्यापक सौंदर्यीकरण और मुख्यमंत्री ग्रीन रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के तहत चल रहे विकास कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए महापौर अशोक कुमार तिवारी और नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था को निर्देश दिया गया कि सभी कार्यों को अगले 2 माह के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। नगर निगम द्वारा 8.98 करोड़ रुपए की लागत से शहीद उद्यान का कायाकल्प कराया जा रहा है। परियोजना के तहत पार्क में आधुनिक झूले, आकर्षक फव्वारे, बच्चों और बुजुर्गों के लिए बेहतर सुविधाएं तथा मॉर्निंग वॉक के लिए सुव्यवस्थित पाथवे विकसित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 1.5 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण भी प्रस्तावित है, जिससे विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को आधुनिक अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। वहीं सीएम ग्रेड्स योजना

के अंतर्गत सिग्राफल मंडी क्षेत्र में तिलक मूर्ति से भारत सेवा आश्रम तक लगभग 610 मीटर लंबे मार्ग का विकास कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। 11.61 करोड़ रुपए की लागत से इस सड़क पर ड्रेनेज सिस्टम, फुटपाथ और अन्य आधारभूत सुविधाओं का निर्माण कराया जा रहा है। इस मार्ग को मॉडल रोड के रूप में विकसित करने की योजना है, जिससे क्षेत्र की यातायात व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं में सुधार हो सके। जनपद को स्वच्छ, हरित और प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने प्रयास तेज कर दिए हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में जिला पर्यावरण समिति, जिला गंगा समिति एवं जिला वृक्षारोपण समिति की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में पर्यावरण संरक्षण, गंगा स्वच्छता, वायु प्रदूषण नियंत्रण और वृक्षारोपण कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान नगर निगम द्वारा चालित 4-स्तरीय वेस्ट सेग्रीगेशन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए बताया गया कि शहर में 30,000 डस्टबिन वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा लिगेसी वेस्ट के निस्तारण, ई वेस्ट प्रबंधन तथा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारियों ने इन अभियानों को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए जिलाधिकारी ने 11 वाटर स्प्रिंकलर और एक मिस्ट गन के नियमित संचालन पर विशेष जोर दिया। साथ ही शहर की सड़कों पर उड़ने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए मैकेनाइज्ड स्वीपिंग व्यवस्था को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करना होगा। जिला गंगा समिति की बैठक में असीघाट पर प्रस्तावित मैकेनाइज्ड पार्किंग, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और वर्णा नदी में चल रहे डिसल्टिंग कार्यों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने गंगा और उसकी सहायक नदियों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक में वर्ष 2026-27 के वृक्षारोपण लक्ष्यों, रोपण स्थलों की तैयारी तथा पूर्व वर्षों में लगाए गए पौधों की स्थिति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने पौधों की उत्तर जीविता दर बढ़ाने पर जोर देते हुए सूख चुके पौधों के स्थान पर पुनः पौधारोपण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि सामूहिक दायित्व है। सभी विभाग निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करें और हरित आवरण बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी स्वाति सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। तो ये था देश दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार। और आइए पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं आज के दिन यानी 17 जून में क्या है खास।

सन 1994 में आज ही के दिन उत्तरी कोरिया अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को अपने देश में बने रहने देने की सहमति मिली थी। सन 1999 में लेकेव जुमा दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति नियुक्त कारगिल में चल रहे युद्ध के मद्देनजर आईएसआई द्वारा कारगिल जिहाद फंड की स्थापना भी की गई थी। सन 2002 में आज ही के दिन कराची में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पुनः खोला गया था। सन 2008 में देश में विकसित हल्के लड़ाकू विमान तेजस का बंगलौर में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तो ये थी इतिहास में आज के दिन की खास बातें। और दोस्तों, अब समय हो गया है आप सबसे टाटा बाय बाय करने का। मिलूंगी जल्द ही आपसे फिर और एक नए घाट के दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त शुचि को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:18 हो रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार लखनऊ केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था, आगामी त्योहारों, नीट UG पुनः परीक्षा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर की समीक्षा बैठक। 21 जून को प्रस्तावित नीट UG पुनः परीक्षा में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में अभ्यर्थियों को 50% छूट के दिए निर्देश। नीट UG पुनः परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक लगाया प्रतिबंध। संदेश संपादन सुविधा भी 30 जून तक रहेगी बंद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 19 जून को पूर्वांचल को देंगे 3 रेल सेवाओं की सौगात। अब छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का मऊ के रास्ते होगा संचालन। और राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े स्कूलों और मान्यता प्राप्त स्कूलों में 24 जून तक बढ़ाया ग्रीष्मकालीन अवकाश। अब 25 जून से शुरू होंगी शैक्षणिक गतिविधियां। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था, आगामी पर्व त्योहारों, नीट UG पुनः परीक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि 21 जून को प्रस्तावित नीट UG परीक्षा में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में प्रवेश पत्र दिखाने पर किराए में 50% की छूट दी जाए। मुख्यमंत्री ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों एवं 762 नगरीय निकायों में अमृत सरोवरों एवं ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों पर योग कार्यक्रम आयोजित करने के भी निर्देश दिए। बैठक के दौरान श्री योगी ने मुहर्रम के दौरान निर्धारित नियमों व मानकों का पालन करवाते हुए शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA द्वारा आगामी 21 जून को होने वाली नीट UG की पुनर्परीक्षा में पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले दशक में बुनियादी ढांचे का रिकॉर्ड स्तर पर उन्नयन हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने देश के लोगों के लिए अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया ताकि विकसित भारत के स्वप्न को साकार किया जा सके। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आधुनिक अवसंरचना किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान होती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के यशस्वी नेतृत्व में भारत ने बीते 12 वर्षों में इस दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धियां अर्जित की हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

0: इसी कड़ी में प्रदेश के संसदीय कार्य और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कल लखनऊ में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5,37,00,000 आवास का आवंटन किया है, जिसमें से 62,00,000 से अधिक परिवार यूपी के शामिल हैं। श्री खन्ना ने कहा कि इस दौरान स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
1: 2014 से पहले हमारे देश में इतने मेडिकल कॉलेज नहीं थे, इतने डॉक्टर्स नहीं थे कि हम ठीक प्रकार से सभी लोगों को इलाज की सुविधा दे सकें। तो उसके पहले उन्होंने ये मन बनाया कि हम ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स पैदा करेंगे, और डॉक्टर्स पैदा होते सिर्फ मेडिकल कॉलेजों में 818 मेडिकल कॉलेज, जिसमें से 431 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का उन्होंने मन बनाया। और MBBS में कुल 1,28,976 सीटें थी, जिसमें से 77,628 सीटों की वृद्धि की गई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
2: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में रेल सेवाओं के विस्तार और यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने से जुड़ी कई मांगों को रेल मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है। ये जानकारी प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आगामी 19 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश को कई रेल सेवाओं की सौगात देंगे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में रेल मंत्री बिहार के छपरा से ऑनलाइन जुड़कर जनता को संबोधित भी करेंगे। नगर विकास और ऊर्जा मंत्री श्री शर्मा ने बताया कि उनकी मांग पर दोहरेघाट ओडियार नई मेमू ट्रेन का वाराणसी तक संचालन, मऊ आनंद विहार स्पेशल ट्रेन का मऊ से नियमित संचालन और छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन मऊ के रास्ते किए जाने को मंजूरी मिल गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच आज लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में दूसरा एक दिवसीय मैच खेला जाएगा। मैच को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: इकाना क्रिकेट स्टेडियम में श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय मैच के लिए दोनों टीमें लखनऊ पहुंच चुकी हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय मैच के मद्देनजर स्टेडियम के अंदर और बाहर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने स्टेडियम के आसपास कई मार्गों पर यातायात डायवर्जन भी लागू किया है, जो कि सुबह 9 बजे से रात में मैच की समाप्ति तक लागू रहेगा। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रदेश में बढ़ते तापमान और लू की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े स्कूलों और मान्यता प्राप्त स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश को 24 जून तक बढ़ा

दिया है। बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक अब हर साल गर्मियों की छुट्टियां 20 मई से 24 जून तक रहेंगी और नियमित शैक्षणिक गतिविधियां 25 जून से शुरू होंगी। हालांकि शिक्षक, शिक्षा मित्र, प्रशिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी 22, 23 और 24 जून को स्कूलों में उपस्थित रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था, आगामी त्योहारों, नीट यूजी पुनः परीक्षा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर की समीक्षा बैठक। 21 जून को प्रस्तावित नीट यूजी पुनः परीक्षा में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में अभ्यर्थियों को 50% छूट के दिए निर्देश। नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक लगाया प्रतिबंध। संदेश संपादन सुविधा भी 30 जून तक रहेगी बंद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 19 जून को पूर्वांचल को देंगे 3 रेल सेवाओं की सौगात। अब छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का मऊ के रास्ते होगा संचालन। और राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े स्कूलों और मान्यता प्राप्त स्कूलों में 24 जून तक बढ़ाया ग्रीष्मकालीन अवकाश। अब 25 जून से शुरू होंगी शैक्षणिक गतिविधियां। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
0: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़। OTT प्लेटफॉर्म वेव्स और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं विदुषी कृष्णा चक्रवर्ती का सितार पर बजाय राग गुर्जरी तोड़ी। आपके साथ तबला संगति श्री कुमार लाल मिश्रा की है, तो आइए सुने विदुषी कृष्णा चक्रवर्ती का सितार पर बजाय राग गुर्जरी तोड़ी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में भी आपने विदुषी कृष्णा चक्रवर्ती का सितार पर बजाया राग गुर्जरी तोड़ी सुना। आपके साथ तबला संगति श्री कुमार लाल मिश्रा की थी। शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात। थोड़ी देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है।

0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुंच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।

0: है काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी संकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
3: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और नीट UG पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्ता की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा। पत्र ने नीट UG की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पेपर लीक ना हो इसलिए

0: re-exam paper leak claims. IMD issues orange alert for heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in second ODI of three-match series in Lucknow this afternoon. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सभी मुल्कों से जोर देकर कहा है कि आलमी बहरी गुजरगाहों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए और मल्लाहों को टकराव से वाबस्ता खतरात के तनाजुर में तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के शहर एवियन में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। दरियाए जमुना के आहिया के लिए तवील अरसे से जेर इल्तवा किशाऊ डैम प्रोजेक्ट पर अमल दरामद के बारे में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के माबेन इत्तेफाक राय हो गया है। इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने उम्मीदवारों से नीट के दोबारा इम्तिहान का पर्चा लीक होने के दावों से होशियार रहने को कहा है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में तेज बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज दोपहर लखनऊ में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सभी मुल्कों से जोर देकर कहा है कि आलमी बहरी गुजरगाहों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए और मल्लाहों को टकराव से वाबस्ता खतरात के तनाजुर में तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। फ्रांस के शहर एवियन में कल G7 की सरबराह कॉन्फ्रेंस में एक राबता इजलास से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मगरबी एशिया में लड़ाई से आलमी तजारत में रुकावट पड़ गई है और जानी नुकसान भी हुआ है। मगरबी एशिया में बहरी तजारत को लाहिक बढ़ते हुए खतरात और अदम इस्तेहकाम की इंसानी कीमत को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मल्लाहों की सलामती को यकीनी बनाना हमारी जिम्मेदारी है जो आलमी बहरी तजारत के जरिए सभी मुल्कों को बाहम मुंसलिक करते हैं। वजारत खारजा ने बताया कि वजीर आजम ने बैन अलावी साझेदारी कायम करने, खासतौर पर बढ़ती हुई बाहम मुंसलिक दुनिया में एतमाद की अहमियत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि बैन अलावी साझेदारी को अतिया देने वाले और लेने वाले फरीक से आगे बढ़कर यगानगत और मुसावियाना मिल्कियत की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि बैन अलावी कानून के लिए एहतराम का फुकदान बैन अलावी यकजहती कायम करने में सबसे बड़ी रुकावट है और इस पर तरजीही बुनियाद पर तवज्जो दिए जाने की जरूरत है। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की खातिर बैन अलावी साझेदारी में मुजाकरात और सिफारतकारी को तरजीह दिए जाने की जरूरत है। फ्रांस का शहर एवियन इस वक्त आलमी सिफारतकारी का मरकज बना हुआ है। वहां G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस अहम मरहले में दाखिल हो रही है। भारत एक साझेदार मुल्क की हैसियत से इसमें शिरकत कर रहा है। सबकी निगाहें वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान आज होने वाली दोतरफा मीटिंग पर लगी हुई हैं, जिसका काफी इंतजार किया जा रहा था। ये मुलाकात सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर हो रही है। फरवरी 2025 में वॉशिंगटन DC में दोनों लीडरों के दरमियान मुलाकात के बाद से ये पहली बिल मुशाफा मीटिंग है। उम्मीद है कि आज की मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमा मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा इश्तराक को मजीद वसअत देने के लिए वसीतर तबादले ख्याल करेंगे। साथ ही वो इलाकाई और बाहमी मफाद के आलमी उमूर पर भी बातचीत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ये मीटिंग काफी अहमियत की हामिल है क्योंकि भारत एक बड़ी आलमी ताकत के तौर पर उभरा है और आलमी बिरादरी भी पेचीदा आलमी चैलेंजों के हल के लिए अब और ज्यादा भारत का रुख कर रही है। आलमी मामलात पर तबादले ख्याल को जहद देने में भारत के बढ़ते हुए रोल से उसका सिफारती राबते का दायरा बढ़ने और मुख्तलिफ फोरमों में आलमी रहनुमाओं के साथ सरगम राबतों की अक्कासी होती है। कल सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान एक राबता इजलास में वजीर आजम ने बैन अलावी साझेदारी कायम करने और खास तौर पर बढ़ती हुई बाहम मुंसलिक दुनिया में एतमाद की अहमियत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने इस बात को भी उजागर किया कि भारत ने हमेशा इंसानियत मुकद्दम का रवैया इख्तियार किया।

0: किया है। वजीर आजम ने कहा कि भारत की जेर कमान किए गए मुख्तलिफ इकदामात से इस बात की अक्कासी भी होती है, जिनमें बैनुल अक्वामी शमसी इत्तेहाद कुदरती आफात से पैदा हालात से निमटने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे का मखलूत इत्तेहाद, आलमी बायो ईंधन इत्तेहाद, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम मुहिम शामिल हैं। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि बैनुल अक्वामी साझेदारी के भारत के नजरिए की बुनियाद वसुधैव कुटुंबकम यानी दुनिया एक कुनबा है के दायमी फलसफे में पिन्हा है। फ्रांस के शहर एवियां से अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: अमरीकी सदर के साथ मुलाकात के अलावा वजीर आजम नरेंद्र मोदी G7 वर्किंग इजलास में भी शिरकत करेंगे, जिसका मौजू है सभी के फायदे के लिए मुतवाजन जामे और पायदार माशी तरक्की को फाल बनाना। इसके अलावा जनाब मोदी मसनूई जहानत के महफूज तेज रफ्तार और मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने के मौजू पर वर्किंग लंच में भी शामिल होंगे। वजीर आजम मोदी यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर अंतोनियो कोस्ता और यूरोपीय कमीशन के सदर वॉन देर लेन के साथ सेफरीकी मीटिंग करेंगे और जर्मनी के चांसलर फ्राइडरिख मर्स के साथ दोतरफा मुलाकात करेंगे। इससे पहले कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर कनाडा और बरतानिया के वज़राए आजम और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के साथ दोतरफा बातचीत की थी। जनाब मोदी ने केनिया, मिस्र और जनूबी कोरिया के सुदूर नीज जापान की वजीर आजम से भी मुलाकात की। G7 मुल्कों ने भारत समेत कई साझेदार मुल्कों के साथ सेहत और तरक्की से मुतालिक आलमी इश्तराक को मुस्तकम बनाने के लिए कई इकदामात का ऐलान किया है। G7 के रहनुमाओं ने जमहूरिया कांगो और युगांडा में इबोला बीमारी के फिर से जोर पकड़ने के तनाजुर में तालमेल के साथ बैनुल अक्वामी कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया। भारत, मिस्र, केनिया और जनूबी कोरिया ने भी इकदामात में तेजी लाने की अपील की, जिसमें राबते में आने वाले अफराद का पता लगाना, सरहद पर निगरानी और बेदारी पैदा करना शामिल है। इन रहनुमाओं ने इबोला वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीन तैयार करने, तशखीस और इलाज मुआवजे के लिए मदद करने का भी वादा किया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने तवील अरसे से जेर इल्तवा केशाऊ कसीर मकसदी बांध प्रोजेक्ट के मामले पर कल नई दिल्ली में एक अहम मीटिंग की सदारत की। इस प्रोजेक्ट का मकसद दरियाए जमुना का अहया करना है। एक बयान में उमूर दाखिला की वजारत ने कहा है कि मजकूरा प्रोजेक्ट पर अमल दरामद के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत करने से इत्तेफाक किया है। इसके बाद केशाऊ प्रोजेक्ट को मंजूरी के लिए मरकजी काबीना के सामने पेश किया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। इम्तिहानात का इनाकात कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने वालदेन और उम्मीदवारों से जोर देकर कहा है कि वो नीट इम्तिहानात से पहले घोटाला साजों से खबरदार रहें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि टेलीग्राम पर ये घोटाला साज कुछ चैनल चला रहे हैं, जिन पर ये दोबारा कराए जाने वाले इम्तिहान के पर्चे फराहम करने के दावे कर रहे हैं और इसके लिए ये लोग 14,000 से 25,000 रुपये तक मांग रहे हैं। एजेंसी ने वादे किया है कि इस दोबारा इम्तिहान के लिए कोई पर्चा इफ्शा नहीं हुआ है। उसने कहा है कि इस सिलसिले में फर्जी सबूत के वीडियोस भी गर्दिश कर रहे हैं, जिनमें इम्तिहान से पहले की चैट्स दिखाई गई हैं। NTA ने अपने डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह की वीडियो भी जारी की है, जिसमें वो मुल्क में इस ऐप तक रसाई को ब्लॉक करने की वजह बता रहे हैं। भारत ने पिछले 12 साल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरअंदेश क्यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों की बुनियाद पर काबिले जिक्र तब्दीलियां की हैं। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की भलाई और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए बहुत से अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा आपके लिए एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम मुल्क की विरासत के तहफ्फुज और फरोग के तई हुकूमत के इकदाम का जिक्र कर रहे हैं।
2: जनवरी 2024 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में अजीम उशान श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अंजाम दी, जो सदियों से जारी एक उमंग को पूरा करने का वक्त था। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए एक अकीदतमंद पंकज जारिया ने अपने ख्यालात का इजहार किया।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था वहां हमने प्रभु राम के दर्शन किए वहां व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है भीड़ को मैनेज के लिए सरकार

0: ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
1: अक्टूबर 2022 में मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में महाकाल लोक प्रोजेक्ट के पहले मरहले को मुल्क के नाम वक्फ किया गया। इस राहदारी में अजीमुशान मुजस्मों, म्यूरल्स और फन तामीर के जरिए भगवान शिव की जिंदगी और रिवायतों की अक्कासी की गई है। वाराणसी में दिसंबर 2021 में काशी विश्वनाथ राहदारी का इफ्तिताह किया गया था। इस राहदारी के जरिए काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा नदी से मिलाया गया है। हमारे नामानिकार से बात करते हुए वाराणसी के एक शहरी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ राहदारी से मंदिर आने वाले अकीदतमंदों को काफी सहूलत मुहैया हुई है।
2: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी संकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: इन बड़ी तब्दीलियों से मुस्तकबिल की तरफ बढ़ने के साथ साथ सकाफती जड़ों को मजबूत करने की जानिब मुल्क के अहद की अक्कासी होती है।
3: भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज ज़ैली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में कुछ मकामात पर शदीद बारिश की पेशगोई की है। आसाम, मेघालय, बिहार, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में औसत से शदीद बारिश का इम्कान है। IMD के मुताबिक राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज चमक का इम्कान है। इधर छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में आज शदीद गर्मी के हालात का इम्कान है। साहिली आंध्र प्रदेश, गंगाई मगरबी बंगाल, कोंकण, गोवा और उड़ीसा में आज गर्मी और हब्स का मौसम रह सकता है। मर्दों के क्रिकेट में आज लखनऊ में 3 मैचों की सीरीज के दूसरे ODI में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम इस सीरीज में 1-0 से आगे है और वो आज का मैच जीतकर इस सीरीज को अपने नाम करने की कोशिश करेगी। खवातीन क्रिकेट में आज लीड्स के हेडिंगले में ICC खवातीन T20 आलमी कप में भारत और नेदरलैंड आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। हरमनप्रीत कौर की क्यादत में भारतीय टीम इतवार को बर्मिंगम में खेले गए पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रन से शिकस्त देने के बाद अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने की कोशिश करेगी। फुटबॉल में नॉर्वे ने फीफा आलमी कप में अमेरिका के बोस्टन स्टेडियम में ग्रुप एक के अपने पहले मैच में इराक पर 4-1 से जीत हासिल करके वापसी की है। अब नॉर्वे ग्रुप एक में सरफहरिस्त आ गया है। इससे पहले फ्रांस ने न्यू जर्सी स्टेडियम में फीफा आलमी कप 2026 के ग्रुप एक के पहले मैच में सेनेगाल को 3-1 से हराया था। इस मैच में काइलियन मैप्पे ने अपने करियर का 58वां गोल करके एक रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने आलमी कप में लियोनेल मेस्सी का भी अभी तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने फ्रांस के शहर एवियान में मुनाकिदा G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की शिरकत से मुतालिक खबर को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा इनकलाब और कई दीगर अखबारात ने NEET UG दोबारा इम्तहान से कबल टेलीग्राम ऐप पर पाबंदी की खबर को अपने सफ़े वल पर शाये किया है। खांसी के सिरप सिर्फ लाइसेंस याफ्ता फार्मेसियों को इजाजत। खांसी के सिरप फरोख्त की सिर्फ लाइसेंस याफ्ता फार्मेसियों को इजाजत, इस खबर को बेशतर अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के इस बयान को रोजनामा प्रताप ने अपने पहले सफ़े पर नुमाया किया है कि आने वाली नस्ल के पास मुल्क में तब्दीली लाने के लिए दरकार मुनफरिद तवानाई और नया अज़्म मौजूद है। इसके अलावा आज के अखबारात की अहम बैन-अल-अक़वामी खबरों की सुर्खियां इस तरह हैं। अमरीका का B-52 बम्बार तैयारा परवाज के फौरन बाद गिरकर तबाह, हादसे में 8 अफराद की मौत।
3: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सभी मुल्कों से जोर देकर कहा है कि आलमी बहरी गुजरगाहों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए और मल्लाहों को टकराव से वाबस्ता खतरात के तनाजुर में तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के शहर एवियां में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। दरियाए जमुना के अहया के लिए तवील अरसे से ज़ेरे इल्तवा किशाऊ डैम प्रोजेक्ट पर अमल दरामद के बारे में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के माबैन इत्तेफाक राय हो गया है। امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے امیدواروں سے

0: नीट के दोबारा इम्तिहान का पर्चा लीक होने के दावों से होशियार रहने को कहा है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खत्ते और सिक्किम में तेज बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
3: अनजान ऐप से बचें।
4: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: हमारी जनगणना हमारा विकास।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
7: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
8: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
7: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
8: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
7: बुकिंग है तो संपर्क करें
9: 0542227658,
10: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

ये जो गीत सुना आपने वो हमने लिया था फिल्म ज्वेल थीफ से। आवाज थी लता मंगेशकर, भूपिंदर राव साथियों की। गीतकार थे मजरू और संगीतकार एस टी बर्मन। ये गीत हमने लिया है फिल्म मिली से। आवाज लता मंगेशकर राव साथियों की। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार सचिन देव बर्मन।

0: आकाशवाणी वाराणसी से अभी आप सुन रहे हैं मधुरिमा कार्यक्रम। मधुरिमा कार्यक्रम के शेष नगमे आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 21 जून 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है योग द्वारा रोगों का इलाज। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारी डॉक्टर होंगी डॉक्टर अंजना त्रिपाठी। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 18 जून 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो हमें फोन करना ना भूलें। हमारा फोन नंबर है 222-1052। बनारस का एसटीडी कोड है 0542। तो सुनते रहिए आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल। पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 21 जून 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है योग द्वारा रोगों का इलाज। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारी डॉक्टर होंगी डॉक्टर अंजना त्रिपाठी। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 18 जून 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो हमें फोन करना ना भूलें। हमारा फोन नंबर है 222-1052। बनारस का एसटीडी कोड है 0542। तो सुनते रहिए आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।

ये गीत हमने लिया है फिल्म गाइड से, आवाज लता मंगेशकर की। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीत दिया है सचिन देव बर्मन ने।

ये आवाज़ है गीता रॉय और लता मंगेशकर और साथियों की। गीतकार हैं भरत व्यास, संगीत दिया है वसंत देसाई ने और फिल्म का नाम है गूंज उठी शहनाई।

ये गीत हमने लिया है फिल्म हम दोनों से। आवाज मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। गीतकार हैं साहिर, संगीत दिया है जयदेव ने।

हम दोनों फिल्म के मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के गाए से गीत के साथ इजाज़त दीजिए अपने दोस्त प्रशांत परांजपे को। नमस्कार।

0: साउंड ऑफ मेलोडी मधुरिमा
1: अभी आप सुन रहे थे ये सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा। हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। जिले की हलचल थोड़ी देर में हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे,
0: सुनते हैं।
2: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए अंबेडकर नगर और बांदा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अंबेडकर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुराग चौधरी का।
3: केंद्र सरकार के 12 साल पूरा होने पर अंबेडकर नगर के सभी विकास खंडों में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर एवं स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डाला। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार युवाओं, महिलाओं और गरीबों के कल्याण पर विशेष ध्यान दे रही है। सरकार अपने जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के हर तबके के लोगों को लाभ पहुंचा रही है और इसी का परिणाम है कि आज हमारा देश सशक्त बन रहा है। अंबेडकर नगर में भूमि विवादों के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी ईसाप्रिया के निर्देश पर जिले के सभी तहसीलों के ग्राम पंचायतों में भूमि विवाद निस्तारण चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अकबरपुर तहसील की उप जिलाधिकारी प्रतीक्षा सिंह ने बताया कि ग्राम प्रतापपुर चमुरखा में 56, लोरपुर पालहन में 75, चोनगांव में 39, तारा खुर्द में 30 और औरंगाबाद में 35 भूमि विवादों का निस्तारण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर मिझौड़ा चीनी मिल में जन जागरूकता एवं बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्रमिकों को लेकर चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया गया कि श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिले या सुनिश्चित किया जाए। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अंबेडकर नगर में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 21 जुलाई को शून्य दुर्घटना दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए कलेक्ट्रेट सभागार में एक प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया गया है। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने अंबेडकर नगर का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान चारू चौधरी ने जिला अस्पताल, वन स्टॉप सेंटर, वृद्धा आश्रम का निरीक्षण किया। चारू चौधरी ने सर्किट हाउस में आयोजित जन चौपाल में महिलाओं की समस्याओं को सुना और उनके निदान का निर्देश दिया। अंबेडकर नगर में जिलाधिकारी ईसाप्रिया की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समिति की बैठक हुई। बैठक में जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं और कर्मचारियों की उपलब्धता एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। सरकार की यह योजना पक्के मकान में रहने की गरीबों की मुराद पूरी कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी इंद्रावती ने बताया,
4: हमारा परिवार एक झोपड़ी में रहता था, पक्का मकान एक सपना जैसे था, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे उस सपने को पूरा कर दिया। अब हमारे पास अपना पक्का घर है।
3: अंबेडकर नगर में कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस विशेष अभियान चला रही है। महिला पुलिसकर्मी सार्वजनिक स्थलों, बैंकों, तहसीलों आदि स्थानों पर जाकर महिलाओं को उनके अधिकार और सुरक्षा के बारे में जागरूक कर रहे हैं। मुहर्रम के त्योहार के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पुख्ता तैयारी कर रहा है। संवेदनशील इलाकों में जगह जगह सुरक्षा चौकियां बनाई जा रही हैं। जिलाधिकारी ईसाप्रिया और पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने शहर का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अंबेडकर नगर में इस समय विकास कार्य तेजी से चल रहा है। जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के द्वारा ग्रामीण इलाकों में तेजी से विकास कार्य कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों और नाली निर्माण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अंबेडकर नगर में महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज द्वारा मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा निर्णय लिया गया है। कॉलेज प्रशासन अब शाम 4 बजे तक ओपीडी का संचालन कर रहा है। शाम 4 बजे तक मरीजों को अस्पताल की सारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में सिर्फ अंबेडकर नगर मेडिकल कॉलेज में लागू हुई है। कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुकेश कुमार यादव ने बताया कि मरीजों की सुविधा के लिए यह कदम उठाया गया है और इसका लाभ भी मिल रहा है।
5: अंबेडकर नगर में मुख्यमंत्री राज्य औद्यानिक विकास योजना को धरातल पर लागू करने के लिए प्रशासन सक्रिय है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को अनुदान मिलेगा। इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर जिलाधिकारी ईसाप्रिया की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु जनपद के कृषकों एवं उद्यमियों को विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्राप्त लक्ष्य एवं अनुदान आदि की समीक्षा की गई। बैठक में जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजना के अंतर्गत इच्छुक कृषक अपना पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल पर स्वयं अथवा जन सेवा केंद्र के माध्यम से करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद अंबेडकर नगर को विभिन्न उद्यानिक कार्यक्रमों के लिए लक्ष्य आवंटित किए गए हैं, जिनमें सब्जी क्षेत्र विस्तार, पुष्प क्षेत्र विस्तार, फल क्षेत्र विस्तार, मसाला फसलों का विकास, प्याज क्षेत्र विस्तार, फेसिंग, मल्चिंग तथा सघन बागवानी कार्यक्रम।

0: शामिल। किसानों को टिशू कल्चर, मशरूम उत्पादन इकाई, ईडीबीई, वर्मी बेड तथा मल्चिंग जैसे कार्यक्रमों का भी लाभ प्रदान किया जाएगा। जिलाधिकारी ने जनपद के कृषकों से अधिक संख्या में योजना का लाभ लेने हेतु तो समय से आवेदन करने की अपील की है।
1: अम्बेडकर नगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बांदा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय निगम का।
2: जनपद के प्रभारी मंत्री बनाए जाने के बाद विगत 5 जून को पहली बार बांदा पहुंचे प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने स्थानीय सर्किट हाउस में प्रशासनिक समन्वय समिति की बैठक की। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासनिक व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। बाद में स्थानीय कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से बात करते हुए उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि डबल इंजन सरकार के द्वारा बांदा का बेहतर विकास किस तरह से हो इसको

0: प्रभारी मंत्री बनाए जाने के बाद विगत 5 जून को पहली बार बांदा पहुंचे प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने स्थानीय सर्किट हाउस में प्रशासनिक समन्वय समिति की बैठक की। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासनिक व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। बाद में स्थानीय कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से बात करते हुए उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि डबल इंजन सरकार के द्वारा बांदा का बेहतर विकास किस तरह से हो, इसको लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक लोगों के साथ चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा जनजीवन किस तरह से सुगम और व्यवस्थित हो, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। जनपद के अधिकारी सरकार की आशा के अनुरूप जनता की बेहतर सेवा कर रहे हैं। जहां असुविधा होगी वहां और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। दिनेश प्रताप सिंह ने वार्ता के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा,
1: केवल सरकार को कटघरे में खड़ा करके सस्ती लोकप्रियता पाने के उद्देश्य से चर्चा करते हैं। जब भारत पे संकट हो तो विदेशी नागरिक नहीं, भारत के नागरिक बन करके देश के प्रधानमंत्री जी का साथ दें। भारत की न्यायालय परीक्षण कर रही है कि राहुल गांधी भारतीय हैं भी या नहीं, इसी कारण वो भारत के विपरीत चर्चा करते हैं।
0: जनगणना कार्य को पूरा करने में प्रदेश में बांदा जनपद प्रथम स्थान पर है। बांदा में काफी तेज गति से जनगणना का कार्य संपन्न हुआ है। इस कार्य में समयबद्ध तरीके से बेहतर कार्य करने वाले प्रगणकों को जिला प्रशासन के द्वारा सम्मानित भी किया गया। इस वर्ष बांदा पूरे देश में सबसे अधिक तापमान वाला जनपद बना रहा। इसके बावजूद भीषण गर्मी में भी यहां जनगणना कार्य में लगे प्रगणकों ने पूरे मनोयोग से कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा कर लिया। बांदा के जिलाधिकारी अमित आचेरी ने बताया कि प्रभावी मॉनिटरिंग एवं जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों के फल स्वरूप सिर्फ 15 दिनों में कार्य पूर्ण कर जनपद बांदा ने डिजिटल हाउस लिस्टिंग संबंधी कार्य प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने बताया,
2: बांदा पूरे प्रदेश में सबसे पहला जनपद बना जिसने अपने फेज 1 सेंसस को पूरा किया, और इसके लिए यहाँ के सभी बांदा के जनपदवासी सबको मैं शुक्रगुजार हूँ। ये सबने इतना कोऑपरेट किया हमारी टीम्स के साथ, और हमारे न्यूमरेटर्स, चार्ज ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिशियल्स, फील्ड ऑफिसर्स, ये सभी बधाई के पात्र हैं, और इन सबकी मेहनत के कारण हम लोग ये मुकाम हासिल कर पाए हैं।
0: यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य विगत 28 मई को बांदा पहुंचे, जहां वे जनपद के चिल्ली गांव में आयोजित ग्राम तीर्थ स्थापना कार्यक्रम के समापन में शामिल हुए। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय मेडिकल कॉलेज के सभागार में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। बाद में मुख्यमंत्री ने भाजपा जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। जनपद के चिल्ली गांव में आयोजित ग्राम तीर्थ स्थापना कार्यक्रम में आए हुए लोगों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रगति के साथ छेड़छाड़ करने के परिणाम हम भुगत रहे हैं। हमने पेड़ काटे लेकिन लगाने का काम नहीं किया, जल का दोहन तो किया लेकिन संरक्षण नहीं किया। हमें प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि सभी जगह जनता की सुनवाई हो, साथ ही हमारे कार्यकर्ताओं की समस्याओं का भी समय से निस्तारण हो। कांग्रेस के द्वारा महंगाई पर प्रदर्शन करने को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा,
3: ऊर्जा संकट के समय एक गंदी राजनीति करने वालों को जनता की जवाब दे। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिस देश ने डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम न बढ़ाए। सबसे कम दाम बढ़ाने का काम कहीं हुआ है तो भारत में हुआ है।
0: पुलिस ने बांदा नगर क्षेत्र में नकली और मिश्रित गुटखा निर्माण करने वाली फैक्ट्री बरामद कर मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, और उसके कब्जे से लगभग 2 लाख की कीमत के निर्मित व अर्ध निर्मित गुटखा और गुटखा बनाने की सामग्री सहित बड़ी कंपनियों के डुप्लीकेट रैपर भी बरामद किए हैं। बांदा की सहायक पुलिस अधीक्षक नेविष्टक ने बताया कि नगर कोतवाली क्षेत्र के कालूकुआं मोहल्ले से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मकान पर नकली व अपमिश्रित गुटखा बनाया जा रहा है। जानकारी होने के बाद तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वहां मौजूद गुटखा निर्माण कर रहे एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया, जिसके पास से पुलिस को अवैध गुटखा बनाने वाली सामग्री सहित भारी मात्रा में निर्मित व अर्ध निर्मित गुटखा बरामद हुए हैं। जनपद के कमासिन क्षेत्र में 74.91 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन सिंह वाहिनी पंप नहर परियोजना का कांड अब कार्य अब अंतिम चरण पे है। 2.5 साल में इस परियोजना का 90% कार्य पूर्ण कर लिया गया है। नवंबर माह तक इसका कार्य पूरा हो जाएगा। इस कार्य की शुरुआत दिसंबर 2023 को हुई थी। इस आधुनिक पंप नहर की क्षमता 50 क्यूसेक की है। कमासिन और इसके आसपास के दर्जनों गाँव के किसानों को सिंचाई के लिए पानी की समस्या होती है, लेकिन सिंह वाहिनी पंप नहर के निर्माण से अब किसानों की यह समस्या दूर हो जाएगी।
4: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
5: अभी आप सुन रहे थे जिले की हलचल। आपने सुनी अम्बेडकर नगर और बांदा जिलों के हलचल।

बीटिंग 241.5 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:25 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। श्री परमु उर्फ राम सखा पुत्र श्री राम शिरोमणि ने ग्राम परसिया मुड़पेली थाना हलिया जनपद मिर्जापुर से हमें सूचना दी है कि उनकी पुत्री शिवानी दिनांक 6 अप्रैल 2026 दिन 2:30 बजे से कहीं लापता है। शिवानी के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। उम्र करीब 18 वर्ष, कद 5 फीट, इनका चेहरा लंबा है, रंग गोरा है और दोहरा बदन है। इनकी आंखों का रंग काला है और बाल लंबे हैं। इन्होंने छीटदार ऑरेंज कलर की फ्रॉक और सफेद सलवार पहनी है। इनके पैरों में सफेद जूते हैं। शिवानी पुत्री श्री परमु के बारे में जानकारी मिलने पर कृपया थाना हलिया जनपद मिर्जापुर से संपर्क करें। खोए हुए व्यक्ति का नाम कुमारी शिवानी है। श्री तेजबली ने ग्राम गोपालपुर थाना अदलहाट जनपद मिर्जापुर से हमें सूचना दी है कि उनकी पुत्री नेहा चौहान दिनांक 15 मार्च 2026 शाम 3 बजे से कहीं गुमशुदा है। नेहा चौहान के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। उम्र 18 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, इनका रंग गेहुआ है, चेहरा गोल है और इकहरा बदन है। नेहा चौहान के बारे में जानकारी मिलने पर कृपया थाना अदलहाट जनपद मिर्जापुर से संपर्क करें। खोए हुए व्यक्ति का नाम नेहा चौहान है। श्री सतीश कुमार ने ग्राम गड़ौली थाना कछवा जनपद मिर्जापुर से हमें सूचना दी है कि उनकी पुत्री किरण बिंद 9 अप्रैल 2026 सुबह 9:30 बजे से कहीं लापता है। किरण बिंद के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। उम्र 23 वर्ष, कद 5 फीट, इनका रंग गेहुआ है, चेहरा लंबा है और इकहरा मजबूत जिस्म है। इनकी आंखों और बालों का रंग काला है और इनके लंबे घने बाल हैं। इन्होंने काले रंग की जीन्स और काले रंग की कुर्ती पहनी है और पैरों में सफेद चप्पल पहनी है। किरण बिंद पुत्री श्री सतीश कुमार के बारे में जानकारी मिलने पर कृपया थाना कछवा जनपद मिर्जापुर से संपर्क करें। कोई भी व्यक्ति का नाम किरण बिंद है। श्री दरोगा बिंद पुत्र श्री रामप्रीत बिंद ने ग्राम भोलापुर थाना धीना जनपद चंदौली से हमें सूचना दी है कि उनकी पुत्री कुमारी रिंजू दिनांक 16 अप्रैल 2026 से कहीं लापता है। कुमारी रिंजू के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। उम्र 15 वर्ष, कद 5 फीट, इनका रंग गेहुआ है, चेहरा लंबा है, इनके सर पर घने बाल हैं और आंखों का रंग काला है। इन्होंने नीले रंग की सलवार और सफेद रंग की फ्रॉक पहनी है। कुमारी रिंजू के बारे में जानकारी मिलने पर कृपया क्षेत्राधिकारी सकलडीहा जनपद चंदौली से संपर्क करें। श्री शिवनाथ यादव ने ग्राम गोपालपुर थाना अदलहाट जनपद मिर्जापुर से हमें सूचना दी है कि उनकी पुत्री कुमारी अनामिका दिनांक 15 मार्च 2026 दिन 3 बजे से अपनी सहेली नेहा चौहान पुत्री तेजबली ग्राम बिशुनपुरवा थाना इलिया जनपद चंदौली के साथ कहीं गुमशुदा है। अनामिका पुत्री श्री शिवनाथ यादव के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। उम्र 19 वर्ष, कद 5 फीट, इनका रंग गोरा है, चेहरा गोल है और इकहरा मजबूत जिस्म है। इनकी आंखों का रंग काला है और बाल काले और लंबे हैं। इन्होंने भूरे रंग का जीन्स और लाल रंग का टॉप पहना है और पैरों में सफेद जूते पहने हैं। कुमारी अनामिका पुत्री श्री शिवनाथ यादव के बारे में जानकारी मिलने पर कृपया थाना अदलहाट जनपद मिर्जापुर से संपर्क करें। कोई भी व्यक्ति का नाम कुमारी अनामिका है। अभी आप खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना सुन रहे थे। मीडियम वेव 241.5 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में उर्दू प्रोग्राम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: पेशकश आकाशवाणी प्रयागराज के मरकज से। तो आइए सुनते हैं असगर गोंडवे की शायरी में सूफियाना आहंग। मकाला निगार है डॉक्टर जहांगीर हसन और कलाम शायर हैं ताजवर सुल्ताना। आइए सुनते हैं।
1: पेशी खिदमत है उर्दू प्रोग्राम। सभी सामेन को निकहत सिद्दीकी का आदाब। सामेन, आज उर्दू बज्म में हम आपके लिए लेकर आए हैं मकाला असगर गोंडवी की शायरी में सूफियाना आहंग और कलामी शायर के तहत सुनिएगा मोहतरमा ताजवर सुल्ताना से उनका कलाम। सबसे पहले समाअत फरमाइए डॉक्टर जहांगीर हसन से मकाला असगर गोंडवी की शायरी में सूफियाना आहंग।
2: असगर गोंडवी उर्दू शायरी के उस सुनहरे अहद से ताल्लुक रखते हैं जिसमें तसव्वुफ महज एक फलसफा नहीं बल्कि एक जीता जागता तजर्बा बनकर सामने आता है। चुनांचे असगर ने उसी सूफियाना तजर्बे को अपनी शायरी में इंतहाई जमालो कमाल के साथ पेश किया है। असगर गोंडवी वो बाकमाल शायर हैं जिन्होंने गजल की रिवायती हुस्नो इश्क को तसव्वुफ के आबे तहूर से गुसल देकर उसे सिर्फ पाक व साफ ही नहीं किया बल्कि उसे एक हयात जावेदा भी बख्श दी है। नतीजतन जनाब असगर उर्दू गजल के उन मुनफरिद और मायानाज शोरा की सफ में मुमताज़ो नुमाया नजर आते हैं जिनके कलाम की खुशबू से उर्दू अदब का दामन हमेशा मुअत्तर रहेगा। उर्दू शायरी में तसव्वुफ कोई नई बात नहीं। खुदाए सुखन मीर तकी मीर से लेकर जाने सुखन मिर्जा असदुल्ला खान गालिब तक हर बड़े शायर ने सूफियाना असरारो मारिफ को बरता है, लेकिन असगर गोंडवी का मामला उन तमाम शोरा से अक्सर मुनफरिद और जुदा गाना है। उनके यहाँ तसव्वुफ कोई गुदड़ी या ऊनी लिबास नहीं या महज एक रिवायती मजमून नहीं बल्कि वो खुद राह तसव्वुफ के शहसवार भी थे और बहरे तसव्वुफ के गवास भी। चुनांचे वो तसव्वुफ को महज खलवत नशीनी पर महमूल नहीं करते बल्कि उसे आयने जिंदगी हरकत व अमल मुजाहमत और नशात रूह का सरचश्मा करार देते हैं। आम तौर पर सूफियाना शायरी को सुनकर इंसानी जहन में दुनिया बेजारी दुख दर्द और तन्हाई का एहसास उभरता है, लेकिन असगर ने इस नजरिए को बदलकर रख दिया है। उनके यहाँ तसव्वुफ में एक खास नौ का निशात और इम्बेसातो सुरूर पाया जाता है। वो गमे दुनिया पर आंसू बहाने वाले शायर नहीं बल्कि कायनात के जर्रे जर्रे में हुस्न इलाही का जलवा देख कर झूम उठने वाले सूफी शायर हैं और यही सबब है कि फानी बदायूनी से फिक्री हम आहंगी के बावजूद उनसे जुदागाना मालूम होते हैं, क्योंकि फानी के यहाँ हुजनिया फजाएं और मायूसियां हैं तो जनाब असगर के यहाँ तरबो निशात अंगेजियां हैं। मरते मरते न कभी आकिलो फरजाना बने, होश रखता है जो इंसान तो दीवाना बने। शेर में रंगीनिये जोशे तखयुल चाहिए मुझको असगर, कम है आदत नालो फरियाद का। असगर गोंडवी की गजलों में हुस्न और इश्क के अल्फाज भी बार बार आते हैं, लेकिन उनका हुस्न दुनियावी जमाले जहां आरा तक महदूद नहीं और न ही उनका इश्क इश्क मजाजी की हदों में मुकय्यद है। वो हुस्न हकीकी यानी अल्लाह ताला की जात के असीर हैं। वो कायनात की हर मादी शय को उसी एक सच्चे हुस्न का परतव और अक्स समझते हैं। है सरापा हुस्न वो रंगीन अदा जाने बहार, हुस्न पर हुस्न तबस्सुम सुबह खंदाने बहार। कुछ आग दी हवस ने तो तामीर इश्क की, जब खाक कर दिया उसे इरफां बना दिया। ये और इन जैसे बेशतर अशआर हैं जिनमें फलसफे हुस्न व इश्क का हसीन इम्तिजाज मिलता है और ये कि ये हुस्न व इश्क महज जज्बातियत के गम्माज नहीं बल्कि रूह की गहराई में उतर कर रूह में इनकलाब बरपा करने की पूरी सलाहियत भी रखते हैं। असगर गोंडवी के नज़दीक इंसानी दिल वो पाकीज़ा मकाम है जहाँ ज़ाते बारी ताला अपनी तजल्लियात जाहिर करती है। उनका मानना है कि जब इंसान कल्बी सुकून और तज़किया हासिल कर लेता है तो उसका दिल लामकानी और मावराई हकायक का गहवारा बन जाता है। वो इश्क हकीकी के जरिए कल्ब इंसानी को रोशन करने पर जोर देते हैं, इसलिए कि इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक का सफर वारदात कल्ब के बगैर नामुकम्मल है। उनके कलाम में जज्बात की सादगी व सदाकत, अखलास फिक्र ख्याल और दर्दमंदी व हमदर्दी का पहलू

नुमाया है। वो दिल को उन तमाम मनफी ख्यालात और तमाम तरह के बुरे ख्वाहिशात से पाक व साफ करने की तलकीन करते हैं जो इंसान को दुनिया की रंगीनियों में उलझाती हैं, ताकि तजल्लियात इलाही का नुजूल बराह रास्त कल्ब पर हो। रवायती तसव्वुफ में जहाँ हुस्न व मलाल और गिरिया व जारी पर जोर होता है, वहीं असगर की शायरी में कल्ब की तजल्ली एक खास नौ की वजदानी कैफियत और सूफियाना सरमस्ती पैदा करती है। उनका मानना है कि मोहब्बत और मारफत के नूर से मामूर दिल हमेशा पुरसकून और तरब अंगेज रहता है और वो कभी भी हवादिस रोजगार से खौफ नहीं खाता। असगर गोंडवी की गजलों में कल्ब का मरकज होना दरअसल इंसान के बातिन की बेदारी की अलामत है। वो जाहिरी रसूम व क़ुयूद से हटकर दिल की पाकिजगी और रूहानी बुलंदी को असल ईमान समझते हैं। साज़ दिल के पर्दों को खुद वो छेड़ता हो जब जान मुजतरिब बनकर तू भी लबकुशा हो जा। चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियाँ हों जिंदगी दुश्वार हो जाए। असगर गोंडवी की एक और बड़ी खूबी उनका मुनफरिद आहंग और तरन्नुम है। उनके अल्फाज में एक ऐसी मिठास और एक ऐसी गनायत है जो सुनने वाले के दिलों पर सहर तारी कर देती है। उनका कलाम पढ़ते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे कोई सूफी वजदो सुरूर और जज्बो कैफ के आलम में झूम रहा हो और ये लाजवाल अशार गुनगुना रहा हो के देखने वाले फरोगे रुखे जेबा देखें, पर्दे हुस्न पे खुद हुस्न का पर्दा देखें, अश्क पे हम को समझ लेते हैं अरबाब नजर, हुस्न तेरा मेरे चेहरे से झलकता देखें। इस तरह के अशार में जो सूफियाना रंगो आहंग है, जो तरन्नुमो जल तरंग है, जो खुदी और यकीन है, जो मोहब्बत और वारफ्तगी है और जो इश्क के जज्बात व कैफियात हैं, वो एक इंसान को जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किलात में भी मुस्कुराना सिखा देते हैं और यही असगर गोंडवी की शायरी का असल जादू और कमाल है। असगर गोंडवी के यहाँ कायनात का जर्रा जर्रा खुदा की पहचान और मार्फत का जरिया है। उनका मानना है कि सूफी वो नहीं होता जो दुनिया को छोड़कर जंगलों और बयाबानों में निकल जाए, बल्कि सूफी वो होता है जो दुनिया के हुजूम और बंदगाने खुदा के बीच रहकर भी अपने दिल को याद इलाही से शादो आबाद रखे। असगर गोंडवी के यहाँ ऐसे अशार की एक लंबी फहरिस्त है जिनमें हुस्न कायनात की हकीकत और मारफत इलाही के मजामीन बतौर खास महसूस किए जा सकते हैं। ऐसे अशार के पर्दे में असगर कायनात को एक धोखा फरेब और बेसबाती के तौर पर पेश करते हैं, जबकि हर एक शय में तजल्लियात रब्बानी को कारफरमा मानते हैं। चुनांचे असगर गोंडवी इसी फलसफे को निभाते हुए कहते हैं, आंख हो जब महव हैरत तो नुमाया है वही, फिक्र हो जब कारफरमा तो वही मस्तूर है, जो नक्श है हस्ती का धोखा नजर आता है, पर्दे पे मुसव्विर ही तन्हा नजर आता है। गालिब की तरह असगर ने कभी भी दावे तसव्वुफ तो नहीं किया, मगर इस हकीकत से भी इनकार मुमकिन नहीं कि उनकी शायरी में सूफियाना आगही भी है और बेसाख्तगी भी, अर्दियत भी है और हकीकत पसंदी भी, जमालियाती रंगो नूर भी है और सरशारी व दिलदोजी के साथ हुस्न रानाई भी। असगर की यह हकीकत बयानी काबिले दीद भी है और काबिले सद आफरी भी के जर्रों का रक्स मस्ती शहबाए इश्क है, आलम रवा दवा बतकाजाए इश्क है, जब ये नहीं तो खत्म है रंगीनियां तमाम, साजे खुदी में जोश नवाहाय इश्क है। इलावा अजीं असगर गोंडवी के यहाँ उमर खय्याम की ला अदरियत भी मौजूद है, मौलाना रूम के मनाजिर फितरत की सरमस्ती भी है और हजरत हाफिज का बादा सागर भी, लेकिन इन तमाम हकायक के बावजूद वो कुराना तकलीद से कोसों दूर नजर आते हैं, क्योंकि उनकी नुदरत पसंद और अखाज तबीयत ने अपनी राहें खुद तलाश की हैं। ला अदरियत, मुनाजिर फितरत और बादा सागर के पर्दे में ये हुस्न तखयल देखें कि तमाम दफ्तर हिकमत उलट गया हूँ मैं, मगर खुला न अभी तक कहाँ हूँ क्या हूँ मैं, साकी तेरी निगाह को पहचानता हूँ मैं, मुझको फरेबे सागर व मीना न चाहिए, गर्क हैं सब इल्म हिकमत दीन व ईमा देखिए, किस तरह उठा है एक सागर से तूफान देखिए। एक बात और जो शोरा के हजूम में भी असगर को इनफरादियत अदा करती है वो है उनकी शेरियत। दकीक से दकीक हकीमाना और फलसफियाना ख्यालात, पेचीदा से पेचीदा असरार व मारिफ और लतीफ से लतीफ नुक्ता संजी में भी उनके यहाँ शेरियत अपनी जाहो जलाल और वकारियत के साथ जलवा फरमा रहती है।
چنانچہ ان کا یہ انداز بیان دیکھیں کہ

0: एक कतरे शबनम पर खुर्शीद है अक्स आरा, ये नेस्ती वो हस्ती अफसाना है अफसाना। लो शमे हकीकत की अपनी ही जगह पर है, फानोस की गर्दिश से क्या क्या नजर आता है। इन जैसे अशार में बड़े ही हकीमाना तौर पर ज़ात मुतलक और वजूद मुतलक की हकीकत बयान की गई है, और ये बावर भी कराया गया है कि मुस्तकिल जलवा सिर्फ ज़ात मुतलक का है, उसके अलावा तमाम रंगीनियाँ कल आदम हैं या फिर उसी के जलवे और मज़ाहिर हैं। आज जब हम मादी दौर, नफ्सियाती इज़्तिराब और ज़हनी तनाव के साये में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ऐसे में असगर गोंडवी की सूफियाना शायरी हमारे दिलों के लिए एक मरहम की हैसियत रखती है। उनका कलाम हमें सिखाता है कि बाहरी दुनिया के हंगामों से निजात पाने का वाहिद और तन्हा जरिया अपने अंदर की दुनिया को रोशन करना है। बिलाशुबह असगर गोंडवी की गजलें हमें अमनो अमान, मोहब्बत व उल्फत, चैन व सुकून और खुदा की जात पर कामिल एतमाद और तवक्कुल का दर्स देती हैं। उन्होंने गजल के रिवायती रंग को तसव्वुफ के नूर से मामूर किया और उर्दू अदब को वो मेराज अता की कि जिस पर हमेशा नाज किया जाता रहेगा। जिसे लेना हो आकर उससे अब दरसे जुनून ले ले, सुना है होश में है असगरे दीवाना बरसों से।
1: अभी आप मकाला समाप्त फरमा रहे थे और अब समाप्त फरमाइए मोहतरमा ताजवर सुल्ताना से उनका कलाम।
2: गजल का मतला हाजिर कर रही हूँ, मुलाहजा कीजिएगा। रस

0: चले।
1: अभी आप मोहतरमा ताजवर सुल्ताना से उनका कलाम समात फरमा रहे थे और इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है। इस उर्दू प्रोग्राम को आकाशवाणी के प्रयागराज मरकज पर तैयार किया गया और आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से नशर किया गया। इस प्रोग्राम को आपकी खिदमत में पेश किया निकहत सिद्दीकी ने।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी प्रयागराज के मरकज से उर्दू कार्यक्रम। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 700।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं

0: का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
0: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
2: 0542227658।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नंदलाल रवि और साथियों के स्वर में लोकगीत। आइए इनसे पहले सुने ये सोरठी।

इस सोरठी के बाद नंदलाल रवि और साथियों से आइए अब सुनते हैं ये पूर्वी

नंदलाल रवि और साथियों से अभी आपने ये पूर्व भी सुना, लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। श्रोताओं, हम आपको याद दिलाएं, नंदलाल रवि और साथियों के गाए लोकगीत आप सुन सकते हैं दिन 1:45 पर भी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। प्रस्तुत है कार्यक्रम झंकार। श्रोताओं को प्रशांत परांजपे का प्यार भरा नमस्कार।

मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले, दिल टूट जाए तो क्या हो अन्न।

ये किशोर कुमार की फिल्म का नाम था कटी पतंग। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और सुबीर सेन की आवाज में फिल्म छोटी बहन का ये गीत। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

यह आवाज है लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की। फिल्म का नाम मिस्टर नटवरलाल। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार राजेश रोशन।

0: आकाशवाणी वाराणसी से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 21 जून 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है योग द्वारा रोगों का इलाज। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारी डॉक्टर होंगी डॉक्टर अंजना त्रिपाठी। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 18 जून 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच, तो हमें फोन करना न भूलें। हमारा फोन नंबर है 222-1052, बनारस का एसटीडी कोड है 0542। तो सुनते रहिए आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक

0: 21 जून 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है योग द्वारा रोगों का इलाज। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारी डॉक्टर होंगी डॉक्टर अंजना त्रिपाठी। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 18 जून 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच, तो हमें फोन करना ना भूलें। हमारा फोन नंबर है 222-1052, बनारस का एसटीडी कोड है 0542। तो सुनते रहिए आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी।

0: Akashvani at 90.
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 21 जून 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है योग द्वारा रोगों का इलाज। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारी डॉक्टर होंगी डॉक्टर अंजना त्रिपाठी। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 18 जून 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच, तो हमें फोन करना न भूलें। हमारा फोन नंबर है 222-1052, बनारस का एसटीडी कोड है 0542। तो सुनते रहिए आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी।

सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: माशूक तेरे अंदर तू तू तू बाहर खेलेला
1: जा जवानी कब से
0: कब से

0: कई कु परेला।
1: वाह वसंत वाह, वे क्या शेर मारा है।
2: वाह वाह।

ये आवाज़ है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और फिल्म का नाम है सरगम।

और यह है आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। फिल्म का नाम क्रांति, आवाज लता मंगेशकर राव साथियों की, गीतकार हैं संतोष आनंद और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, DTH, DRM 1233 किलोहर्ट्ज़ वेव्स, OTT पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को। प्रस्तुत है आपके ईमेल संदेशों पर आधारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। और अजय कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपका रेडियो दोस्त अनुपम। आप सभी को हमारा नमस्कार। तो इस कार्यक्रम में आपको पता है कि हम पहले से आए हुए मेल को

शामिल करते हैं, जो श्रोता इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए हम मेल आईडी बताना चाहेंगे। हमारी मेल आईडी नोट कीजिए, हमारी मेल आईडी है airvnsfgexp@gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए airvnsfgexp@gmail.com। इस मेल आईडी पर आप अपने संदेश भेजेंगे, उसे अगले कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। फिलहाल हम शुरू कर रहे हैं प्रोग्राम जिसका नाम है फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। कार्यक्रम में पहला मेल हमने लिया है गांव नारी पच देवरा गाजीपुर से भेजने वाले श्रोता हैं अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा, सचिन उनके मम्मी पापा। जवाहरनगर उदयपुर से बाबू भाई, भारती देवी। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी, मिथिल नाचानी। गांव डागर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत कौर, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से गुरमीत सिंह मीता का भी मेल हमें मिला है। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, अनुराग मोहन। पोटियाकला दुर्ग से आप हैं संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, अजय कुमार गुप्ता और इनके नन्हे मुन्ने अन्विका तनुश्री। कस्बा बराड़ा जिला अंबारा हरियाणा से ये मेल हमें भेजा है रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरु कीरत राहुल, गुरु शब्द सिंह राहुल ने। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना। नागर कोहरा जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दिशंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। मित्रनगर बीड शहर महाराष्ट्र से विकास बनसोडे, रेखा बनसोडे, अदिति बनसोडे, वैभव शिंदे, हिल स्टेशन खंडाला से आकाश सरोदे और प्रिया सरोदे। आप सभी को हम सुनाने जा रहे हैं आप सभी की पसंद पर मजरूह का लिखा हुआ गीत, संगीत ओपी नैयर का, आवाज मोहम्मद रफी की, फिल्म मेरे सनम।

जी हाँ दोस्तों, हम भी पुकार रहे हैं छाँव को। काफ़ी धूप हो रही है, काफ़ी गर्मी पड़ रही है और निश्चित तौर पर हर आदमी सुकून ढूंढ रहा है, हर आदमी धूप से बचना चाह रहा है। तो धूप से बचने का तो हम हर बार आपको यही उपाय बताते हैं कि बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर मत निकलिए और घर में बैठकर आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम को सुनिए, आपको सुकून मिलेगा और छाँव भी मिलेगी। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं अगला मेल किसने भेजा है। ये मेल भेजा है जवाहरनगर उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी। अदार नांदगढ़ छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी भूपेश और दीपेश वर्मा का भी मेल मिला है। लिवई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी, उज्ज्वल दास मानिकपुरी। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी। पद्मा टाकिच नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबिंद शाह, राजेंद्र जी शाह। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना। सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगता। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्बी, बेबी बाय हिमाक्ष। कोहका भिलाई से ये संदेश हमें भेजा है उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीतू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भविका सिक्का। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामन शेंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा गोंडाने। ऑक्सीजन पार्क का जब नाम आता है तो लगता है कि वहाँ वाकई ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन कैसे होगा, मतलब वहाँ बहुत पेड़ पौधे होंगे।

और इस गर्मी में तो पेड़ पौधे से ही बस आस है, कहीं से कोई आस बचती नहीं है। पेड़ हैं, पौधे हैं, तभी हम बचे हुए हैं। तो जो पेड़ बचे हुए हैं उनको बचाइए, नए पेड़ लगाइए, और पेड़ लगाइए ही मत, उनको बचाने का भी काम करिए। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से ये मेल भेजा है विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू ने। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार। ग्राम लसुड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसर प्रवीण। ग्राम पीपलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल। गमहरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल, आर्य कुमार जायसवाल। जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल और अभिनव जायसवाल। पटेल नगर मुगलसराय से शशि सिंह, आस्था सिंह और आकाश सिंह। आप सभी सुनना चाहते हैं बसेरा फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, शब्द रचना गुलजार की, संगीत आर डी बर्मन का।

जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर बसेरा होता है वहीं सवेरा होता है, और जहाँ सवेरा होता है वहाँ बसेरा होता है। और इस गीत में बात थी घर बनाने की, तो घर तो ज़रूर बनाइए, लेकिन घर में ऐसी जगह ज़रूर बनाइएगा जहाँ हम पेड़ पौधे भी लगा सकें, क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूँ, बिना पेड़ पौधे के हमारा जीवन अधूरा है। और जिस कदर गर्मी पड़ रही है, उससे बचने का और कोई उपाय बचता भी नहीं है। सिर्फ सहारा है तो वृक्षों का, सिर्फ सहारा है तो प्रकृति का, सिर्फ सहारा है तो पर्यावरण का। कार्यक्रम में अगला मेल हमें भेजा है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी, मुकाम पोस्ट फूल चिंचोली तालुका पंढरपुर से जाकिर मुलाणी, सुमैया मुलाणी, सुबान मुलाणी, समीर मुलाणी, सलमा मुलाणी, ममताज मुलाणी, दिलशाद मुलाणी, नसीर मुलाणी, बानु बी मुलाणी, बादशाह मुलाणी और पूरा मुलाणी परिवार। ये संदेश भेजा है डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबी, राधिका गजबी, अनिष्का और तन्मय ने, गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर जायसवाल, बबरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबू राम जयपाल, अपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। पटेल नगर मुगलसराय से सुनील कुमार सिंह का भी मेल हमें मिला है। सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से ये हैं अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर, आकर्ष राजभर। ग्राम पजौनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसोलिया। फजिलका पंजाब से खेड़ा परिवार, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा और परिवार के सभी सदस्य। पटियाली रोड गंज डुंडवारा से आमिर हुसैन, बेगम तैयबा शेख, फौजिया शेख, आहिल हुसैन, अरहान हुसैन और परिवार के सभी सदस्य। ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति। ग्राम कालापारा सरगुजा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े। कलनौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यमानंद। बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत।

0: जी हाँ, ये मस्त बहारों के जो आशिक है ना, तो ये बहार आती कहाँ से है? बहार आने के लिए भी वही बात, पेड़ पौधे का होना आवश्यक है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और सबसे मिलकर ही बहारों का निर्माण होता है ना। तो कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक अंतराल का, आप कहीं मत जाइएगा, हम आपसे मिलते हैं इस अंतराल के बाद।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 21 जून 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है योग द्वारा रोगों का इलाज। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारी डॉक्टर होंगी डॉक्टर अंजना त्रिपाठी। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 18 जून 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो हमें फोन करना ना भूलें। हमारा फोन नंबर है 222-1052। बनारस का एसटीडी कोड है 0542। तो सुनते रहिए आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
0: अंतराल के बाद आप सभी का फिर स्वागत है कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस में। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से अपने रेडियो दोस्त अनुपम के साथ। कार्यक्रम में अगला मेला में भेजा है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट ने। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगा वाला चौक, गोराया, जालंधर, पंजाब से। हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोर्ड, सीताराम कांगड़ा और साहिल कांगड़ा। परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रीतेश संघई और पूरा परिवार। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू, चंपा साहू।

चंद्रपुर नगर सहारनपुर से कौशल्या जोशी, सुरेश जोशी और प्रभा जोशी, अंबाला से आशु खान और सोनाली खान, कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा चंदन, प्रथमेश चंदन, पांडुरंग कुंभार, कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान इंदुरकर, तेजस्वी चौहान, माई इंदुरकर, बेबी शौर्या, श्रेयस, अंकिता और अनिकेत चौहान, सिद्धेश्वर नगर जीवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके और श्राव्या रामटेके, ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, चामुन देवी साहू, प्रेम पूजा दुष्यंत, प्रांजल समीक्षा बेबी आराध्या साहू, नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पूनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन, पलारी छत्तीसगढ़ से आपने हमें मेल भेजा है, इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और निशा अजीम, गुजरात से प्रवीण सोनी और लाला सोनी, छत्तीसगढ़ से प्रभा रानी गोड़िया।

आशा जटोलिया और देवशंकर जटोलिया, उमरखेड़ से सहराज खान और बॉबी खान। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा। सहारनपुर से सुरेश जाटो और आसू जाटो।

लोरमी चचोड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ मरावी, आप सभी को हम सुनवाने जा रहे हैं स्वामी फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है अमित खन्ना ने, संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने, आवाज लता मंगेशकर की।

अब आप सुनेंगे फिल्म गौतम गोविंदा का गीत। और इस गीत के लिए हमें संदेश भेजा है आप सभी श्रोताओं ने, कुटव नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिया निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कला जिला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। गांव नांगल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बाल कृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा और राहुल शर्मा। वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार सिंगणकर और अर्पिता जी। मोहम्मद बदरुद्दीन, फैजान, फरहान, समीरा, अजीन गुड़िया तेलंगाना बोहंगीर से। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खट से और विनोद खट से। नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साईं गायकवाड़। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और रिधान खुराना। गंज ढुंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नास, नवाजिक शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी और राधा नामदेव। कृष्णा कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी, सुशील योगी, बब्बू डब्बू, राजू मिगलानी और बबीता मिगलानी। राज पैलेस मौनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से ये संदेश हमें भेजा है मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पिहू स्वर्णकार ने। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पू भाटिया का भी मेल हमें मिला है। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूरम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवाकर, निर्मला नवाकर, विशाल नवाकर। मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताड़े, आशीष मोहरकर। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा। सुनिए अपनी पसंद पर आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, गौतम गोविंदा फिल्म, आवाज किशोर कुमार की।

एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, जी हाँ, ऋतुओं का क्या है, वो आते और जाते रहेंगे। कभी गर्मी है तो कभी ठंड भी आएगी और उसके बाद बारिश भी आएगी, लेकिन हमें यत्न और प्रयत्नों करना ही होगा ना दोस्तों। तो आप समझ रहे हैं मैं बार बार फिर क्या कहना चाह रहा हूँ, आप बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, बहुत आवश्यक हो तो घर से ना निकलिए, घर में बैठिए और बच्चों को बुज़ुर्गों का भी ख्याल रखिए, बेजुबान पशु पक्षी और जानवरों का भी।

0: विशेष ख्याल रखिए, उनको पानी देने का काम जरूर कीजिएगा दोस्तों। और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप वृक्ष लगाइए, वृक्ष की रखवाली कीजिए। जन्मदिन पड़ता है तो बहुत ज़्यादा गिफ्ट देने की आवश्यकता नहीं है, एक पौधा गिफ्ट में दीजिए और उनसे कहिए कि इस पौधे का भी जतन और उसको देखभाल ऐसे करें कि अगले साल तक वो पौधा दिखाई पड़ने लगे कि हाँ आज मैंने जन्मदिन पर ये पौधा लगाया था। एक संकल्प लेना चाहिए, हम हर आदमी को, हर व्यक्ति को अपने लिए, अपने देश के लिए जितनी हरियाली रहेगी तो ऋतुएँ फिर तो हमें ऋतुओं का इंतज़ार रहेगा कि ये ऋतु जल्दी आए, और जल्दी आएगी, बारिश भी आएगी। इसमें तो इंतज़ार है ना बारिश की बूंदों का बहुत शिद्दत से, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा विलंब तो हो रहा है, और विलंब तो इतना हो रहा है कि गर्मी का पारा लगातार 40 के ऊपर बना हुआ है। तो इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए दोषी हम आप सभी हैं, है ना दोस्तों। तो आप कहीं मत जाइएगा, कार्यक्रम में हम मिलते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 21 जून 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है योग द्वारा रोगों का इलाज। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारी डॉक्टर होंगी डॉक्टर अंजना त्रिपाठी। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 18 जून 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो हमें फोन करना ना भूलें। हमारा फोन नंबर है 222-1052। बनारस का एसटीडी कोड है 0542। तो सुनते रहिए आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
0: एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस में, और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से अपने रेडियो दोस्त अनुपम के साथ। कार्यक्रम में अगला मेल भेजा है ग्राम कुंडावल तारा पोस्ट लाल रोड स्टेशन जिला देवरिया उत्तर प्रदेश से रतिनाथ त्रिपाठी राखी आर्या एन्द्री ओमनाथ सारंग शिवांग रोली अदिति माताजी निर्मला त्रिपाठी हरजिंदर सिंह भाटिया एंजल भाटिया सोनू भाटिया पप्पी भाटिया ने स्टेशन रोड जमशेदपुर से ये संदेश हमें भेजा है। नौशाद सलमानी बेबी आलिया आयान बाबू और निसार सलमानी ये संदेश भेज रहे हैं धनौरी तेलीवाला से। वडिंगा खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी लवली और आरती अरोड़ा चितबड़ा गांव बलिया से जीसी गुप्ता आराधना गुप्ता नेहा निधि आयुषी और अनुष्का ये संदेश भेजा है। लालगंज रायबरेली से के साहू अमिता साहू स्वस्तिका ऋषु ओला और विनस ने कनाड प्लेस नई दिल्ली से डॉक्टर अर्चना और पुरुषोत्तम गांव कुमार खेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर शाहिना हसन नाजिया इब्राहिम मोताला महाराष्ट्र से कुमकुम विजय सुरलकर रतनमाला सुरलकर आप सभी सुनिए अपने पसंद पर लता मंगेशकर की आवाज में सूरज और चंदा फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने श्री काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी से आजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती सिंह, विनायक सिंह, मोहिनी सिंह, मोहित सिंह और प्यारी कोको रानी। मुबारकपुर उचिता की आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन, फातमा सोगरा, वकार हैदर, कनी सकीना, रहसीना दिलशाद, शफी मोहम्मद सोलंकी, शाहरुख खान, मांगे खान, शहीद खानी, इदो कुमारी, इसरोल बाड़मेर राजस्थान से अपने संदेश भेजा है। करौता लोहता वाराणसी से अशोक प्रजापति, आकाश अंजलि और कन्हैया प्रजापति। गढ़नोखा लालगंज रोहतास बिहार से राजकिशोर सिंह चौहान, बड़क सिंह चौहान। इमरती यादव ग्राम बरठी पोस्ट सकल डिहा चंदौली से गोरक्षणी सासाराम गली से कुमारी गंगारती चौहान, राजेश कुमार अकेला, कुमारी गुड्डू चौहान और आर के सिंह चौहान। ये संदेश भेजा है उदिता और सुचिता विश्वकर्मा ने देवरिया उत्तर प्रदेश से। अतरौली गाजीपुर से हनुमान चौधरी का भी संदेश हमें मिला है। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद। आप सभी सुनिए मुकेश की आवाज में दीवाना फिल्म का गीत। गीतकार शैलेंद्र, संगीत शंकर जयकिशन का।

ये कार्यक्रम कैसा लगा इसे आप PKLD में जरूर लिखिएगा। हमारा पता नोट कीजिए, PKLD@varanasi.gmail.com। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें रहेगा इंतजार।

इसी ख्वाहिश के साथ की होगी फिर मुलाकात फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम समाप्त करने की। अपने रेडियो दोस्त अनुपम को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन

जी कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था। अब आइए सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: शबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार कीजिए स्वीकार। करते हैं शुरू एक सुंदर विचार से जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी ने।
2: लिखते हैं, सकारात्मक सोच हर समस्या में समाधान खोज लेती है।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार। आपके इस विचार से सच में हम सबको प्रेरणा मिलती है। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
1: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
1: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो जैसा कि हमने कहा था, इस सप्ताह हम बात करेंगे कुछ अनूठी झीलों के बारे में। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज का विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसी झील के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत ही रहस्यमय और पवित्र माना जाता है। श्रोताओं, जरा अंदाजा लगाइए मैं किस झील की बात कर

रहा हूं। आपको संकेत तो मिल ही गया होगा कि वो झील रहस्यमय भी मानी जाती है और पवित्र भी। जी हां श्रोताओ, यदि आपके मन में मानसरोवर झील का नाम है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। तो श्रोताओ आपको बता दें कि यह दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4,590 मीटर है और इसका क्षेत्रफल करीब 320 वर्ग किलोमीटर है। आइए अब जानते हैं कि ये झील है कहाँ। तो श्रोताओं आपको बता दें कि ये झील तिब्बत और चीन के पर्वतीय क्षेत्र में पड़ती है। इसका सबसे निकटतम पर्वत है कैलाश पर्वत। आपको ये भी बता दें कि भारत की ओर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे या सिक्किम के नाथुला पास से की जाती है। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसके निर्माण का कारण है भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर। इस टक्कर के कारण भूमि ऊपर उठी, पर्वतों में दरारें और बड़े बड़े गड्ढे बने जिससे हिमनदों का पानी जमा हो गया। इसीलिए मानसरोवर झील को टेक्टोनिक झील भी कहते हैं। अब एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। अभी आपने सुना कि ये मीठे पानी की झील है, लेकिन श्रोताओ इसी झील के बिल्कुल पास एक और झील है जिसका पानी खारा है। इसे राक्षस ताल कहते हैं। ये एक बंद झील है। जल के निकास और वाष्पीकरण की भिन्न प्रक्रियाओं के कारण यहाँ का पानी खारा है, क्योंकि यहाँ का पानी वाष्पित होता रहता है जिसके कारण लवण और अन्य खनिज इसी में रह जाते हैं। दोनों सरोवरों को कैलाश पर्वत, हिमनदों और वर्षा से ही जल मिलता है। एक छोटी नदी इन दोनों सरोवरों को आपस में जोड़ती है जिसे गंगा चू नदी कहते हैं। तिब्बती भाषा में नदी या जलधारा को चू कहते हैं। जी हाँ, सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है श्रोताओ। आइए अब सुनते हैं एक और बड़ी रोचक बात इस झील के बारे में। वहां गए यात्रियों के अनुसार मानसरोवर झील रंग बदलने वाली झील है। सूर्योदय के समय ये नीले और हरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन सूर्यास्त के समय इस झील का रंग सुनहरी आभा में बदलता हुआ दिखाई देता है। आपको एक और बात बता दें कि मानसरोवर झील सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। जहां तक धर्मों की बात है, ये झील हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखती है। श्रोताओं एक और बड़ी खास बात, मानसरोवर झील को कैलाश पर्वत का दर्पण भी कहा जाता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। जी, इसका उत्तर है मानसरोवर झील में पास के कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है, खासकर साफ और शांत मौसम में। मानसरोवर और कैलाश पर्वत क्षेत्र से सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। बौद्ध धर्म में मानसरोवर झील को मापाम युमत्सो कहते हैं, जबकि जैन मान्यता में इस झील को ऋषभदेव से जोड़ा जाता है जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। आइए बात करते हैं इस झील में पाए जाने वाले जलीय जीवों की। तो श्रोताओ यहाँ ठंडी जलवायु और दुर्गम परिस्थितियों के कारण जैव विविधता सीमित है, फिर भी कुछ अनुकूलित जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इस झील में मछलियों की बड़ी अच्छी मात्रा है। पानी इतना साफ है कि अंदर तैरती हुई मछलियां भी 14 मीटर की गहराई तक करीब करीब साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। यद्यपि मान्यताओं के कारण यहाँ मछली पकड़ना या मारना निषिद्ध है। ये झील पर्वतीय पक्षियों और पशुओं के लिए एक आदर्श ठिकाना है। दुर्लभ प्रजाति के हंस, ब्राह्मणी बतख और पहाड़ी कौवे यहाँ मिलते हैं। जहाँ तक पशुओं की बात है, छोटे तिब्बती गधे और दुर्लभ प्रजाति के याक भी यहाँ मिलते हैं। तो श्रोताओं अब करते हैं आज की चर्चा को समाप्त, लेकिन जाते जाते एक और रोचक तथ्य आपके साथ साझा करता हूँ। मानसरोवर झील जीवन से भरपूर है। यहाँ पशु पक्षी और दुर्लभ वनस्पतियां प्रचुरता से मिलती हैं, लेकिन पास के राक्षस ताल में खारे पानी के कारण लगभग कोई मछली या जलीय वनस्पति नहीं होती। इसीलिए लोक मान्यता में मानसरोवर झील को अच्छाई और राक्षस ताल को बुराई का प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर मानसरोवर न केवल अध्यात्म और आस्था का केंद्र है, लेकिन ये ऊंचे दुर्गम स्थान की पारिस्थितिकी तंत्र का भी बेजोड़ उदाहरण है। तो श्रोताओ ये थी जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है। आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। तो श्रोताओ ये थी रोचक जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है। आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। हमारा IBRS नंबर भी नोट कर लें, 8800440559।

0: और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की रोजाना की उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मंगल पांडे।
1: ये कार्यक्रम अमर शहीद मंगल पांडे के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा सूचना देता है।
2: दादी जी।
3: अरे आशीष, दीपिका आओ आओ, कहाँ से आ रहे हो भाई, बैठो।
2: दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
3: हाँ पूछो।
2: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं।
3: ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है, जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
2: अच्छा।
3: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे।
2: अच्छा।
3: यानी आजादी आजादी आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर गरीब, छोटे बड़े सभी लोग और जांबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। उस समय हिंदुस्तान के लोगों पर एक जुनून सवार था। देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था।
4: अच्छा।
3: ऐसा ही एक जांबाज सिपाही था, मंगल पांडे।
2: मंगल पांडे
3: 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया।
4: अच्छा।
3: उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जा रही थी।

0: दादी जी हुँ? लड़ाई में कौन कौन थे?
1: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
2: बड़े बहादुर थे ये।
1: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
0: दादी दादी, हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
2: वो कहाँ के रहने वाले थे?
1: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
2: अच्छा।
1: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियाँ सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
0: अच्छा।
1: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। और धीरे

0: धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
1: दादी उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
0: भाई उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में, और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
1: अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने?
0: बेटा उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
2: अच्छा क्या क्या, जरा सुनाओ ना दादी।
0: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे।
2: ऐसा क्यों?
0: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे। इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।
3: अरे अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
1: दादी फिर क्या हुआ?
0: फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,
3: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
2: फिर क्या हुआ दादी?
0: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई। सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
1: फिर क्या हुआ दादी?
0: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
2: अच्छा?
0: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।
1: उसके बाद क्या हुआ?
0: बैठक के बाद बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
4: ये गोरे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे दीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों ने जन्म लिया। हम कदापि अपना धर्म भ्रष्ट न होने देंगे।
5: नहीं होने देंगे, बिल्कुल
4: नहीं। भले ही हमें फांसी के तख्ते पर झूलना पड़े।
0: सैनिकों में गुस्सा और तनाव था, शायद कुछ होने वाला है। बच्चों रोज की तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका पारा बहुत गर्म था, गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा।
4: भाइयों उठो, किस चिंता में पड़े हो? मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आओ भारत माँ की आजादी के लिए इन अधर्मी अत्याचारियों पर टूट पड़ो।
0: सैनिकों में और जोश भर गया। परेड के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा।

0: था।
1: हम पांडे को अरेस्ट मांगता है।
2: मंगल पांडे
3: जिंदाबाद,
2: मंगल पांडे
3: जिंदाबाद,
2: इंकलाब
3: जिंदाबाद,
2: इंकलाब
3: जिंदाबाद।
0: तुरंत ही मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉर्म आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।
4: ए मंगल पांडे, वॉच आउट।
0: सारी छावनी में खलबली मच गई।
5: उसके बाद क्या हुआ दादी?
0: उसके बाद तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया।
4: अरेस्ट करो! मंगल पांडे को किसी के हाथ नहीं लगने देंगे।
5: दादी जी, फिर क्या हुआ?
0: कर्नल व्हीलर वहां से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग ली।

0: come, bande kau, ki kona mangta hai, durant hospital bhejo.
1: उसके बाद क्या हुआ?
2: उसके बाद ठीक होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय मंगल पांडे ने छाती तानकर खुले शब्दों में कहा,
3: हाँ, मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी थी, पर मेरा उनसे किसी प्रकार का निजी द्वेष नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूँ।
1: क्या कोई कार्रवाई हुई?
2: हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
4: दादी जी, सैनिक अदालत का फैसला क्या था?
2: सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता का वो सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई।
4: इसके बाद क्या हुआ दादी?
2: इस बलिदान के कारण आज सारा देश मंगल पांडे को याद करता है। उन पर फिल्में बनाई गई। लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे। मंगल पांडे पर प्रसिद्ध नारायण सिंह की कविता जो भोजपुरी भाषा में लिखी है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
4: अच्छा।
2: इस कविता में क्रांतिवीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है।
4: ओह।

के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैल, बलिया का मंगल पांडे के बलबेदी से ललकार भैल, मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मसहूर चलल, गोरनी का पलटनी का आगे, बलिया के बांका

0: बलिया के बांका सूर चलल, गोली के तुरंत निशान भइल, जननी के भेंट परान भइल, आजादी का बल बेदी पा, मंगल पांडे बलिदान भइल, जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैली।
1: दादी, इस लोकगीत का अर्थ क्या है?
2: इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया।
1: अच्छा।
2: बलिया के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तान कर खड़े हो गए। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई, जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम मंगल पांडे और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बहादुर कशी का।
4: ये कार्यक्रम भारत के बहादुर बच्चों पर निर्मित कार्यक्रमों की श्रृंखला से लिया गया है, जिसमें एक बहादुर बच्ची कशिका के जीवन और उसकी बहादुरी को विस्तार से बताया गया है और किस प्रकार इस बहादुर बच्ची ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर दूसरों को एक बड़ी विपत्ति से बचाया।
5: तुम और देवेंद्र नाश्ता कर लो।
6: माँ, आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
5: देखो बेटी, तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं। तुम लोग भी नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
6: ठीक है माँ, हम नाश्ता कर लेंगे, पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
5: अच्छा ठीक है, देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ।
6: अच्छा माँ।
7: माँ।
6: लो, देवेंद्र भी आ गया।
7: दीदी, मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है।
5: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना, समझे?
6: ठीक है माँ।
7: नाश्ता नाश्ता यही ले आओ दीदी, ठीक है? मैं यही टीवी के पास बैठकर खाऊंगा।
6: ठीक है, मैं अभी लाती हूँ।
7: ये देखो दीदी, ये मारा।
6: देवेंद्र चुप रहो, मैं भी देख रही हूँ।
7: अरे ये मारा।
6: अच्छा, तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं?
7: बंद कर दिया होगा, ये तो देखो।
6: याद नहीं आ रहा तो जाओ देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है। टीवी की आवाज कम करो।
7: कोई नहीं है दीदी, ये गिरा।
5: लगता है कोई आया है। काशु बेटी, देखो दरवाजे पर कौन है।
6: अच्छा माँ, कौन? आप लोग कौन? कहिए किससे मिलना है? अरे
8: हमें अंदर आने दो।
6: अरे क्यों?
9: ए लड़की, रास्ते से हट जा।
6: क्या काम है? ठहरो ठहरो, मैं माँ को बुलाती हूँ।
8: लड़की हट।
6: माँ,
8: ये चाकू देख रही है ना?
9: ज्यादा होशियारी मत दिखा।
6: अरे
9: मैं इस बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा।
6: माँ,
9: हट रास्ते से।
6: क्या हुआ? देखो जल्दी।
5: ये क्या है? अरे अरे कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को?
8: ए शोर मत मचा, जल्दी से चाबी निकालो। तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
6: हाँ, मेरी माँ को छोड़ दो।
8: ये चाकू देख रही है ना?
6: छोड़ दो,
5: मुझे नहीं मालूम,
9: याद नहीं कहाँ रखी है। जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा।
5: अरे मेरे बात को छोड़ो,
6: मेरी माँ को छोड़ो।
8: चुप चुप, आवाज निकाली तो यहीं ढेर कर दूंगा। चुप, आवाज
6: नहीं।
9: सुनो सुनो, इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो।
10: अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
11: हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
6: देवेंद्र।
7: हाँ दीदी।
6: चोर तो उस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं।

0: पापा को फोन करती हूँ। देविंदर तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है?
1: अच्छा।
0: हेलो।
2: हाँ बेटा बोलो।
0: पापा।
2: हाँ
0: पापा।
2: हाँ बोल रहा हूँ।
0: जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुसाए हैं।
2: कौन घुसा है?
0: माँ को बहुत मार रहे हैं।
2: अच्छा तुम घबराओ नहीं। नहीं तुम ऐसा करो, पड़ोसियों को बुलाओ, तब तक मैं आता हूँ, है? ठीक है?
0: अब देविंदर मैं बाहर से शोर मचाती हूँ, तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ।
1: अच्छा।
0: बचाओ घर में चोर घुसाए हैं, बचाओ।
3: और शोर सुनकर भाटिया साहब के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने चोरों की खूब पिटाई की। इसी बीच काशु यानी कशिका के पापा भी आ गए और पुलिस भी आ गई।
4: कितना बहादुर बच्चा है, देखो तो सही इसको कशिका को। वाह वाह वाह, कमाल कर दिया इस बच्चे ने।
5: आज तो हमारी जान कशिका ने बचा ली, उनके पास तो बंदूक भी थी, चाकू भी था। मैं तो डरी गई थी।
4: देखो ना, सबकी जान
5: बहादुर है मेरी बच्ची।
3: अगले दिन कशिका की बहादुरी के चर्चे सबकी जुबान पर थे। मोहल्ले, रिश्तेदारों और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो रही थी। और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को 1,000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र मिला।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहादुर कशिका, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार।
8: उमंग उमंग उमंग उमंग।
9: आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
10: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
11: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
10: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
11: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
10: बुकिंग है तो संपर्क करें
12: 0542227658
11: 0542227658।
9: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं कुमार अम्बरीश चंचल। इनके सर में पहले सुनिए तुलसीदास की ये रचना।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं कुमार अम्बरीश चंचल। कार्यक्रम के अंत में इनके स्वर में सुनिए तुलसीदास की एक और रचना।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार थे कुमार अम्बरीश चंचल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था। अब आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में सुनिए विचित्र वीणा वादन, कलाकार संजय वर्मा, राग है मदमात सारंग। आपके साथ पखावज प्रसंगति की है शुभम गुजराती ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे संजय कुमार वर्मा का विचित्र वीणा वादन। राग था मदमात सारंग। आपके साथ पखावज पर संगति की थी शुभम गुजराती ने। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था। दिन का 1 बजने को है, अब आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टर यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष फॉन डर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ भी बैठक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात 53 अरब डॉलर मूल्य का था। भारत विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में शामिल है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। यह सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में हुई। परियोजना

0: की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सरकार परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। पुदुचेरी मंत्रिमंडल में आज 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के विधायक पी राजवेल्लू और वीपी शिवकोलुंधु तथा भाजपा विधायक जीएनएस राजशेखरन को उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताह तक खुल जाएगा। इनमें ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। मैच ब्रिटेन के लीड्स में शाम 7 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 241.56 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। लीजिए सुनिए कुछ खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना। पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से प्राप्त सूचना के अनुसार अमृता देवी पत्नी दिनेश निवासनी ग्राम हिंदवारी पोस्ट भरछा थाना अलीनगर जनपद चंदौली कहीं लापता हो गई हैं। अमृता देवी के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 34 वर्ष, लंबाई लगभग 5 फीट, रंग सांवला, चेहरा गोल है, इकहरा बदन है। ये जब लापता हुई थी उसमें लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी। अमृता देवी के बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर अपने निकट के थाने या पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली को सूचित करें। यहीं से एक और भी सूचना प्राप्त हुई है। नेहा मौर्या, इनके पिता का नाम है रविंद्र मौर्या, ये ग्राम हृदयपुर थाना बलुआ जनपद चंदौली की रहने वाली हैं। नेहा मौर्या कहीं लापता हो गई हैं। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 19 वर्ष, लंबाई लगभग 5 फीट, रंग गोरा, इकहरा बदन, चेहरा गोल है। ये जब लापता हुई थी उसमें मैरून रंग का सलवार और सूट पहने हुए थी। नेहा मौर्या के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो अपने समीप के थाने या पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली को सूचित करें। यहीं से एक और भी सूचना प्राप्त हुई है। बबली यादव, पुत्री विनोद यादव, निवासनी ग्राम डैना पोस्ट मनियारपुर थाना सकलडीहा जनपद चंदौली कहीं लापता हैं। बबली यादव की उम्र है 20 वर्ष, लंबाई 5 फीट 2 इंच, रंग गोरा, इकहरा बदन, चेहरा गोल है। ये जब लापता हुई थी उस समय गुलाबी रंग का सलवार और सूट पहने हुए थी। बबली यादव के बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर अपने निकट के थाने या पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली को सूचित करें। आप सुन रहे थे खोए व्यक्ति के संबंध में सूचना। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में सुनिए शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत हेडिंग्ले लीड्स में खेले जाने वाले भारत बनाम नीदरलैंड मैच का प्रसारण होगा शाम 6:30 पर। इसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे आज की बात। मार्गदर्शन में दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी के लिए करियर की संभावनाएं विषय पर प्रोफेसर सतीश चंद्र दुबे से बातचीत। इसी कार्यक्रम में यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना भी आप सुन सकते हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम में दिन 1:45 पर कलाकार होंगे नंदलाल रवि और उनके साथी। फिल्म संगीत आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर कंपेयर्ड कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में। अलावा इसके शाम 5 बजे और शाम 6:10 पर। श्रोता, हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें, आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट

क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत हेडिंग्ले लीड्स में खेले जाने वाले भारत बनाम नीदरलैंड मैच का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे शाम 6:30 पर, जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कार्यक्रम विवरण में आप सुन रहे थे शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स। वेव्स OTT पर यह आकाशवाणी वाराणसी है। अब से कुछ ही पल बाद यानी ठीक 1:10 पर आप सुनेंगे इलाकाई खबरें, जिसे लखनऊ केंद्र से संप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड के जरिए मुंतखब करदा 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को तकर्रे लेटर तकसीम करने के प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुल्क भर में अपनी पहचान बनाई है। पुलिस ने गुज़िश्ता 9 सालों में गुड गवर्नेंस के हदफ को हासिल करने के लिए जिस तरह काम किया है उसने मॉडल पुलिसिंग की मिसाल कायम की। जनाब योगी ने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में रियासत में 2.25 लाख पुलिस एहलकारों को मुकम्मल शफाफियत के साथ और बगैर किसी इम्तियाज के भर्ती किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती हुकूमत ने पुलिस एहलकारों की सहूलत पर तवज्जो मरकूज की है और तरबियती सलाहियत में इजाफा किया है। इस मौके पर वजीर आला ने कहा,
1: यूपी पुलिस के स्मार्ट पुलिसिंग की जो परिकल्पना है उसके डिजिटल वॉरियर के रूप में आपकी बहुत बड़ी भूमिका होने और उस भूमिका का हिस्सा बनने के लिए आप सबको अपने आप, हमने प्रदेश के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी लाने का कार्य किया भर्ती आयोगों में बोर्डों में उसके परिणाम आए हैं। हमने 9 लाख से अधिक तो केवल सरकारी नौकरी दी है। प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो वातावरण बना है लाखों नौजवानों को उसके माध्यम से निवेश से और उद्योगों की संख्या, आप सोचो कि यूपी के अंदर कुल 14,000 बड़े कारखाने थे, कुल 14,000, इतनी बड़ी आबादी का राज्य, एमएसएमई लगभग बंद हो गया था। आज हमारे पास बड़े कारखानों की संख्या इन 9 वर्ष में 32,000 से अधिक हुई है। लाखों नौजवानों को यहाँ नौकरी मिली है और 96 लाख एमएसएमई यूनिट में फिर से पुनर्जीवित होकर के रोजगार के नए अवसरों को सृजित किया है।
0: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासत के अमन अमान की सूरत हाल, आने वाले त्यौहारों, रियासत के 59 अजला में 21 जून को होने वाले नीट इम्तिहान के उम्मीदवारों के लिए खसूसी इंतजाम करने की हिदायत दी। जनाब योगी आदित्यनाथ ने रियासती ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की बसों में नीट उम्मीदवारों के किरायों में 50% रियायत का ऐलान किया। वजीर आला ने इम्तिहान से मुतल्लिक अफवाहों, गुमराह किन मालूम या झूठे दावों को फैलाने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी का हुक्म दिया। वजीर आला ने बैनुल अक्वामी योगा डे की तैयारियों का भी जायजा लिया। मुहर्रम के हवाले से वजीर आला ने कहा कि जुलूसों में असलहे की नुमाइश और ऊंची आवाज में डीजे म्यूजिक की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने अमन और हमाहंगी में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अज़्म भी किया। एनटीए के जरिए 21 जून को मुनक़िद होने वाले आइंदा नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान में शफाफियत को बढ़ाने और पेपर लीक होने के इम्कान को खत्म करने के लिए हुकूमत ने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन पैगाम रसाई को 22 जून तक रोक दिया है। एनटीए ने कहा है कि यह पाबंदी नीट के दोबारा इम्तिहान के दिन और उसके फौरन बाद नाफिज होगी। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को यह भी हिदायत दी गई है कि वह 30 तारीख तक पहले पोस्ट किए गए पैगाम में तरमीम करने के फीचर को बंद कर दे। रियासत में बढ़ते हुए दर्ज हरारत और गर्मी की लहर के हालात के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने बुनियादी तालीम काउंसिल से मुंसलिक स्कूलों और तस्लीम शुदा स्कूलों में गर्मियों की तातीलात 24 जून तक बढ़ा दी है। बुनियादी तालीम और सानवी तालीम महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पार्थ सारथी सेन शर्मा ने

0: इस सिलसिले में हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे के मुताबिक अब गर्मियों की तातीलात हर साल 20 मई से 24 जून तक होगी और 25 जून को बाकायदा तालीमी सरगर्मियां दोबारा शुरू होंगी। ताहम असातज़ा, शिक्षा मित्र, इंस्ट्रक्टर्स और गैर तदरीसी अमला 22, 23 और 24 जून को स्कूलों में मौजूद रहेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में हिंदुस्तान ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर अमल करते हुए गुज़िश्ता 12 सालों में काबिल-ए-ज़िक्र तरक्की की है। इस मौके पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ इस मौजू पर एक खसूसी सीरीज़ पेश कर रहा है, तरक्की, एतमाद और अवामी बहबूद के 12 साल। आज इस एपिसोड में हम मुल्की विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए हुकूमती कोशिशों पर बात कर रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया।
0: आज मुहर्रम महीने की यकुम तारीख है। ये महीना गम के लिए जाना जाता है। इसी महीने की 10 तारीख को इमाम हुसैन और उनके 71 साथियों को कर्बला में शहीद कर दिया गया था। आज यकुम मुहर्रम के मौके पर लखनऊ में शाही जरी का जुलूस 7 बजे निकाला जाएगा। और हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम आज अफगानिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरेगी, जिसका मकसद वनडे सीरीज में नाकाबिले तस्खीर बरतरी हासिल करना है। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में कप्तान शुभमन गिल की क्यादत में हिंदुस्तान का मुकाबला हशमतुल्ला शाहिदी की अफगानिस्तान टीम से होगा। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
2: हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। उसके पहले ये संदेश।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
6: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
5: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
6: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
5: बुकिंग है तो संपर्क करें
7: 0542227658
8: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
9: सखियों के साथ,
10: सखियों के बाद,
9: सखियों के जज्बात,
10: गृह लक्ष्मी।
11: कार्यक्रम सुनने वाली सभी श्रोता सखियों को आपकी रेडियो सखी अंजना का नमस्कार। और आज हमारे साथ है तंजील। तंजील, तुमको भी नमस्कार।
12: नमस्कार अंजना, हमारी सखियों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
11: कैसी हो तंजील?
12: मैं तो अच्छी हूँ।
11: अच्छा, और तंजील, गर्मी तो बहुत ज्यादा हो रही है ना?
12: गर्मी तो बहुत ज्यादा पड़ रही है। मेरा तो घर से निकलने का मन ही नहीं करता। बाहर इतनी तेज धूप है, लू चल रही है।
11: हाँ, तो जब तुम बाहर निकल रही हो तो उसे ढक के निकलती हो?
12: नहीं।
11: तो छतरी ले लिया करो।
12: नहीं, बस पास में तो जाना होता है, सोचती हूँ ऐसे ही चली जाऊँ।
11: तो सखियों, आप तंजील की तरह गलती तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इस चिलचिलाती धूप में जब भी बाहर निकलिए तो सूती कपड़े से सिर ढककर ही निकलिए या छतरी लेकर, और जरूरत हो तभी घर से निकलिए। सखियों, अपने साथ एक पानी का बॉटल भी रखिए, क्योंकि इस महीने में गर्मी और लू अपनी चरम सीमा पर है ना, और कुछ हिस्सों में मानसून की भी शुरुआत हो गई है। ऐसे में बारिश फिर धूप, तो इस कारण पसीना भी बहुत निकल रहा है और चिपचिपाहट भी बहुत हो गई है ना।
12: और हाँ, बारिश और धूप के कारण जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है उन्हें बुखार, सर्दी, जुकाम की समस्या हो जाती है, तो इसका भी आपको ख्याल रखना है, जिससे कि जब भी धूप से बाहर से आए तो फ्रिज

0: का तुरंत ठंडा पानी ना पिए, कूलर या एसी के सामने तुरंत ना बैठें।
1: बिल्कुल सकियों, ये आपको बहुत ज़्यादा ही नुकसान कर सकता है ना। तो ऐसे मौसम में खुद को स्वस्थ और तरोताज़ा रखने के लिए खुद को हाइड्रेट भी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि पसीना तो निकल ही रहा है ना तंजील। तो दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीजिए। सादा पानी पीने के बजाय आप नींबू पानी, आम पन्ना, छाछ, नारियल पानी और सत्तू के शरबत भी पी सकती हैं। ये आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बनाए रखता है, जिससे आप लू से भी बच सकती हैं।
0: लेकिन अंजना, कुछ लोग अपने आप को तरोताजा रखने के लिए कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, तो जितना हो सके कोल्ड ड्रिंक से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है।
1: बिल्कुल तंजील, इस समय कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफी का सेवन बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए ना, ये स्वास्थ्य पे असर तो
0: इसके
1: बहुत
0: बजाय
1: ज्यादा
0: आप
1: पड़ता है।
0: मौसमी फलों का जूस पी सकती हैं।
1: हाँ, और सखियों, इसके साथ ही अपने खान पान का भी विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस जो ये मौसम है, इसमें आप मौसमी फलों, हरी साग सब्जियों का ही सेवन करें। और सखियों, इस मौसम में डाइजेशन जो थोड़ा होता है ना, वो स्लो हो जाता है, इसलिए तला भुना, तेज मसालेदार और हैवी खाने से बचिए। इसकी जगह जितना हो सके हल्का और सुपाच्य भोजन ही करिए।
0: बिल्कुल सही कही अंजना, इस मौसम में खान पान का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी हम खाते हैं उसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है ना?
1: बिल्कुल, बाहर का खाना तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। अगर घर में जो भी है हल्का फुल्का, वही बना के खाए ना। और दोपहर के खाने में दही का सेवन जरूर करिए, ये आपके गट हेल्थ को सही रखता है और शरीर को भी ठंडा रखेगा। और तंजील, इस मौसम में अपने स्किन और आंखों का भी ख्याल रखने की जरूरत है ना। तो घर से निकलने के 20 मिनट पहले आप सनस्क्रीन लगाकर निकलिए, जिससे आपकी त्वचा टैनिंग ना हो। और यूवी प्रोटेक्शन वाले सनग्लासेस भी पहन के निकले, ताकि आपकी आंखें धूप से बची रहे।
0: और स्किन के साथ साथ हमें अपने बालों का भी ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे मौसम में बाल चिपचिपे हो जाते हैं, डैंड्रफ और बालों का टूटना आम बात है। तो हमें अपने स्कैल्प की साफ सफाई का ध्यान रखने की जरूरत है। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार माइल्ड शैम्पू से बालों को धोएं।
1: बिल्कुल, और हो सके तो सखियों, हल्के फैब्रिक के ढीले ढाले कॉटन के कपड़े ही पहनिए। इसके साथ ही सुबह की सैर भी बहुत ज़रूरी है, और हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज भी ज़रूरी है ना तंजील। और हाँ, 7-8 घंटे की नींद भी ज़रूर लीजिए, ताकि आप स्वस्थ रह सकें। सखियों, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, तो इसलिए इसकी देखभाल में बिल्कुल भी कोताही ना बरतें। और स्वस्थ रहने के लिए मन का खुश होना भी ज़रूरी है, तो मन को खुश करने के लिए चलिए ना सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: तंजील, गर्मी तो हो ही रही है, लू भी चल रहा है ना, तो ऐसे में स्वास्थ्य का ध्यान रखना तो बहुत ज़रूरी है। और हमारा स्वास्थ्य तभी सही रह सकता है जब हमारा खान पान सही होगा, है ना।
1: तो इसी विषय पर और विस्तार से जानने के लिए आइए सुनते हैं ये बातचीत। ग्रीष्म ऋतु में आहार विहार, डॉक्टर जयप्रकाश सिंह से बात की है नेहा गुप्ता ने।
2: नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं, गर्मी के दिनों में हम सभी को गर्मी बहुत लगती है और थकान भी महसूस होने लगती है। तो दिमाग में आता है कि ऐसा क्या खाएं कि अपने शरीर को शीतल रख सकें और मन को भी शांत रख सकें, और लू से बचाव भी कैसे मुमकिन हो सकता है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। खास बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं BHU के आयुर्वेद संकाय के काय चिकित्सा विभाग के डॉक्टर जय प्रकाश सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: थैंक यू मैम।
2: गर्मी के दिनों में डॉक्टर जयप्रकाश, सुबह की जो शुरुआत है, जब इंसान उठता ही है, तो कैसी उसकी सुबह होनी चाहिए?
3: सभी लोग के माइंड सेट बनाओ कि पानी सुबह पीना चाहिए, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। सुबह उठने के बाद हल्का गुनगुना पानी गिलास से अधिक नहीं पीना चाहिए। बहुत लोग एक एक जग तक, मतलब एक एक दो दो लीटर पानी पी जाते हैं, वो पीना बहुत ही गलत है। वो हमारे इंटेस्टाइन को वीक करता है, हमारी जो अग्नि है उसको वीक करता है, इसलिए आधा गिलास से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए।
2: जी, पानी पीने के बाद तो लोग अक्सर चाय लेकर के पीना शुरू करते हैं, उसके साथ 4-5 बिस्किट्स होते हैं, भुजिया होती है, तो क्या ये सब कुल्ला करने के बाद और नहाने के बाद ठीक रहेगा?
3: गर्मी के दिनों में चाय से जितना बचा जाए उतनी अच्छी बात है। चाय बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, और जो बिस्किट चाय के साथ तो बिल्कुल लेना ही नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि सुबह उठते ही जब हम ब्रश कर लिया, उसके बाद गुड़ और पानी लें, वो
2: जी
3: सबसे बेस्ट है। ग्लूकोज का रिच सोर्स है और हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके लिए अच्छी बात है। या लेना है तो ग्रीन टी ले।

0: सकते हैं।
1: जी
0: और उसके बाद छाछ का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया सकता है। मट्ठा जो हमारे यहाँ इधर पूर्वांचल में मट्ठा बोलते हैं वो सबसे बेस्ट है। मट्ठा फुल इलेक्ट्रोलाइट्स है, उसमें सब कुछ सोडियम पोटेशियम लैक्टोबैसिलस सब कुछ है जो आपको लूज से बचा सकता है कि अग्नि डाइजेशन को भी अच्छा रखेगा। और यदि छाछ नहीं अवेलेबल है तो फ्रूट जूस लेना है। फ्रूट जूस में भी वो भी साइट्रस फ्रूट जो खट्टे जूस हैं जैसे संतरा
1: अंगूर
0: हुआ,
1: हुआ
0: हाँ अंगूर हुआ,
1: जी,
0: नींबू ले सकते हैं, ये
1: तरबूज
0: जरूरी है।
1: खरबूज वगैरह भी
0: हाँ
1: कुछ कुछ
0: उसका
1: खा
0: तरबूज का
1: सकते
0: जूस
1: हैं।
0: ले सकते हैं, वो
1: हाँ
0: बेस्ट है।
1: अच्छा, इन फलों के बाद कई बार लोग खाने के बाद सवेरे सवेरे खूब मसालेदार सब्जी बनाते हैं और पूड़ियाँ तलते हैं गर्मा गर्म, और सोचते हैं बस जी खाते हैं और फिर जाते हैं काम पर, चाहे उनको जो भी करना हो। तो क्या ये सुबह का जो नाश्ता है वो कैसा होना
0: नहीं,
1: चाहिए?
0: सुबह का नाश्ता गर्मी में बहुत ही लाइट लेना है, लेकिन लाइट के साथ लिक्विड जो भी तरल पदार्थ हैं जैसे मैंने बताया पूर्व में मट्ठा, फ्रूट जूस, फ्रूट्स खाएं, तरबूज हुआ, खरबूज हुआ, पपीता हुआ, अनानास हुआ, यहाँ तक कि नारियल का पानी तक पी सकते हैं सुबह, यदि तो इलेक्ट्रोलाइट का रिच सोर्स है।
1: जी, तो अगर रोटी सब्जी खा रहे हैं तो हल्की सब्जियां जैसे नेनुआ है, भिंडी है, हल्का हल्का कुछ खा
0: बिल्कुल
1: सकते
0: हाँ,
1: हैं।
0: नेनुआ, लौकी, टिंडा, भिंडी, यहाँ तक कि कोहरा, कद्दू, वो
1: जी
0: भी हम लोग गर्मी में नाश्ते के समय दोपहर और शाम को भी हम लोग ये ले सकते हैं।
1: जी जैसे दोपहर आती है तो लोग इस समय भी खूब ढेर सारा खाते हैं और उन्हें नींद आती है और सो जाते हैं, कहते हैं नहीं दोपहर जी बना हुआ है, गर्मी के दिनों में खा करके सोना है। तो क्या खा करके सो जाना और ढेर सारा खाना उचित रहता है पेट के नजरिए से?
0: गर्मी के समय हमें लाइट भोजन ही करना चाहिए और दोपहर में भी लाइट ही लेना चाहिए। यदि सोना है तो बिल्कुल लाइट लेना है। और गर्मी में हम आयुर्वेद शास्त्र में सोना ठीक बताएगा, दोपहर के समय सोना चाहिए। लेकिन आजकल के लाइफ में जो जॉब पर्सन है ये पॉसिबल नहीं है कि दोपहर में सो सकें, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि लाइट डाइट लें और लिक्विड डाइट बार बार लेते रहें अपने ऑफिस टाइम में, तो उससे कोई भी प्रॉब्लम जैसे धूप लगना या गर्मी लग जाना ये सब चीजें नहीं होंगी।
1: जी, तो दोपहर के भोजन में क्या दाल चावल रोटी सब्जी सलाद दही ये सब कुछ हो?
0: हाँ बिल्कुल, ये सब चीजें होनी चाहिए, दही भी होनी चाहिए।
1: तो क्या दाल भी बदल बदल के खाते रहें या?
0: सबसे हल्की दाल तो मूंग की होती है, उसके बाद मसूर का आता है, उसके
1: जी
0: बाद अरहर की आती है।
1: जी
0: तो अरहर की जब भी दाल खाना हो तो थोड़ा सा हींग और लहसुन डालकर खाएंगे तो उससे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। या चना की भी दाल लें तो उसमें लहसुन हींग से फ्राई कर कर लें तो ये जो इंडाइजेशन वाली प्रॉब्लम है वो नहीं होगी।
1: जी कई बार डॉक्टर साहब दोपहर का खाना अगर 1 बजे खा लेते हैं तो रात का खाना अमूमन लोग 8 बजे से पहले नहीं खा पाते, तो बीच का समय बड़ा लंबा होता है, तो बीच में कुछ चिप्स जैसा खाने लग जाते हैं, खूब ढेर सारा बिस्किट, तो उसकी जगह पर क्या कुछ खाया जा सकता है ताकि हम हमारा दिमाग एक्टिव रहे?
0: उसकी जगह फ्रूट्स ले सकते हैं, स्प्राउट्स, अंकुरित मूंग ले सकते हैं और अंकुरित चना ले सकते हैं। सत्तू को मट्ठे में मिलाकर या सत्तू को लेमन मतलब नींबू के रस में घोलकर पीना सबसे बेहतर चीज़ है। वो सत्तू भी आपको तरोताज़ा रखेगा, फुल एनर्जी देगा और उससे कोई इंडाइजेशन की भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
1: जी, और रात का खाना कहते हैं कि सूर्यास्त के समय कुछ आधे घंटे बाद तक अगर खा लेते हैं तो बेहतर होता है,
0: जी
1: तो रात के खाने में क्या-क्या चीजें हों थाली में?
0: जी मैडम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सूर्यास्त के 7-8 बजे तक खाना खा लें तो सबसे बेस्ट है इस अपने लाइफ के लिए।
1: जी
0: लेकिन ये आज के समय में पॉसिबल नहीं होता है। अमूमन मैक्सिमम लोग 10 के बाद, 9 के बाद या 11, कुछ लोग तो 11-12 बजे तक खाना खाते हैं। वो बिल्कुल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हमारे डाइजेशन के लिए हानिकारक है, उसको बिल्कुल हमें त्याग देना चाहिए। 8 और 9 के बीच में या 7, 7.5, 8 तक भी खा लें तो बहुत अच्छी बात है। उसमें जितना दोपहर में खाना ले रहे हैं उसका आधा लेना चाहिए,
1: जी
0: ये कॉन्सेप्ट है। और रात में हो सके तो 1 गिलास दूध लेना है ठंडा,
1: जी
0: उसमें शक्कर मिला लें, यदि डायबिटीज है तो अवॉइड करें, नहीं तो शक्कर मिलाकर ले सकते हैं।
1: कुछ लोग खसखस डाल करके दूध में पीना पसंद करते हैं रात में गर्मी के दिनों में, क्या ये उचित रहता है?
0: खसखस ठीक है, ले सकते हैं, वो शीतल करता है तो ले सकते हैं।
1: वो ले सकते हैं, कहीं ना कहीं
0: बिल्कुल,
1: हड्डियां भी उससे मजबूत होती हैं।
0: खसखस से ऐसा कुछ नहीं है
1: जी।
0: लेकिन मिल्क हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है।
1: ये तो बात रही खान पान की। कई बार गर्मी के मौसम में हमें इतनी अधिक गर्मी होती है, पसीना आने लगता है, कुछ लोगों को जरूरत से ज्यादा पसीना आता है, तो क्या

0: इस पसीने को खान पान के जरिए थोड़ा कम कर सकते हैं?
1: बिल्कुल, खान पान के जरिए हम पसीने को कम कर सकते हैं। जितना शीतल चीज़ें हैं, जैसे त्रिफला हुआ, त्रिफला ले सकते हैं, हरिद्की का चूर्ण ले सकते हैं, या बहुत लोग के पसीने में गर्मियों के दिन में बदबू आती है,
0: बिल्कुल,
1: तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हरिद्की पाउडर को गर्म पानी में डालकर और फिर पानी मिक्स कर नहाना चाहिए, तो उससे भी बदबू पसीने की होती है वो भी चली जाएगी।
0: जी
1: और त्रिफला का सेवन रेगुलर करें, और सबसे अच्छा तो एक शीतोपलादी चूर्ण, उसे रोगाधिकार, उसका खांसी के लिए लोग यूज करते हैं, लेकिन गर्मियों के दिनों में हाथ पाँव में जलन के लिए भी शीतोपलादी चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं।
0: जी कई बार नहाने में लोग कहते हैं कि नीम की पत्तियां भी अगर डाल के नहाते हैं तो बात बन सकती है, आप क्या कहेंगे?
1: हाँ, नीम की पत्तियों को उबाल कर काढ़ा बनाकर उसमें डालकर नहा सकते हैं,
0: जी
1: लेकिन जितना हरे का पाउडर का रोल है उससे कम है इस लेवल में, और स्किन डिसऑर्डर के लिए हम नीम की पत्ती को ले सकते हैं।
0: जी पुदीना और खीरे का प्रयोग गर्मी के दिनों में कितना लाभ पहुंचाता है शरीर को?
1: पुदीना बहुत ही लाभदायक है, बहुत अच्छा कार्बोनेटिव गैस के लिए अच्छा है, तो पुदीना का सेवन करना चाहिए, खीरे का भी करना चाहिए, जितने भी मतलब खट्टे फल हैं उनका प्रयोग करना चाहिए, तो पुदीना बेस्ट है गर्मी के लिए, लेना चाहिए उसको।
0: जी कई बार डॉक्टर साहब गर्मी इतनी अत्यधिक लगती है लोगों को कि घमौरी हो जाती है, और घमौरी हो जाती तो वो चुन चुन जैसा करने लगता है, आभास होता है, और हम खुजली करना शुरू करते हैं, तो उसको कैसे कम किया जा सकता है, उसको कैसे उससे कैसे निजात पाई जा सकती है?
1: इसमें सबसे ज़्यादा रोल है हमारे यहाँ एक सूट टंकड़ आता है,
0: जी
1: पाउडर जैसे टेल्क हम लोग यूज करते हैं पाउडर, उसी टाइप से होता है, तो सूट टंकड़ को नारियल के तेल पर मिक्स कर लगा दीजिए, जहाँ घमौरिया हुआ वो 2 आवर्स मतलब आराम मिल जाएगा उसको।
0: जी कहीं ना कहीं आप बीएचयू में विशेषज्ञों से संपर्क कर सकते हैं, तो
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: उस तरह की दवा मिल जाएगी।
1: बिल्कुल
0: लोगों को कई बार बाहर तो निकलना ही है, धूप लग जाती है, तो ऐसे में वो क्या करें, कितना रेस्ट लें, क्या खाने में थोड़ी तब्दीली कर दें, क्योंकि जो लू लगी है शरीर बड़ा बेचैन हो जाता है।
1: लू जब लग जाए तो उस समय प्याज का जूस पी सकते हैं, या प्याज का जूस पैरों में लगा सकते हैं। दूसरा एक अमृत धारा आता है, वो बेस्ट मेडिसिन है, उसके 5-6 ड्रॉप आधे गिलास पानी में डालकर पानी पी सकते हैं। आम का पन्ना पी सकते हैं, आजकल हमारे यहाँ पूरे रोड पर हर साइड आम का पन्ना मिलता है, आम का पन्ना ले सकते हैं। कुछ नहीं मिल रहा है तो जलजीरा पाउडर को ही पानी में घोल कर रेगुलर पी सकते हैं।
0: और कई बार लोगों को धूप लगने के साथ साथ लूज मोशन, यानी कि उन्हें मतलब पेट उनका गड़बड़ हो जाता है, उल्टियां भी होने लगती हैं, तो फिर क्या करना चाहिए उस स्थिति में?
1: उस स्थिति में अमृत धारा का सबसे अच्छा रिजल्ट है। अमृत धारा बनाना भी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, कपूर लेना है, पिपरमिंट लेना है, बस दोनों को एक डिब्बे में बंद कर रख लीजिए, वो अपने आप लिक्विड हो जाएगा। उस लिक्विड को 5-5 ड्रॉप 2 बार ले सकते हैं, अमृत कपूर और पिपरमिंट।
0: जी तो ये अब कहीं ना कहीं गर्मी है, लेकिन गर्मी को दिमाग पर चढ़ाना ठीक बात नहीं होगी। अगर हम खुद को अंदर से थोड़ा सा व्यवस्थित रखें तो शायद गर्मी इतनी नहीं लगेगी, आप क्या कहेंगे?
1: नहीं, बिल्कुल सही बात है कि दिमाग में उसे गर्मी चढ़ती नहीं है, वो इतना इरिटेशन कार्ड से वो लोग परेशान रहते हैं कि गर्मी दिमाग में चढ़ गई, गुस्सा आना, ये सब चीज़ें
0: जी
1: इरिटेशन गर्मी कार्ड से होती है, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि जितने भी शीतल पदार्थ हैं, लिक्विड डाइट है, वो अधिक से अधिक लें, तो वो काफ़ी बात बन जाएगी इससे।
0: कई बार लोग तुरंत ठंडा पाने के लिए, ठंडा होने के लिए भी फ्रिज का पानी या फिर बर्फ का सेवन करते हैं, तो फिर उन्हें सर्दी जुकाम ज्यादा हो जाता है, फिर आप क्या सुझाव देंगे?
1: नहीं, बर्फ़ का पानी तो बिल्कुल, फ्रिज का पानी भी अवॉइड करना चाहिए, बर्फ़ तो लेना ही नहीं चाहिए जब भी लू लगे। हाँ, घड़े का पानी आप ले सकते हैं, उसमें आप अमृत धारा हुआ या केवल पिपरमिंट डालकर भी ले सकते हैं, तो उससे भी काफ़ी राहत रहेगी।
0: जी कई बार डॉक्टर साहब लोग ये भी शिकायत करते हैं कि हमारे होंठ फटने लगते हैं गर्मी में भी, जाड़े में तो फटते ही फटते, गर्मी में भी, जिससे कि थोड़ी बेचैनी सी महसूस होने लगती है, तो ऐसा क्या किया जाए कि होंठ ना फटे?
1: सबसे पहले डाइजेशन को ध्यान देना है, ओट फटने में सबसे बड़ा इनडाइजेशन का रोल है, यदि आपका डाइजेशन सही नहीं है तो ओट फटेंगे। डाइजेशन सबसे पहले सही करें कि खान पीन में अपने थोड़ा सुधार करें, जितना डाइट ले रहे हैं उसे कम लें, और साथ में ही नाभि में देसी घी लगाएं, वो भी बहुत अच्छा है ओट फटने के लिए, मतलब उसे सुधारने के लिए
0: तो आपको थोड़ी राहत
1: राहत मिल जाएगी।
0: मिले।

0: बिल्कुल
1: इन दिनों कुछ लोग, जैसे आप कह रहे थे कि योग प्राणायाम करने के लिए, तो गर्मी में तो ऐसे ही इतना पसीना होता है, और जब उस तरह की एक्सरसाइज करते हैं या योग करते हैं तो और ज्यादा होता है, उसके बाद बड़ा थकान सा महसूस होने लगता है। तो कितना योग करें, समय कितना लें करने में, ताकि हमारा शरीर मजबूत रहे लेकिन थके नहीं।
0: एक्चुअल में योग से थकान नहीं होता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे उससे नहीं होगा। उसके बाद मैंने बताया शीतली प्राणायाम, शीतली प्राणायाम शरीर के गर्मी के लिए ही है, यदि शरीर में गर्मी है तो शीतली प्राणायाम किया जाए, उसी से नाम इसका शीतली है। तो शीतली करने से जितनी भी गर्मी होगी वो सब बाहर आ जाएगा। थकावट के लिए योग के कई नियम हैं, कैसे करना है वो थकावट अपने दूर करने के लिए भी वो नियम हैं, तो उसको हम फॉलो कर सकते हैं।
1: जी, यानी अगर आपको ऐसा हो रहा है तो विशेषज्ञ से भी परामर्श ले
0: हाँ, योग
1: सकते हैं।
0: विशेषज्ञ से मिल सकते हैं कि थकावट हो रही है, या थकावट बहुत ज्यादा है तो एक बार डायबिटीज का भी जांच करा लेनी चाहिए,
1: जी, तो वो भी
0: कारण
1: एक
0: है।
1: है थकान का, तो बहुत ज्यादा भी अपने शरीर को मांझे नहीं, इतना आवश्यकता से
0: बिल्कुल
1: अधिक ना कर दें। तो गर्मी में और किन बातों का ध्यान रख सकते हैं, चलते चलते अगर कुछ टिप्स देना चाहें तो जरूर दें।
0: घर से बाहर निकलते समय मेरा ये सुझाव है कि मट्ठा छाछ जरूर एक गिलास पी के निकलें, या आम का पन्ना हो पना लेंगे, या सत्तू को घोल कर पी के निकलें। कभी भी घर से बाहर निकलते समय खाली पेट न निकलें, कुछ कुछ पेट के अंदर होना चाहिए। और रास्ते में पानी का बॉटल जरूर लें, पानी बार बार घुट घुट पीते हुए जाएं, ये सबसे ये मेरी सलाह है, ये इतना करना चाहिए।
1: डॉक्टर जयप्रकाश सिंह जी, आप स्टूडियो में आए और हमारे सुनने वालों को इतनी उपयोगी जानकारी आपने दी, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।
0: थैंक यू मैम।
2: सखियों, अभी आप सुन रही थी बातचीत, विषय था ग्रीष्म ऋतु में आहार विहार। डॉक्टर जयप्रकाश सिंह से बात कर रही थी नेहा गुप्ता। तंजील, तुमको आम पसंद है?
3: बहुत पसंद है।
2: अरे वाह, तो ये सीजन भी तो आम का है। अगर तुमको साल भर आम खाने का मौका मिले तो?
3: तब तो बहुत ही अच्छा रहेगा,
2: अरे
3: लेकिन
2: वाह,
3: आम का सीजन तो सिर्फ गर्मियों में होता है, हम साल भर कैसे खा सकते हैं?
2: अरे आम का मुरब्बा बना लो, साल भर खाओ।
3: तो इसको बनाने की विधि भी बता दीजिए मुझे भी और हमारी सखियों को भी।
2: हाँ, बिल्कुल। तो इसको बनाने के लिए सखियों, आपको चाहिए कच्चे आम 1 किलो। तुम भी ध्यान से सुन लो तंजील, ठीक है? बना के खाना। हाँ, और चीनी 1 किलो। ग्राम आप चाहे तो गुड़ भी ले सकती हैं, अगर आप चीनी नहीं खाती तो, ठीक है ना? और इलायची पाउडर ले लीजिए, केसर के धागे 10-12, दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा, पानी आधा लीटर। तो सखियों, सबसे पहले आप आम को छील लीजिए, उसके बीज निकाल करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, उसे अच्छी तरह से धो लीजिए, फिर आधे लीटर पानी में उसको 50% तक गलने तक, यानी कि बहुत ज़्यादा गले ना, उसको आप उबाल लीजिए, फिर उसमें चीनी मिला करके 1 घंटे के लिए उसी तरह छोड़ दीजिए। ध्यान रहे पानी छान कर डालना है, ठीक है? और अच्छी तरह चीनी घुलने के बाद उसे आप गैस पर मध्यम आंच पर रख दीजिए, उसमें दालचीनी का टुकड़ा डालिए, केसर के धागे मिलाकर चीनी गाढ़ी होने तक पकाइए। जब आम थोड़ा पारदर्शी दिखने लगे और चीनी की चाशनी गाढ़ी हो जाए तो उसमें इलायची पाउडर मिलाइए। उसे ठंडा होने के बाद किसी शीशे के जार में साल भर तक रख सकती हैं। और पता है तंजील, इसे पूरी पराठे के साथ भी खा सकती हो।
3: अरे वाह, ये आम का मुरब्बा तो मैं जरूर बनाऊंगी
2: हाँ, बिल्कुल, बना कर रखना।
3: और तुम्हें भी खिलाऊंगी।
2: बिल्कुल। देखो तंजील, चाहे कोई भी फल हो, सब्जियां हो, हवा, पानी या धरती, जो भी हो, ये सब हमें प्रकृति ने ही तो दिया है ना, तो इसे संजो कर रखना और इसका ध्यान भी रखना हमारी ही जिम्मेदारी है ना? यानी कि प्रकृति से प्रेम करना जरूरी है, क्योंकि इसने हमें बहुत कुछ दिया है। आजकल देखो ना तंजील, हर जगह पेड़ों को काट दिए जा रहे हैं, नदी तालाबों को गंदा किया जा रहा है, तो ये सब हमारी जिम्मेदारी है, इनको स्वच्छ रखना, इनको बचा कर रखना, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी इसका उपभोग कर सके।
3: आजकल जिस तरह हम सब इस बढ़ती गर्मी और तेज तापमान से परेशान हैं, उसी तरह पेड़ पौधे भी इस तपिश को झेल रहे हैं। फर्क इतना है कि हम अपनी परेशानी बता सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे तो नहीं बता सकते ना।
2: बिल्कुल तंजील, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि देखो, प्रकृति हमसे कुछ भी नहीं मांगती, बल्कि निस्वार्थ भाव से बस देना ही तो जानती है ना, यही तो प्रकृति का स्वभाव है। पर सोचो, बदले में हम इसे क्या दे रहे हैं? सिर्फ प्रदूषण और अनदेखी, है ना?
3: प्रकृति से प्रेम का मतलब सिर्फ हरियाली देखकर खुश हो जाना ही नहीं है, बल्कि अपने उसे अपने जीवन में वो सम्मान, वो जगह देना जिसकी

0: हकदार है। आखिर हमारी सुबह की ताजी हवा से लेकर पीने के पानी तक बहुत कुछ हमें प्रकृति से ही तो मिलता है ना?
1: बिल्कुल तंजील, प्रकृति से प्रेम करने के लिए एक छोटी सी शुरुआत ही काफी है। आप अपने घर के बालकनी में कुछ पौधे लगा लीजिए, उसमें रोज पानी डालिए, देखिए ना वो बढ़ते पौधे आपको कितना सुकून देंगे।
0: और पानी की बर्बादी न कीजिए, प्लास्टिक है की चीज़ों का कम इस्तेमाल करें और अपनी आसपास साफ सफाई रखें।
1: बिल्कुल, और छत पर किसी भी बर्तन में चिड़ियों के लिए पानी दाना डालिए, चिड़ियों की चहचहाट आपके कानों को संगीत से कम नहीं लगेगी। और सखियों, सुबह सूरज की पहली किरण को देखिए कितना सुकून है। इन चीज़ों में अपने आसपास साफ सफाई रखिए, धरती को सम्मान दीजिए। यकीन मानिए, जब प्रकृति से प्रेम करना शुरू करेंगे ना, तो आपके सारे डिप्रेशन, तनाव, अकेलापन सब धीरे धीरे गायब हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति के पास हर मर्ज की दवा है। और सखियों, घड़ी की सुइयां भी इशारा कर रही है।
0: अब हो चला है वक्त सखियों से विदा लेने का,
1: मैं
0: तो
1: हूं अंजना और
0: मैं हूं तंजील।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: सखियों के साथ,
3: सखियों के बाद,
2: सखियों के जज्बात,
3: गृह लक्ष्मी।
4: अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। और आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं नंदलाल रवि और उनके साथी। इनके स्वर में पहले सुनिए ये कहरवा।

0: हटकती मान के महानाई ले बहो सद गुरुजी से नहीं आला गाई ले बहो सद गुरुजी से नहीं आला।
1: कार्यक्रम के अंत में सुनिए देशभक्ति गीत कलाकार नंदलाल रवि और उनके साथी।
0: तिरंगा हमारे, तिरंगा हमारे।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार थे नंदलाल रवि और उनके साथी। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, DTH, DRM 1233 किलोहर्ट्ज़, वेव्स OTT पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन के 2 बजने को है, कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: series in Lucknow. Early Afghanistan won the toss and elected to field first. Shubman Gill-led men in blue are currently leading the series 1-0 and will aim to clinch the series in today's clash. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.3% up in the afternoon session today. The Sensex rose 225 points to 77,033, while the Nifty advanced 66 points to 24,056 when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. G7 leaders adopt declarations on global stability, security cooperation and efforts to counter transnational organized crime. Prime Minister Narendra Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avignon, France, to reach Paris this evening as part of his visit to France. Defence Minister Rajnath Singh says India's sovereignty non-negotiable, cites surgical strikes, Balakot and Operation Sindoor as decisive actions against terrorism. India's defence production soars to record 1.78 lakh crore rupees in financial year 2025-26, surges 110% since 2020-21. Security forces intensify enforcement and counter-insurgency operations across Manipur, 3 militants arrested, 26 illegal bunkers destroyed. And in men's cricket, second ODI of three-match series between India and Afghanistan underway in Lucknow. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा, भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा, 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया, 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी। अब समाचार विस्तार से। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल हैं, जो अभी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वॉशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताजा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
2: जी लवली, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है, ये कई मायनों में अहम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम

0: या संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए, भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भी भू राजनीतिक तनाव हो, ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
1: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी सीईओ के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक ही दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत और फ्रांस के बीच जल से जल संबंधों को और मजबूत करेगी। मनीष सोपरे, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूजोन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब ये आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात 53 अरब डॉलर मूल्य का था।
3: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात 53 अरब

0: के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
1: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
0: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
2: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
0: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
3: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के हिजबुल्ला और सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाइयों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
4: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेल

0: तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कॉम्पियर्ड प्रोग्राम कुछ बातें कुछ गीत।
2: कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त शुचि उपाध्याय का प्यार भरा नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे पत्र की, खत की, या जिसे अंग्रेजी भाषा में कहते हैं लेटर। जी हाँ, वो पुराना दौर कितना अच्छा था कि जब हम डाकिये का इंतजार करते थे कि पत्र आएगा, वो हाल समाचार सारी चीजों को हमारे सामने बयां करेगा। और जो लोग उस पत्र का जवाब नहीं दे पाते थे, जिन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता था, वो भी उस लिखने वाले का इंतजार करते थे, कितना उसके साथ मिन्नतें करते थे अपनी बातों को लिखवाने के लिए। और बात हो अगर प्रेम पत्र की, तो न जाने कितने सारे दिल के अरमान उस छोटे से कागज में लिख दिए जाते थे।

पुराना दौर कितना अच्छा था ना, जब हम दूर बैठे किसी अपने प्रिय को अपने मन की सभी बातें एक पत्र में ही बता देते थे, और साथ में यह डर भी रहता था कि कहीं ये पत्र किसी और के हाथ ना लग जाए।

पे सोशल मीडिया का जमाना है। एक टिक से आपके मैसेज तुरंत ही पहुंच जाते हैं और चाहिए तो उन्हें महफूज करके रखिए, चाहे तो उन्हें डिलीट कर दीजिए। लेकिन खत एक ऐसा माध्यम था जिसे हम अपने किताब के बीच में रखते थे, फूल की पंखुड़ियों के साथ उसे महफूज करके उसमें अपने सारे दिल के अरमान को लिखते थे और उसे जब भी पढ़ते थे तो उतनी ही खुशी होती थी।

इसी गीत के साथ आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे कुछ नए बातों और नए गीतों के साथ। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त शुचि उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कॉम्पेयर्ड प्रोग्राम कुछ बातें कुछ गीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 21 जून 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है योग द्वारा रोगों का इलाज। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारी डॉक्टर होंगी डॉक्टर अंजना त्रिपाठी। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 18 जून 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो हमें फोन करना ना भूलें। हमारा फोन नंबर है 222-1052। बनारस का एसटीडी कोड है 0542। तो सुनते रहिए।

मीडियम वेव 241.5 4 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, DTH DRM 1233 किलो हर्ट्स, वेव्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन के 3 बजे हैं, संपन्न हो रही आज की हमारी पहली सभा। शाम 5 बजे दूसरी सभा आरंभ होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम एफ 241.5 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 1233 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, ओटीटी वेब्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर। शाम के 5 बजे आरंभ होती है आज की हमारी सायंकालीन सभा। सभा के आरंभ में सुने फिल्म संगीत।

0: कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म अभिनेत्री का गीत। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: ओ सजना सजना

अभी आप फिल्म अभिनेत्री का गीत सुने थे, आवाज थी लता मंगेशकर की। अब आए सुने फिल्म बॉबी का गीत, आवाजें हैं लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की। गीतकार हैं विट्ठल भाई पटेल और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: बोले कौआ काटे, काले कौवे से डर।
1: अभी आप सुने थे फिल्म बॉबी का गीत, आवाजें थी लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की। अब आइए कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनाएं फिल्म नसीब का गीत। आवाजें हैं कमलेश अवस्थी, अनवर और सुमन कल्याणपुर। शब्दकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 5:15 हुए हैं। आइए सुने युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो कार्यक्रम युववाणी, जहां हर आवाज़ के साथ जुड़ी होती है एक कहानी, एक एहसास। और सच कहें तो रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं, बल्कि एक ऐसा साथी है जो हर पल हमारे साथ चलता है, चाहे सुबह की शुरुआत हो या रात की खामोशी। मैं हूं जयशालिनी, आपकी दोस्त, आपकी साथी।
1: और मैं हूँ वैष्णवी। नमस्कार। रेडियो की यही खासियत है कि यहाँ बिना किसी दिखावे के, सिर्फ आवाज़ के जरिए हम दिल से दिल तक पहुँच जाते हैं।
0: दोस्तों, वक्त बदल गया, तकनीक बदलती गई, लेकिन रेडियो का जादू आज भी वैसा ही है। पहले जहाँ लोग ट्रांजिस्टर लेकर बैठते थे, आज वही रेडियो मोबाइल में सिमट गया है, लेकिन एहसास वही है।
1: और जब बात आती है मनोरंजन की, तो रेडियो ने हमेशा एक खास भूमिका निभाई है। गाने, किस्से, कहानियाँ और फिल्मों की बातें, यहाँ सब कुछ एक अलग अंदाज में सुनने को मिलता है।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
4: 0542227658।
1: 0542227658।
2: लो अभी फोन लगाता हूँ।
1: 0542227658।
5: दोस्तों आज हम मना रहे हैं विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, यानी वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि के बंजर होने यानी मरुस्थलीकरण और बार बार पड़ने वाले सूखे के दुष्प्रभावों के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाना और भूमि संरक्षण को बढ़ावा देना है।
6: संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने 1994 में UNCCD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन को अपनाया था। इसी ऐतिहासिक घटना की याद में 1995 से हर वर्ष 17 जून को यह दिवस मनाया जा रहा है।
5: दोस्तों मिट्टी की उर्वरता का घटना सीधे तौर पर खाद्य सुरक्षा और आजीविका से जुड़ा है, जो कि हमारे भोजन का प्रमुख आधार है।
6: इसी के साथ ही स्वस्थ मिट्टी प्राकृतिक रूप से कार्बन को सोखती है, जबकि बंजर जमीन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को बढ़ाती है।
5: और अगर हम इसके भारतीय संदर्भ की बात करें तो भारत के कई राज्य जैसे राजस्थान और गुजरात भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण की समस्या का सामना कर रहे हैं।
6: इस साल की इसकी थीम है घास के मैदानों और चारगाहों को पहचान।

0: जाने, उनका सम्मान करें और उन्हें पुनर्स्थापित करें। रीजर लैंड रिकॉग्नाइज रिस्पेक्ट एंड रिस्टोर।
1: अब बात करते हैं हम इसमें अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। हम अपनी दैनिक आदतों में सुधार करके मरुस्थलीकरण को रोकने में अपना योगदान दे सकते हैं, जैसे अधिक पेड़ लगाना, जल संरक्षण करना और जैविक खाद का उपयोग करना।
0: दोस्तों, उड़ीसा के महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, राजनीतिक कार्यकर्ता, कवि, निबंधकार और प्रखर पत्रकार उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास के बारे में आज उनकी पुण्यतिथि है।
1: साथियों, इन्हें उत्कलमणि और दरिद्र सखा यानी गरीबों का मित्र जैसे उपनामों से भी जाना जाता है। आपको बता दें दोस्तों कि उत्कल हमारे उड़ीसा का पुराना नाम था और गोपबंधु जी भी उड़ीसा के ही थे, इसलिए उन्हें उत्कलमणि यानी

0: और गोपबंधु जी भी उड़ीसा के ही थे, इसलिए उन्हें उत्कल मणि यानी उत्कल का मणि या फिर उड़ीसा का रत्न की उपाधि मिली थी।
1: गोपबंधु दास का जन्म 9 अक्टूबर 1877 को उड़ीसा के पुरी के पास स्थित सुआंडो गांव में हुआ, जो कि एक ब्राह्मण परिवार में वो जन्मे थे। उनके माता पिता दैतारी दास और स्वर्णमयी देवी थे।
0: और वकालत के अपने लाभदायक पेशे को छोड़कर गोपबंधु दास ने सामाजिक सुधार के कार्यों के साथ साथ स्वतंत्रता के उद्देश्य के लिए भी खुद को समर्पित कर दिया था।
1: वे उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें उड़ीसा में राष्ट्रीय आंदोलन का जनक बताया था।
0: इसके साथ ही उन्होंने पूरी सेवा समिति की शुरुआत की थी, जो एक स्वयंसेवी संस्था थी और हैजा पीड़ितों की मदद करती थी।
1: उन्होंने 1919 में उड़ीसा समाचार पत्र समाजा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य आम जनता की समस्याओं को उजागर करना और उड़ीसा में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करना था।
0: उन्होंने 1915 में सत्यवादी नामक एक मासिक पत्रिका की भी स्थापना की थी।
1: और 1920 में कांग्रेस के अधिवेशन में लाला लाजपत राय से मिलने के कुछ समय बाद दास को लोक सेवा मंडल, जनता के सेवकों का समाज जो होता है, में शामिल होने के लिए राजी कर लिया गया। और यह अखबार, हालांकि स्वतंत्र रूप से संचालित होता था, इसके प्रचार का एक साधन बन गया।
0: भले ही पंडित गोपबंधु दास जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विरासत आज भी कायम है। उन्हें एक दूरदर्शी नेता, करुणामय समाज सुधारक और समर्पित शिक्षक के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने आधुनिक उड़ीसा की नींव रखी। उनके जीवन भर के कार्यों से आने वाली पीढ़ियां एक न्यायपूर्ण और समतावादी समाज बनाने के लिए प्रेरित होती रहेंगी।
1: दोस्तों, जानकारियां तो बहुत हो गई, अब बारी है एक गीत सुनने की।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 21 जून 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है योग द्वारा रोगों का इलाज। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारी डॉक्टर होंगी डॉक्टर अंजना त्रिपाठी। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 18 जून 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो हमें फोन करना न भूलें। हमारा फोन नंबर है 222-1052। बनारस का STD कोड है 0542। तो सुनते रहिए आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
4: हमारे बहुत से युवा साथी के मन में संशय था कि भूगोल का अध्ययन और इसमें रोजगार की क्या संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण से डॉक्टर अशोक पांडे की इस विशेष खबर पर विशेष बातचीत।
5: श्रोताओ नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का युवाणी के विशेष अंक मार्गदर्शन में। मार्गदर्शन में आज हम बात करेंगे भूगोल विषय के अध्ययन और इसके बाद रोजगार की संभावनाओं के बारे में। और इस बारे में विशेष रूप से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं भूगोल विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार हमारे स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद सर।
5: तो सबसे पहले हमारे जो युवा साथी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनको ये बताएं कि भूगोल विषय का जो अध्ययन है वो जानकारी होने के अलावा किसी भी देश के बारे में, किसी भी जगह के बारे में जो जानकारी हमें होनी चाहिए उसके अलावा और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें आकर्षित करती हैं कि हम भूगोल का अध्ययन करें।
6: सबसे पहली बात कि इससे पहले के लोगों का कंसेप्ट आप देखे होंगे कि लड़के प्राइमरी स्कूल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो पहले का एक कंसेप्ट लोगों का बना हुआ तो भूगोल में केवल कौन सा देश कहाँ है, चित्र के बारे में, ये सब बारे में। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रही है बहुत सारी चीजें देखिए बदलती जा रही है। सबसे पहले आप देखिए कि लड़का पढ़ते हुए हाई स्कूल किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन में जाता है, कोई भी ऐसा कम्पिटेटिव एग्जाम देख लीजिए तो उसमें

0: कम से कम आपको कम से 20 से 30% आपके क्वेश्चन भूगोल के आते हैं। भूगोल में इनफैक्ट क्या है कि हम सारी चीजों का विस्तृत अध्ययन करते हैं, जैसे मान लिया स्थल मंडल का, जैविक मंडल का, वायुमंडल का, ये सारे चीजों का अध्ययन हम विस्तृत तरीके से करते हैं। उसके साथ साथ एक तो ये इसको अध्ययन करने से फायदा तो मुझे हुआ कि खाली अब ये नहीं रह गया खाली हमको वही नक्शा, खाली हम देखेंगे कौन सा पहाड़ी कहाँ है क्या है, अब उसका एक दूसरे के साथ परस्पर क्या किस तरह का संबंध है, किस तरह का चीजें हो रही हैं। अब उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो फिर क्या होता है, रास्ता फिर ब्रांचेज में मतलब डिफरेंट ब्रांचेज में कन्वर्ट होता जाता है। अब होता क्या है कि लड़के ग्रेजुएशन में आए, ग्रेजुएशन में आए उन्होंने लिया, आप सपोज करिए कि भौतिक भूगोल पढ़ रहे हैं, भौतिक भूगोल हम लोग का एक टॉपिक होता है, एक पेपर होता है। अब भौतिक भूगोल में आप उठा करके देखेंगे तो जियोलॉजी के लड़के भी पढ़ते हैं, जियो फिजिक्स के भी लड़के पढ़ते हैं, अब भूगोल के भी लड़के पढ़ते हैं। उसके बाद जब थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो रिमोट सेंसिंग, GIS, GPS, बहुत सारी चीजें, अभी कोई भी चीज अगर हम लोग लगन लेते हैं, अगर मोबाइल हम यूज कर रहे हैं, अगर कोई भी सेटेलाइट के थ्रू अगर हम चीजें सिग्नल रिसीव कर रहे हैं, बहुत सारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे इसमें ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट इसमें कहीं ना कहीं आपका जुड़ा हुआ है।
1: मुझे भी याद आ रहा है कि बचपन में जब मैं भी विद्यार्थी था तो भूगोल में जिस तरह आपने जिक्र किया कि मानचित्र में कौन सा नदी कहाँ है, कौन सा पहाड़ कहाँ है, बड़ा मुश्किल होती थी इसको याद कर पाना, याद रख पाना। बाद में हम आमतौर पर अपने जीवन में देखते हैं कि भाई अगर बनारस की हम बात करें तो बनारस में गोदौलिया जाना है तो किधर से जाना है, या रथ यात्रा जाना है तो किधर से जाना है, इस तरह की चीज़ें धीरे धीरे हमारी हैबिट में शामिल हो जाती हैं और हमें आसानी से रास्ते याद हो जाते हैं। लेकिन वो दौर जब था पढ़ाई वाला, उस दौर में ये याद होना बहुत मुश्किल होता था कि कौन सा नदी कहाँ है, कौन सा पहाड़ कहाँ है। ये पढ़ते वक्त तो याद रहता था लेकिन कुछ दिनों बाद या कहें एग्जामिनेशन में जब पार्टिसिपेट करना होता था तो सारे नदी पहाड़ आसपास में ही दिखने लेते थे। कोई ऐसा ट्रिक, कोई ऐसा तरीका है जिस तरीके से हम इसका अध्ययन करें, इसकी पढ़ाई करें और ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आसानी से फिट होती बैठती चली जाएं?
0: देखिए होता क्या है कि अगर हम कोई भी देखिए, हम लोग एक जो आता है टोपोशीट आती है, जैसे कि हम लोग किसी भी क्षेत्र का अध्ययन, जैसे हम लोग भारत का नक्शा देखते हैं, विश्व का नक्शा देखते हैं, तो नक्शे भी कितने तरह के होते हैं। एक तो होता है नक्शा, हम इनफैक्ट हम जैसे कि मतलब रेल रूट का नक्शा देख रहे हैं कि रोड रूट का नक्शा देख रहे हैं कि एयर रूट का नक्शा देख रहे हैं या मतलब किसी का नक्शा देख रहे, पहली बात उसको अगर हम उसको क्या होता है कि हम लोग जो नक्शा देखते हैं उसमें सारा चीज कंबाइंड रहता है, मिक्स रहता है। अब इसे हमको क्या होता है कि इसे मान ली कुछ भी काम करना है तो मिक्सड अगर चीजें हैं तो एक साथ हमको उसमें से उसको छांटना, अलग करना, तो उसका बेहतर तरीका यह होता है कि भूगोल के जो विद्यार्थी होते हैं तो क्या करते हैं कि उनको कौन सा नक्शा चाहिए, उनको पॉलिटिकल नक्शा चाहिए या उनको मतलब कि किन नदियों का चाहिए, तो आज के डेट में सारा चीजों का, तो एक डिपार्टमेंट हम लोग क्या मतलब ज्योग्राफी का ही एक पार्ट आप कह लीजिए, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो नाटमो कलकत्ता में है, नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, अगर उसको आप एटलस लेकर के अगर आप देखते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि भारत के नक्शे में ही भारत के नक्शे में भौतिक स्वरूप का अलग नक्शा, बाकी जो कि प्लेटो का अलग, मतलब अलग अलग चीजों का सेगमेंट का अलग अलग नक्शे आपको दिए हुए हैं। अब हमारा ये है कि हमको पता ही करना कि हमको इनफैक्ट किस तरह के नक्शे चाहिए, तो क्या हुआ केवल पर्टिकुलर अगर हमको मिल जाएगा, अगर कि खाली हमको नदियों के भाई कितने भारत में नदियां हैं और किधर किधर से बहती हैं, कहां कहां जाकर के उनका उद्गम स्थल क्या है, उनका मीटिंग पॉइंट क्या है, तो अगर ये अगर हम देखें केवल तो मेरे दिमाग में रहेगा कि कौन कहाँ पे वो नदियां हैं। और लड़के कंफ्यूज कैसे करते हैं कि पूरा का पूरा नक्शा एक साथ देखेंगे, जब एक साथ देखेंगे तो उसमें कंफ्यूजन पैदा होता है। तो जितने भी आप देखेंगे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लड़के हैं वो इस तरह की चीजों को यूज करते हैं।
1: कहा जाता है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की आपने बात की, सिविल सर्विसेज से लेकर के और अन्य बहुत सारे एग्जाम हमारे देश में बहुत सारी संस्थाएं ऑर्गेनाइज कराती हैं और लोग उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, किसी का उद्देश्य कुछ होता है, किसी का कुछ और होता है, लेकिन हर एक कॉम्पिटिशन का पार्ट है आज की डेट में ज्योग्राफी, जिसे हम भूगोल कहते हैं। तो जब एक हम सामान्य अध्ययन की बात करें, अगर सामान्य अध्ययन मुझे लगता है कि लगभग हर एक परीक्षा का अंग है आज की स्थिति में सामान्य अध्ययन, तो इसमें जब हम भूगोल के अध्ययन की बात करते हैं, एक तो हम ये जानना चाहेंगे कि भूगोल एक विषय के रूप में किस कक्षा से शुरू हो जाता है उसकी पढ़ाई जो है, और आगे इसमें जैसे आपने बताया कि जो आधुनिकतम पढ़ाई है वो मैपिंग है और सैटेलाइट का है, इमेजिंग है, आपने बताया GIS और GI, इस तरह की चीजें भी उसमें शामिल हैं, तो कहाँ से इसकी शुरुआत होती है और आगे क्या क्या ऐसे फील्ड्स हैं जहां हमें ये भूगोल के द्वारा हम पहुंच सकते हैं?
0: देखिए सबसे पहली बात कि लड़का इसे आप देखिएगा शुरुआत से देखिए बिगनिंग टू, इसलिए तो लड़का छोटा है अगर उसको कोई भी चीज अगर हम बोलते हैं कि जाओ बेटा वो ले आओ, ये ले आओ, पूछे किधर है, लेफ्ट है कि राइट है, कहाँ है, कोई भी प्लेस हम उसको बताते हैं। यहीं से शुरुआत, आप सोचिए कि कोई भी चीज़ अगर है, अगर हम करते हैं तो यहीं से

0: शुरुआत होती है, दैट इज द पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी। उसके बाद क्या होता है, जब हम आगे जाते हैं, इसे हम सपोज करें कि आज हम एडवांस, मतलब उसमें सारे टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो गई, सब कुछ हो गया। आज अगर मान लीजिए हम बनारस में, मान लीजिए कोई रोड हम जानते हैं या ये चीज, क्योंकि फ्रिक्वेंटली हम डेली जा रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आज के डेट में नेविगेटर हम ऑन करते हैं मोबाइल में, नेविगेटर ऑन करके हम गाड़ी में लगा दिया, जहां भी जैसे जा रहे हैं, हमको किसी भी आदमी से पूछने की जरूरत नहीं कि फला जी कहाँ है, ऑटोमेटिकली वो बता देता है। अब सपोज ये कि आप जहाज से जा रहे हैं, वहां पे तो कोई स्पीड, वहां तो कुछ लगा नहीं है डायरेक्शन की, ये सब जो सारा चीजें चलती हैं, अगर मैं किसी ने किसी चीज को नियम को फॉलो करते हुए चलती है, या शिपिंग का ले लीजिए, कहीं ना कहीं फॉलो करती है। तो हम लोग के यहाँ प्रैक्टिकल में एक्चुअली पढ़ाया जाता है प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन पढ़ाया जाता है जो सारी चीजें हैं वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का है। कोई भी अगर कुछ टैगिंग होती है या कुछ भी होता है, अगर हम यहाँ पे हैं तो इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, फिर कहाँ जाना है हमको उसका है, तो हमको एक डायरेक्शन मिल जाता है कि फलाई इतने एंगल पे है, और उसी तरह नेविगेटर है, अगर मान लीजिए मैं इसको आन के, तो सारा चीज़ आप देखेंगे एडवांस में। ये सारा चीज़ें जब हम ज्योग्राफी के आगे आगे पढ़ते हुए जाते हैं, ये सब सारा चीज़ें फिर हमको आता जाता है वन बाई वन। तो हम बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट हो गए, इंडिया में बहुत सारे एडवांस हो गया है, अब देहरादून में चले गए रिमोट सेंसिंग जीआईएस के पूरे सेंटर चल रहे हैं, नाटमो वगैरह में वहाँ पे बहुत सारे हैं, इसरो वगैरह हैं, सब जो ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हम लोग यहाँ के जो पढ़े लिखे लड़के जो इस तरह के सारे चीज़ों को, टूल्स को जानते हैं ऑपरेट करना, वो सब अच्छे से वहाँ पे सब लोग अपना।
1: सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों के लिए तो बहुत मनपसंद विषय रहा है, पसंदीदा विषय रहा है भूगोल। तो एक तो हो गया कि जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। दूसरा, अगर हम कंपटीशन से थोड़ा सा अलग हट करके बात करें, तो और ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर भूगोल के अध्ययन के बाद में रोजगार की संभावनाएं, उनके अवसर उपलब्ध हैं? जैसे शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें, तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद में वो विद्यार्थी जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर और आगे उसके लिए संभावनाएं हैं। या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, तो सिविल सर्विसेज एक बहुत बढ़िया अवसर है। इसके अलावा और ऐसे कौन कौन से संस्थान हैं और कहाँ कहाँ पर इस तरह के अवसर हैं जो ज्योग्राफी के अध्ययन के बाद में विद्यार्थियों के लिए होते हैं?
0: अभी देखिए लेटेस्ट अभी से कि हम लोग जनगणना होने जा रही है 2021 का, मतलब कि होने जा रहा है जनगणना। जनगणना में भी क्या है, सो ज्योग्राफी के सारे लोग, अभी वैकेंसी आई है ज्योग्राफी के लोग उस पर जाते हैं, कोई भी मैपिंग हो, आप सपोज करिए ये तो मान लिया अभी जनगणना, कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी आप देख लीजिए, तो वहां पर एक टाउन प्लानर होता है, कोई भी चीज अगर बनाएगा, अगर हम कुछ भी बनाते हैं, अगर हमको मकान बनवाना है, ठीक है स्ट्रक्चर इंजीनियर है या वो इंजीनियर है, लेकिन उसमें कार्टोग्राफी का आपको जो उसमें टूल्स की जरूरत पड़ती है, वो टूल्स आपको ज्योग्राफी का ही आदमी दे सकता है। क्योंकि इसे हम लोग बच्चों को कभी पढ़ाते हैं कि भैया चित्र है या मानचित्र है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, चित्र तो ऐसे ही बना दिया गया, मानचित्र का मतलब जिसमें कि स्केल को हम कहीं यूज करते हैं। तो एक तो हो गया, जैसे कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी या टाउन प्लानर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उसके अलावा जैसे कि अब एजेंसी से डेमोग्राफी का कोई भी इंस्टीट्यूट ले लीजिए, कोई भी आप इसरो जिसे ले लीजिए, रिमोट सेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन स्पेस का, वहां पर ले लीजिए, अभी नाटमो का मैंने नाम लिया, वहां ले लीजिए, पॉपुलेशन का देख लीजिए, कहीं पे भी अगर इस तरह का, वहां पर ले लीजिए, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जो हमारा, वहां पर आप देखिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जॉब के, इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपॉर्चुनिटी है, लेकिन थोड़ा सा उसमें स्किल थोड़ी जरूरत पड़ती है। तो होता क्या, नॉर्मली लड़के गए कंपटीशन में चले गए, फिर उसके बाद आगे जो जो हायर स्टडीज में जा रहे हैं लड़के, उन लोगों के लिए सब बहुत सारे ऑप्शन ओपन है उन लोग।
1: मतलब कोई विद्यार्थी अगर भूगोल विषय में उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, तो उसके लिए जैसे आपने बताया कि इसरो है, नाटमो है और यूनिवर्सिटीज हैं,
0: यूनिवर्सिटी तो
1: कॉम्पिटिटिव
0: मान लिया
1: एग्जाम
0: टीचिंग तो
1: है।
0: अपनी जगह है,
1: जी
0: लेकिन रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे हैं वहां पे भी उनको जरूरत पड़ती है। कोई भी ऐसा चीज है, ऐसा नहीं है कि जहां पे कि आपको ज्योग्राफी की जरूरत ना पड़े।
1: अच्छा, वक्त हो रहा है हमारे कार्यक्रम को समाप्त करने का, तो चलते चलते हमारे जो युवा साथी अभी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जो भूगोल के विद्यार्थी हैं उनको भी, और जो भूगोल के अलावा कोई दूसरा विषय पढ़ते हैं उसमें रुचि रखते हैं, उनके लिए भी एक स्टूडेंट होने के नाते हमें क्या चीज़ें हैं जो अपने जीवन में ध्यान रखनी चाहिए अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए?
0: सफल होने के लिए देखिए सबसे बड़ी मुख्य चीज होती है कि आजकल जैसे हम लोग भी पढ़ाते हैं बच्चों को, तो हम सिर्फ सिंगल से एक बात बोलना चाहते हैं बच्चों को कि पहली बात कि अगर हम कोई काम करते हैं, पहले अपना एम हमको निर्धारित करना चाहिए कि इनफैक्ट हमको करना क्या है। एम निर्धारित करने का जो समय होता है वो शुरुआत में मिस होता है कि भाई चलिए हाई स्कूल में आप है या 8th क्लास में है, तो अपना एक प्लान कर लीजिए कि भाई इनफैक्ट हमको जाना किस फील्ड में है। अगर आपको उसी फील्ड में मान लीजिए रिसर्च फील्ड में जाना है, तो भाई रिसर्च के हिसाब से करिए, कम्पिटेटिव एग्जाम में जाना है तो कम्पिटेटिव एग्जाम से चलिए। बहुत सारे ऐसे लड़के हम लोग को मिलते हैं जो कि उनको फिक्स ही नहीं है कि इनफैक्ट उनको करना क्या है। अब सपोज ये कि आपको जाना है मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जाना है, ज्योग्राफी में आप मान लीजिए आपको आगे काम करना है, तो उसी के अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर अगर आप करेंगे तो बेहतर तरीके से अब उसमें

0: और अच्छा से अच्छा कर सकते हैं।
1: डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी, आप समय निकाल करके हमारे कार्यक्रम में आए। हमारे युवा साथियों को आपने भूगोल विषय का अध्ययन और इसमें रोजगार की संभावनाओं के बारे में जो जानकारी दी है वो उनके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
2: आपका हम सभी से ये जानकारियाँ साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोताओं को भी उससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। आइए दोस्तों, अब मूड को थोड़ा लाइट करते हैं और

0: तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए चलते हैं अगले पड़ाव पर और देखते हैं कि जानकारी के पिटारे से अब क्या निकलता है।
1: दोस्तों, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हम लोग भाषा का

0: उपयोग करते हैं। अपने वाक्यों को हम और भी सुंदर बना सकते हैं नए नए शब्दों का उपयोग करके।
1: तो आज का हमारा हिंदी का शब्द है विधि सम्मत, जिसका अर्थ है कानून या नियमों के अनुसार उचित और वैध। इसे कानूनी, नियम सम्मत या शास्त्र सम्मत भी कहा जा सकता है। और वाक्य में इसे हम कुछ यूं कह सकते हैं, किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए विधि सम्मत कार्रवाई करना ही सबसे सही विकल्प है।
0: और इसी के साथ टुडेज इंग्लिश वर्ड इज कॉन्डेंट्ररी, QUANDARY, विच मीन्स अ स्टेट ऑफ अनसर्टिनिटी ओवर व्हाट टू डू इन डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि व्याकुलता। इट्स यूजेस इन सेंटेंसेस आर आई हैव टू एक्सेलेंट जॉब ऑफर एंड आई एम इन रियल कॉन्डेंट्ररी अबाउट विच वन इज टू एक्सेप्ट। दोस्तों, हर दिन का इतिहास में एक अलग महत्व होता है।
1: तो आइए जानते हैं कि 17 जून का दिन इतिहास के पन्नों में क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है।
0: दोस्तों, 17 जून भारतीय और विश्व इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। सबसे पहले बात करते हैं वर्ष 1885 की।
1: विश्व इतिहास में 1885 में आज के दिन स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका के न्यूयॉर्क बंदरगाह पहुंची थी, जो आज स्वतंत्रता और लोकतंत्र का प्रतीक मानी जाती है।
0: सचमुच 17 जून हमें प्रेम, वीरता, स्वतंत्रता और समर्पण जैसे महान मूल्यों की याद दिलाता है।
1: इतिहास केवल बीते समय की कहानी नहीं है दोस्तों, बल्कि वह वर्तमान को दिशा देने और भविष्य को संवारने की भी प्रेरणा देता है।
0: तो आइए आज के दिन हम रानी लक्ष्मीबाई और अन्य महान विभूतियों को नमन करें तथा उनके आदर्शों को अपना जीवन में अपनाने का संकल्प लें।
1: दोस्तों, अब बारी है आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के विजेताओं के नाम। तो कल हमने आपसे सवाल किया था कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में दिव्यांग कल्याण विभाग का नाम बदलकर दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग कर दिया है, जिसका सही जवाब है महाराष्ट्र।
0: और सही जवाब देने वाले हमारे साथियों के नाम हैं मुकेश कुमार प्रजापति, सिगरा वाराणसी, चंदा चंदौली से।
1: इसी के साथ ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से हैं दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु, गोलू कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाक से। और इसी के साथ बाबू दिव्यांश भी। और खैरगांव मध्य प्रदेश से हैं प्रवीण चौहान,
0: दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांग वर्मा, पीपर लोड खनगांव छत्तीसगढ़ से।
1: और इसी के साथ दोस्तों, अब तैयार हो जाइए आज के प्रश्न के लिए, जो कि है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है।
0: तो दोस्तों, पता है ना अपना सही जवाब हमें कहाँ भेजना है? जी हाँ, आप अपना जवाब हमें इंस्टाग्राम हैंडल youthairvaranasi पर भेज सकते हैं या हमारा ईमेल पता है youthairvns@gmail.com पर। तो जल्दी कीजिए।

0: दोस्तों, किसी भी देश को आगे बढ़ने में वहाँ की जनता और सरकार का बहुत बड़ा योगदान होता है और हमारी केंद्र सरकार को सत्ता में आए 12 साल पूरे हो चुके हैं। इन बीते वर्षों में सरकार ने देश के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई हैं।
1: कहते हैं कि किसी देश की तरक्की का रास्ता उसकी सड़कों से होकर गुजरता है। बेहतर सड़कें न केवल यात्रा को आसान बनाती हैं, बल्कि व्यापार, उद्योग और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देती हैं।
0: बिल्कुल सही। इसी सोच के साथ भारत सरकार ने वर्ष 2017 में भारतमाला परियोजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य देश भर में आधुनिक और उच्च गुणवत्ता वाले राजमार्गों का निर्माण करना है।
1: जय शालिनी, क्या तुम हमारे श्रोताओं को बता सकती हो कि भारतमाला परियोजना की विशेषताएं क्या है?
0: बिल्कुल वैष्णवी। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आर्थिक गलियारों, सीमा क्षेत्रों, तटीय क्षेत्रों और दूरदराज के इलाकों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ा जा रहा है। इसे माल परिवहन तेज होगा और यात्रा का समय भी घटेगा।
1: यानी अब किसान अपनी उपज जल्दी बाजार तक पहुंचा सकेंगे, उद्योगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
0: इतना ही नहीं, ये परियोजना देश के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित कर राष्ट्रीय एकता को भी मजबूत करती है।
1: भारतमाला परियोजना का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि यह लाखों लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का अवसर प्राप्त होगा।
0: सही कहा तुमने, सड़क निर्माण, परिवहन, होटल उद्योग और अन्य सहायक क्षेत्रों में भी रोजगार की नई संभावनाएं विकसित हुई हैं।
1: श्रोताओं, भारतमाला परियोजना केवल सड़कों का निर्माण की योजना नहीं है, बल्कि यह भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास की भी मजबूत नींव है।
0: यह योजना नए भारत के उस सपने को साकार कर रही है जहां हर क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से जुड़ा हो और हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो।
1: तो आइए हम सब मिलकर ऐसे विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान दें।
0: और अब समय हो गया है दोस्तों रोजगार सूचना का, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए नवीनतम नौकरी और भर्ती संबंधी जानकारियां।
1: तो आइए शुरुआत करते हैं पहली महत्वपूर्ण भर्ती से।
0: कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC ने SSC CGL 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है। लगभग 12,256 पदों पर भर्ती की जाएगी। स्नातक अभ्यर्थी के लिए इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और आवेदन की अंतिम तिथि 22 जून 2026 है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
1: शानदार अवसर। अब बात करते हैं बैंकिंग क्षेत्र की।
0: बैंकिंग क्षेत्र की ये रोजगार सूचना आई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से, जिसने 4,500 अप्रेंटिस पदों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12 जून 2026 से शुरू हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट centralbankofindia.co.in देख सकते हैं।
1: युवा साथियों, आवेदन करने से पहले पात्रता, आयु सीमा और अन्य नियमों का ध्यानपूर्वक पढ़ना न भूलें
0: और किसी भी भर्ती की जानकारी केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही सत्यापित करें। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं, सड़क पर तेज रफ्तार, अचानक मोड़ या अनदेखी एक छोटी सी गलती भी बड़ा हादसा बन सकती है। लेकिन अगर आप हर बार दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनते हैं तो चोट का खतरा काफी कम हो जाता है।
1: हेलमेट सिर को सीधी चोट से बचाता है, ये सुरक्षा में ढाल की तरह काम करता है और जीवन बचाने में मदद करता है।
0: तो नियम याद रखें, पहले हेलमेट, फिर बाइक या स्कूटर। हेलमेट का साइज सही हो, स्ट्रैप कसकर बंधा हो और हर सफर में लगाना जरूरी है। इसलिए दोस्तों,
1: हमारा यही संदेश है, हेलमेट पहने, जीवन बचाए। तो इसी संदेश के साथ दीजिए अपने इन दो साथियों को इजाजत। कार्यक्रम में आज हम है मैं वैष्णवी
0: और मैं जयशालिनी। तो दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।
2: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे भोजपुरी में समाचार, जिन्हें हम गोरखपुर केंद्र से।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ है हम वेद प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य के 59 जिलों में 21 जून के होखे वाले

0: यूजी पुनर्परीक्षा के उम्मीदवारों बदे विशेष इंतजाम कैले का निर्देश दिले हमें। काल लखनऊ में एगो समीक्षा बैठकी के दौरान मुख्यमंत्री कहने कि उम्मीदवारन के प्रवेश पत्र दिखौले पर राज्य सड़क परिवहन निगम के बसन के किराया में 50% का छूट दिल जायी। ए बीचे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA आवे वाला नीट परीक्षा के देखत विद्यार्थियों आ अभिभावक लोगिन के घोटाले बाजन से सतर्क रहने के अनुरोध कैले हो। NTA का महानिदेशक अभिषेक सिंह कहले हमें कि हमनी के सुनिश्चित करब कि परीक्षा बिना कोनो गड़बड़ी के पूरा होके।
1: NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी न हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की ओर से चयनित 930 कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A के लखनऊ में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल भेल हैं। ए मौका पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री कहने कि प्रदेश में पछिला 9 साल में 2.25 लाख पुलिस कर्मियों का भर्ती भेल हो। वहां के कहने कि भर्ती प्रक्रिया में कोनो सिफारिश नहीं चलल आ न तो कोनो भेदभाव कैल गेल। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज देवरिया जिला के दौरा पर पहुंचने। इस दौरान वहां के महर्षि देवरहवा बाबा मेडिकल कॉलेज में पौधा लगौली। श्री पाठक केंद्र सरकार के 12 साल पूरा भइले के उपलक्ष्य में विकास भवन परिसर में लागल प्रदर्शनियों का अवलोकन कैले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माई गांव का एगो पोस्ट के अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर साझा करत कहले हमें कि पछिला 1 दशक में भारत के रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता और नवाचार तकनीक और स्वदेशी निर्माण के सहायता से खास बदलाव आयल हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी अगुवाई में पछिला 12 साल में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आ सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति भइल हो। देश के विरासत के संरक्षण आ संवर्धन बदे सरकार के कोशिशन के लेके प्रस्तुत बा एगो रिपोर्ट।
2: सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुंच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: बदायूं जिला के उझानी कोतवाली क्षेत्र में आज दोपहरिया हाईवे पर एगो ई रिक्शा ट्रैक्टर के चपेटा में आ गई। ये दुर्घटना में ई रिक्शा में बैठल 6 गो महिलन का मौत हो गयी, वहीं 3 जने और यो घायल हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक दुर्घटना 2 गो ट्रैक्टर ड्राइवरन के रेस लगौले के नाते भइल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की ओर से आज वाराणसी के रविदास घाट पर विशेष जन जागरूकता अभियान का आयोजन कैल गेल। गंगोत्री से गंगा सागर योग जत्रा में घाट पर योग आ जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित भइल। ये अभियान की शुरुआत पछिला 13 जून के गंगोत्री से भइल रहे। 20 जून के गंगा सागर में एक समापन हुई। वाराणसी ए जत्रा का एगो पड़ाव रहल। पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलन में इस समय उमस भरल गर्मी पड़ रहल हो। आज गोरखपुर के सतही कुछ जिलन में तेज बियार के साथे कहीं कहीं बरखा भइल, बाकी गर्मी से राहत नहीं मिलल हो। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। वेणी वेब 241.5 किलोमीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम विवरण में आइए आपको जानकारी दे दें आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। पहले आज के शेष कार्यक्रम। शाम 6:30 पर सुनेगा आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत हेडिंगली लीड्स में खेले जाने वाले भारत बनाम नीदरलैंड मैच के आप ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। और शाम 6:10 पर सुनेगा फिल्म संगीत। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। और अब कल दिनांक 18 जून 2026 दिन गुरुवार के प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल शाम 4 बजे सुनेगा संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कल रात 10:30 पर सुनेगा उस्ताद बिलायत हुसैन खां का गायन। कल दिन 12:45 पर सुनेगा पद्मा तलवलकर का गायन। और इसी कार्यक्रम में कल सुबह 7:31 सुनेगा नीरज मिश्रा का सितार वादन। उर्दू कार्यक्रम सुनेगा कल सुबह 9:30 पर, जिसे हम लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। खेती की बातें कार्यक्रम में कल प्रातः 6:05 पर मिर्च की खेती विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना सुनेगा कल प्रातः 6:10 पर। विचार बिंदु होगा कल प्रातः 6:30 पर। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में कल प्रातः 6:35 पर असामान्य रक्तचाप से होने वाली समस्याएं और समाधान विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर अंबिका प्रसाद यादव। श्री रामचरित मानस संगीत में पाठ सुनेगा कल प्रातः 6:40 पर। कल सुबह 7 बजे सुनिएगा गुड मॉर्निंग बनारस। मधुरिमा सुनेगा कल सुबह 8:45 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 9:50 पर और कल दिन 1:45 पर कलाकार होंगी आराधना सिंह। इनके गाय लोकगीत आप कल शाम 6:30 पर केशगत कार्यक्रम में भी सुन सकेंगे। साथ ही साथ केशगत कार्यक्रम में सुनिएगा ब्याते समय पशुओं की देखभाल विषय पर डॉक्टर मनोज कुमार से सतीश कुमार यादव की बातचीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल दिन 12:30 पर कलाकार होंगे रामशंकर। और इसी कार्यक्रम में कल रात्रि 8 बजे कलाकार होंगी मिताली सिंह। कल रात्रि 8:10 पर और कल सुबह 10 बजे सुनेगा सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला। अग्नया कार्यक्रम में कल दिन 1:15 पर ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी गर्भाशय गांठ की समस्या और इसकी समुचित चिकित्सा विषय पर डॉक्टर एकता तिवारी से बातचीत। गीत संगीत और अन्य कार्यक्रम कह के साथ सुनेगा कल दिन 2:30 बजे और अंजुमन सुनेगा कल रात्रि 9:30 पर। धरती के गीत कार्यक्रम में कल शाम 5 बजे सुनेगा बघेली गीत। कल शाम 5:15 पर युवाड़ी कार्यक्रम के आकर्षण होंगे आज की बात, मेरी पसंद, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना, फिल्म संगीत और अन्य कार्यक्रम। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुनेगा कल दिन 12 बजे। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे कल दिन 11 बजे फार्मेसी गीत एक्सप्रेस में। कल शाम 6:10 पर कल शाम 7 बजे रसरंग कार्यक्रम में शाम 7:31 पर और कल रात्रि 10 बजे आपकी पसंद कार्यक्रम में। ये थे कल के प्रमुख कार्यक्रम। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण में आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी वाराणसी है। आइए सुने फिल्म संगीत एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: आपकी गिनती देश की शान जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए
2: 0542227658।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।
4: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 21 जून 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है योग द्वारा रोगों का इलाज। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारी डॉक्टर होंगी डॉक्टर अंजना त्रिपाठी। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 18 जून 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो हमें फोन करना न भूलें। हमारा फोन नंबर है 222-1052। बनारस का एसटीडी कोड है 0542। तो सुनते रहिए आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
5: ये गीत हमने लिया है फिल्म शूरवीर से। आवाजें हैं कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज की। गीतकार हैं यशज बिहारी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म शूरवीर का गीत। आवाजें थीं कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज की। गीत का थे एसएस बिहारी और संगीत का थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम शूरवीर। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर शाम के 6:20 मिनट होने वाले हैं। अब आप दिल्ली केंद्र से सुनेंगे संस्कृत में समाचार जिन्हें हम संप्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। आदौ मुख्याः वार्ताः। G7 इत्यस्य नेतारः

0: www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह अवोचत् यत् भयोत्पादनं विरुध्य शून्य सहिष्णुतायाः नीतिमनुसृत्य
1: सर्जिकल स्ट्राइक्स बालाकोट ऑपरेशन

0: सुरक्षा संरचनायां ऐतिहासिक परिवर्तनम् अभवदिति सः इत्यपि अवोचत् यत् रक्षाक्षेत्रे आत्मनिर्भरतायाः विषये देशस्य संकल्पेन स्वदेशीयक्षमता सुदृढा सशस्त्रबलानाम् आधुनिकीकरणं भूमि समुद्र वायु साइबर अंतरिक्ष क्षेत्रेषु सज्जता च वर्धिता। रक्षामंत्री अधोरेखितवान् यत् गत द्वादश वर्षाणां यात्रा दृढतरां सुरक्षितां आत्मनिर्भरां आधिक्येन आत्मविश्वासयुताञ्च भारतमातरं प्रतिबिम्बयति इति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अस्मिन् आर्थिक वर्षे भारतस्य वार्षिक रक्षा उत्पादनं सार्वकालिकं 0.78 लक्षं कोटि रूप्यकाणि यावत् औन्नत्यं प्राप्नोदिति अवोचत्। सामाजिक प्रसार माध्यमे श्री सिंहः अकथयत् यत् एषा उल्लेखनीया उपलब्धिः पूर्वतनस्य वित्तीय वर्षस्य 0.54 लक्षकोटिरूप्यकाणाम् उत्पादनस्य अपेक्षया 0.65% यावत् प्रभावोत्पादिका वृद्धिः 2021 वित्तीय वर्षाच्च 10.1%+ अस्ति। मणिपुरे सुरक्षाबलैः उदग्रवाद विरोधाभियानानि तीव्रीकृत्य 3 उदग्रवादिनः निगडिताः।
1: सहैव 26 अवैध भूमियानि गुहास्थानानि विनष्टानि। आरक्षिबलानुगुणं निगृहिताः उदग्रवादिनः प्रतिबन्धित संघटनस्य पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA इत्यस्य सक्रिय सदस्याः सन्ति। ये पश्चिम इम्फाल मण्डलात् गृहीताः। एते अनेकेषु हिंसाचार अपराधेषु संलिप्ताः आसन्। अपरपक्षे कामजोंग उख्लोल मण्डलयोः सशस्त्र समूहैः उपयुज्यमानाः 26 अवैध गुहास्थानानि ध्वस्तीकृतानि। क्रिकेट क्रीडायां लखनऊ नगरे स्पर्धा त्रयाणां श्रृंखलायाः द्वितीयायां एकदिवसीय अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडायां अफगानिस्तान देशं विरुध्य 1-0 अग्रस्थं भारतं 3+400 धावनांकानां लक्ष्यं अददात्, यत्र दलनायकेन शुभमन गिलेन 1.5 शताधिकानि, ईशान किशनेन च 15 धावनांकानि रचितानि। इतः प्राग् अफगानिस्तान देशः पणकं विजित्य प्रथमतया क्षेत्ररक्षणं अचिनोत्। पुनः एकवारं मुख्याः वार्ताः। G7 इत्यस्य नेतारः वैश्विक स्थिरतां सुरक्षा सहकारं बहुराष्ट्रिय संघटित अपराधस्य प्रतिकार प्रयत्नाञ्च केन्द्रीय मानाः घोषणानां श्रृंखलाः स्वीकृतवन्तः। फ्रांस देशस्य एवियान नगरे G7 इति शिखर सम्मेलनेन समं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेन सह मेलनं करिष्यति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह भारतस्य सार्वभौमता निर्विवाद्यमिति कथयन आतंकवादं विरुध्य सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट ऑपरेशन सिंदूर इत्येतानि च निर्णायकानि कार्याणि इति उदघोषयत्। भारतस्य रक्षोत्पादनं निवर्तमान वित्तीय वर्षे 0.78 लक्षं कोटि रूप्यकाणि अभिलेख्यं यावत् वर्धितम् इति वार्ताः।
2: मीडियम 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब आप सुनेंगे ICC महिला T20 क्रिकेट।
3: ऑटो और यहाँ के स्वाद को इस शहर का असली आत्मा बताया। सच तो यह है कि बनारस सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एहसास है। यहाँ का हर घाट, हर गली, हर मंदिर अपने भीतर सदियों की कहानी समेटे हुए है। शायद यही वजह है कि जो एक बार बनारस आता है उसका दिल यहीं कहीं बस जाता है। इसी के साथ आज के कार्यक्रम वाराणसी वाइब्स में मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त देवेश को दीजिए अनुमति। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। हर हर महादेव।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वाराणसी वाइब्स, एफएम 100.6 पर। ये विविध भारती का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत कार्यक्रम मधुरिमा।

0: മധുരിമ, ദ സൗണ്ട് ഓഫ് മെലഡി. മധുരിമ
1: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम मधुरमा में. मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त देवेश. दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो पूरी जिंदगी एक सफर ही तो है. जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक हम लगातार चलते रहते हैं, कभी नए सपनों की ओर, कभी नई मंजिलों की ओर और कभी खुद को तलाशने की ओर. इस सफर में रास्ते बदलते हैं, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन अगर कोई चीज हर मोड़ पर हमारा साथ निभाती है तो वह है संगीत. यात्रा चाहे कुछ किलोमीटर की हो या पूरी जिंदगी की, एक अच्छा गीत उस सफर को यादगार बना देता है. कभी गीत हमें हिम्मत देते हैं, कभी मुस्कुराना सिखाते हैं और कभी पुरानी यादों से मिला देते हैं. तो आइए, आज मधुरिमा में हम बात करेंगे जिंदगी और सफर के इसी खूबसूरत रिश्ते की और सुनेंगे कुछ ऐसे गीत जो इस यात्रा को और भी मधुर बना देते हैं. दोस्तों, जब हम सफर शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले एक मुसाफिर की तस्वीर हमारे सामने मन में बनती है. एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार आगे बढ़ रहा है, उसे पता नहीं कि अगले मोड़ पर क्या मिलने वाला है, लेकिन फिर भी वह उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहता है. हम सभी अपनी अपनी जिंदगी के मुसाफिर हैं. कोई शिक्षा की राह पर चल रहा है, कोई अपने करियर की मंजिल तलाश कर रहा है, तो कोई अपने परिवार और सपनों की जिम्मेदारियां निभाते हुए आगे बढ़ रहा है. इस सफर में कई बार रास्ते आसान होते हैं और कई बार मुश्किल, लेकिन जो व्यक्ति चलते रहने का साहस रखता है वही जीवन का असली आनंद ले पाता है. इसी भावनाओं को बेहद सरल लेकिन गहरे शब्दों में व्यक्त करता अगला गीत. यह गीत हमें याद दिलाता है कि जिंदगी एक यात्रा है और हम सब उसके मुसाफिर हैं.
2: जिंदगी बहुत कीमती है.

दोस्तों, अक्सर हम अपनी मंजिल को लेकर इतने चिंतित हो जाते हैं कि रास्ते का आनंद लेना भूल जाते हैं। हम सोचते रहते हैं कि जब सफलता मिलेगी तब खुश होंगे, जब लक्ष्य पूरा होगा तब चैन मिलेगा। लेकिन सच तो यह है कि जिंदगी का असली आनंद उस यात्रा में छिपा है जो हम मंजिल तक पहुंचने के लिए तय करते हैं। रास्ते में मिलने वाले लोग, अनुभव, संघर्ष और छोटी छोटी खुशियां ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है। इसलिए जीवन हमें यही सिखाता है कि हर दिन को खुलकर जियो, हर पल का स्वागत करो और भविष्य की चिंता में वर्तमान को मत खो। इसी खूबसूरत संदेश के साथ अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसे सुनकर हर उम्र का व्यक्ति मुस्कुरा उठता है।

0: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टीसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
6: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: दोस्तों, जिंदगी का सफर हमेशा आसान नहीं होता। कई बार हमें ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ता है जहां चुनौतियां हमारा इंतजार कर रही होती है। कभी परिस्थितियां हमारे खिलाफ होती हैं, कभी हमारे अपने फैसले हमें उलझनों में डाल देते हैं। लेकिन ऐसे समय में सबसे जरूरी बात होती है आगे बढ़ते रहना। अगर नदी रुक जाए तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, और अगर इंसान रुक जाए तो उसके सपने अधूरे रह जाते हैं। इसलिए जीवन का नियम है चलते रहना, सीखते रहना और हर अनुभव से मजबूत बनते रहना। जब हम अपने लक्ष्य की ओर लगातार कदम बढ़ाते हैं तब रास्ते खुद ब खुद आसान लगने लगते हैं। यही संदेश लेकर आता है हमारा अगला गीत, जो हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।

दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम मधुरमा में। दोस्तों जीवन का सफर केवल मंजिलों का नहीं बल्कि रिश्तों का भी सफर है। रास्ते में कई लोग मिलते हैं, कुछ लोग थोड़ी देर के लिए हमारे साथ चलते हैं और कुछ पूरी जिंदगी हमारी यादों का हिस्सा बन जाते हैं। कई बार कोई दोस्त, कोई शिक्षक, कोई साथी या परिवार का सदस्य हमारे जीवन की दिशा बदल देता है। समय गुजर जाता है, लोग दूर चले जाते हैं, लेकिन उनसे जुड़ी यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। यही यादें हमारे जीवन को खूबसूरत बनाती है। संगीत भी कुछ ऐसा ही करता है। एक गीत हमें वर्षों पुरानी यादों में ले जा सकता है, एक धुन हमें उन लोगों की याद दिला सकती है जो कभी हमारे साथ थे। उन्हीं भावनाओं को बेहद खूबसूरती से व्यक्त करता है अगला गीत।

दोस्तों, जिंदगी के सफर की सबसे बड़ी सच्चाई समय है। समय कभी रुकता नहीं। जो पल अभी हमारे सामने हैं, वह कुछ ही क्षणों में अतीत बन जाएगा। इसलिए जीवन हमें हर दिन यह सीख देता है कि जो कुछ अच्छा करना है, जो सपने पूरे करने हैं और जिन लोगों से प्यार जताना है, वह आज ही कर लेना चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि सही समय आने पर कुछ करेंगे, लेकिन सच तो यह है कि सबसे सही समय वही है जो इस वक्त हमारे पास है। आने वाला कल अभी अनिश्चित है, लेकिन आज हमारे हाथ में है। तो आइए इस विचार के साथ सुनते हैं आज का अंतिम गीत, जो समय की अहमियत और जीवन की खूबसूरती को बहुत सरल शब्दों में समझाता है।

दोस्तों, आज कार्यक्रम मधुरमा में हमने जिंदगी के उस सफर की बात की जो हर इंसान अपने तरीके से तय कर रहा है। किसी की मंजिल अलग है, किसी का रास्ता अलग है, लेकिन एक बात हम सब में समान है कि हम सभी जीवन के मुसाफिर हैं। इस यात्रा में कभी सफलता मिलेगी, कभी संघर्ष, कभी खुशियां मिलेंगी और कभी चुनौतियां भी आएंगी। लेकिन अगर हौसला, उम्मीद और संगीत हमारे साथ हो तो हर सफर आसान और खूबसूरत बन जाता है। उम्मीद है कि आज का यह संगीतमय सफर आपको पसंद आया होगा और इन गीतों के माध्यम से आपने अपनी जिंदगी के कुछ खूबसूरत पलों को भी जरूर महसूस किया होगा। इसी के साथ मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त देवेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आपने मोहम्मद रफी और बलबीर के स्वर में देशभक्ति गीत सुना। साहिर लुधियानवी के लिखे गीत की धुन बनाई थी उपेन अय्यर ने। फिल्म का नाम था नया दौर। अब सुनिए सेना पर आधारित गीत स्वर गीत संगीत कैलाश खैर का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे।

फौजी भाइयों को अब हम सुनवा रहे हैं बंधन फिल्म का गीत कुमार शानू की आवाज में, बोल लिखे देव कोहली ने, संगीत आनंद राज आनंद का।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अब सुनिए अलका याग्निक और उदित नारायण को फिल्म गुलाम में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत जतिन ललित का।

0: होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PMsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
5: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा बेहतर सुरक्षा से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिली रफ्तार। नीट पुनर्परीक्षा के उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में मिलेगी 50% की छूट। मुख्यमंत्री ने जरूरतमंद उम्मीदवारों के लिए ठहरने की अस्थायी व्यवस्था करने के भी दिए निर्देश। बदायूं में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 3 घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने दुर्घटना पर जताया दुख। और लखनऊ में खेला जा रहा है भारत अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय मैच, टीम इंडिया ने जीत के लिए खड़ा किया 403 रनों का लक्ष्य। नमस्कार। प्रदेश के

0: समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के तहत आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित ग्रेड ए के 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आप सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन को बढ़ाने के सारथी हैं। श्री योगी ने कहा कि ड्यूटी के प्रति सजगता और हर कार्य में गंभीरता होनी चाहिए। ड्यूटी के दौरान रील बनाना अनुशासनहीनता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा के बेहतरीन वातावरण में अर्थव्यवस्था को गति मिली है। 9 वर्ष में यूपी की अर्थव्यवस्था तथा प्रति व्यक्ति आय 3 गुना से अधिक बढ़ी है।
1: हमने प्रदेश के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी लाने का कार्य किया, भर्ती आयोगों में, बोर्डों में, उसके परिणाम आए हैं। हमने 9 लाख से अधिक तो केवल सरकारी नौकरी दी है। प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो वातावरण बना है, लाखों नौजवानों को उसके माध्यम से निवेश से और उद्योगों की संख्या, आप सोचो कि यूपी के अंदर कुल 14,000 बड़े कारखाने थे, कुल 14,000, इतनी बड़ी आबादी का राज्य, एमएसएमई लगभग बंद हो गया था। आज हमारे पास बड़े कारखानों की संख्या इन 9 वर्ष में 32,000 से अधिक हुई है।
0: प्रदेश में नीट पुनर्परीक्षा के उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा में लगभग 3.5 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि परीक्षा के लिए दूसरे जिलों में जाने वाले और वहां ठहरने के लिए स्थान की समस्या से जूझ रहे उम्मीदवारों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाए। इस संबंध में परिवहन निगम ने निर्देश जारी कर दिए हैं। किराए पर छूट की व्यवस्था 20 और 21 जून को लागू रहेगी। उधर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
2: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों को रेखांकित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में हुई प्रगति, आत्मनिर्भरता के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की पर भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुरक्षित भारत ही विकसित भारत की आधारशिला है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में भारत ने सुरक्षा और सामरिक सामर्थ्य के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। इसी क्रम में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने वाराणसी में कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है।
3: जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने बिना किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर सबका साथ देने का काम किया है, इसलिए प्रधानमंत्री जी को और हम लोग दीर्घायु होने की कामना भी करते हैं, ताकि आने वाले भविष्य में जो प्रधानमंत्री जी का सोच है कि 2047 तक हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें हमका योगदान हो सके।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
5: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए, वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है। भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
4: वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत

0: लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
1: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
0: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये

0: के दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य में लगातार बढ़ रही गर्मी और हीट वेव की परिस्थितियों को देखते हुए बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि बढ़ाकर 24 जून तक कर दी है। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब प्रत्येक वर्ष 20 मई से 24 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा और 25 जून से विद्यालयों में नियमित पठन पाठन आरंभ होगा। एक रिपोर्ट।
3: नई व्यवस्था से पूरे प्रदेश में एक रूपता सुनिश्चित होगी और विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा शिक्षकों को स्पष्ट शैक्षणिक कैलेंडर उपलब्ध हो सकेगा। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि विद्यालय खुलने से पहले सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएं। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 220 कार्य दिवस और नियमित पठन पाठन सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारियों को भी स्थानीय स्तर पर अवकाश घोषित करने से पूर्व इस विधिक प्रावधान को ध्यान में रखने के निर्देश दिए गए हैं। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
2: बदायूं जिले के थाना उजानी क्षेत्र में ग्राम बुटला के पास आज एक ट्रैक्टर और ई रिक्शा में हुई टक्कर में 6 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 3 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदायूं में हुई दुर्घटना में जान माल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि उनकी सहानुभूति उन सभी के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे में हुई जनहानि पर गहरा शोक जताया है। लखनऊ में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आज भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच खेला जा रहा है। शुभमन गिल और ईशान किशन के शतकों की बदौलत भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 403 रनों का लक्ष्य रखा है। समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 2 विकेट के नुकसान पर 86 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा बेहतर सुरक्षा से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिली रफ्तार। नीट पुनर्परीक्षा के उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में मिलेगी 50% की छूट। मुख्यमंत्री ने जरूरतमंद उम्मीदवारों के लिए ठहरने की अस्थायी व्यवस्था करने के भी दिए निर्देश। बदायूं में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 3 घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने दुर्घटना पर जताया दुख। और लखनऊ में खेला जा रहा है भारत अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय मैच, टीम इंडिया ने जीत के लिए खड़ा किया 403 रनों का लक्ष्य। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: Austria beat Jordan 3-1 in San Francisco. In Group I, Kylian Mbappe scored twice for France as they beat Senegal 3-1 in...
2: जयमाला कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में लीजिए अब सुनिए दीवाना फिल्म का गीत, बोल समीर के आवाजें कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की।

0: के साथ भी दो तरफा मीटिंगें की। पेरिस में विवाटेक 2026 के दौरान इंडिया पवेलियन की इफ्तिताही तकरीब में भारत और फ्रांस ने जिद्दत तराजी, मस्नूई जहानत और तकनीकी ताउन के फरोग के अज़्म का इआदा किया। रेलवे ने कनेक्टिविटी और मुसाफिरों की हिफाजत को बेहतर बनाने के लिए 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई प्रोजेक्टों की मंजूरी दी। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल मुल्क के शिमाल मशरकी इलाकों और मगरबी बंगाल के जैली हिमालयाई खत्ते में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। और मर्दों के क्रिकेट में लखनऊ में 3 एक रोजा बैन अलावी मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 403 रन का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। फ्रांस के शहर एवियां में G7 सरबराह इजलास 2026 के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान एक अहम दोतरफा मीटिंग हुई। मीटिंग के दौरान वजीर आजम मोदी ने मगरबी एशिया में अमन के कयाम की कोशिशों में होने वाली पेशरफ्त पर सदर ट्रंप की तारीफ की। वजीर आजम ने कहा कि भारत हमेशा समंदरी रास्तों पर जहाजों की आमदोरफ्त की आजादी की अहमियत पर जोर देता रहा है और तमाम मुल्कों को इसके तहफ्फुज के लिए मिलकर काम करना चाहिए। वजीर आजम ने मजीद कहा कि दुनिया के मुख्तलिफ समंदरों में बहरी तिजारत के शोबे से वाबस्ता लाखों भारतीय मल्लाह अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और उनकी सलामती भारत के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मस्नूई जहानत AI के महफूज तेज रफ्तार और मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने के मौजू पर मुनक्किदा वर्किंग लंच में शिरकत की। इस इजलास में G7 के रुकन मुल्कों, शराकतदार ममालिक और मस्नूई जहानत की मारूफ कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान शरीक हुए, जहां डिजिटल इख्तरा के मुस्तकबिल पर ख्यालात का तबादला किया गया। वजीर आजम मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्स ने इलाकाई और आलमी हालात व वाकयात पर बातचीत की, जिसमें मगरबी एशिया की सूरत हाल और रूस यूक्रेन तनाजा भी शामिल था। दोनों रहनुमाओं ने दोतरफा ताल्लुकात में पेशरफ्त का जायजा लिया और भारत जर्मनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में नई रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। इस सिलसिले में चांसलर मर्स के भारत के कामयाब दौरे और रवां साल भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती मुहदे के मुजाकरात की तकमील का भी जिक्र किया गया। चांसलर मर्स ने वजीर आजम मोदी को इस साल जर्मनी में मुनक्किद होने वाली 8वीं भारत जर्मनी बैन हुकूमती मुशावरत में शिरकत की दावत दी। वजीर आजम मोदी ने सरबराह इजलास के मौके पर यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फोन देर लेन और यूरोपीय काउंसिल के सदर अंतोनियो दा कोस्टा के साथ भी मीटिंग की। पेरिस में जारी विवाटेक 2026 में भारतीय पवेलियन के इफ्तिताह के मौके पर भारत और फ्रांस ने इख्तराम मस्नूई जहानत और टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन के अपने अहद को दोहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल और फ्रांस की मस्नूई जहानत और डिजिटल उमूर से मुतालिक वजीर एनेली हेनाम्प ने दोनों ममालिक के माबैन कलीदी शराकतदारी की बढ़ती हुई अहमियत को उजागर किया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इस तरहकारों और स्टार्टअप से खिताब करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुएल मीखों के जरिए भारत फ्रांस इख्तरा के साल 2026 के ऐलान के जरिए भारत और फ्रांस की शराकतदारी मजीद मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि मस्नूई जहानत AI के दौर में भारत को कई नुमाया फवायद हासिल हैं, जिनमें नौजवान आबादी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी स्टेम के माहिरीन की बड़ी तादाद, मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचा और जमहूरी तर्ज हुक्मरानी शामिल हैं। उन्होंने भारत फ्रांस इख्तरा के साल का जिक्र करते हुए कहा कि स्टार्टअप्स और तहकीकी इदारों के जरिए बढ़ता हुआ ताबुन नई राहों और मौके को जन्म दे रहा है। काबिले जिक्र है कि विवाटेक 2026 में कायम इंडिया पवेलियन कौमी सतह के सबसे बड़े पवेलियन में शुमार होता है, जहां भारत के तेजी से फरोग पाते हुए स्टार्टअप्स और इख्तराई माहौलियाती निजाम की भरपूर नुमाइश की जा रही है। पेरिस से महेश चोबड़े के

0: रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के अपने दौरे के एक हिस्से के तौर पर आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय बिरादरी के अफराद उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उनके खैर मकदम के लिए तैयारियां जारी हैं। कल सुबह वज़ीर आज़म मोदी सरकर्दा चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान के साथ मीटिंगें करेंगे और तवक्को है कि यह तबादला ख्याल दोपहर तक जारी रहेगा। इसके बाद वज़ीर आज़म मोदी विवाटेक समिट में शिरकत करेंगे, चूंकि यूरोप की टेक्नोलॉजी और अख्तरात से मुतालिक एक अहम मीटिंग है। तवक्को है कि जनाब मोदी इस मौके पर खिताब भी करेंगे। शाम में वज़ीर आज़म एक कम्युनिटी तकरीब में शिरकत करेंगे और भारतीय बिरादरी के साथ तबादला ख्याल करेंगे। भारतीय रेलवे ने गुजरात, महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल और मध्य प्रदेश में रेलवे की गुंजाइश बढ़ाने, माल बर्दारी के निजाम को बेहतर बनाने, हिफाजती इंतजाम को मजबूत करने और शहरी नकलो हमल के बुनियादी ढांचे को जदीद बनाने के लिए 1200 करोड़ रुपए से जायद मालियत के मुतादित बुनियादी ढांचा जाती मंसूबों की मंजूरी दी है। इन मंसूबों में गुजरात के एक अहम रेलवे सेक्शन पर दोहरी लाइन बिछाने, महाराष्ट्र में मालगाड़ियों के लिए एक नई कॉर्ड लाइन तामीर करने, मशरकी रेलवे में सिग्नलिंग निजाम को जदीद बनाने और इंदौर में एक अहम रोड ओवर ब्रिज की असरे नौ तामीर शामिल है। इन इकदामात से रेलवे ऑपरेशंस की कारकर्दगी में इजाफा, मसरूफ रेलवे राहदारियों पर दबाव में कमी, मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात की फराहमी और मौशी सरगर्मियों को फरोग मिलने की तवक्को है। कच्छ के खित्ते में रेलवे रास्ते को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए मगरबी रेलवे के 49 किलोमीटर तवील आदिपुर भुज सेक्शन की दोहरी लाइन बिछाने के मंसूबे को तकरीबन 493 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी गई है। इस मंसूबे से इलाके में मुसाफिरों और माल बर्दारी दोनों के लिए बेहतर सहूलतें फराहम होंगी। इस तरह भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र में 3.7 किलोमीटर तवील सोमटाने चकली कोर्ड लाइन की तामीर की मंजूरी दी है, जिस पर तकरीबन 172 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जदीदकारी के एक अहम इकदाम के तहत मशरकी रेलवे में 450 करोड़ रुपए के सिग्नलिंग अपग्रेडेशन मंसूबे को भी मंजूरी दी गई है। रेलवे और इत्तलात नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज तकरीबन 600 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से पुणे रेलवे स्टेशन की बड़े पैमाने पर तौसी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा 6 प्लेटफार्मों के साथ मजीद 6 नए प्लेटफार्म तामीर किए जाएंगे, जिसके बाद प्लेटफार्मों की कुल तादाद 12 हो जाएगी। इसके अलावा कामकाज की कारकर्दगी और मुसाफिरों की हिफाजत को बेहतर बनाने के लिए मौजूदा रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम की जगह जदीद इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम नस्ब किया जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर अमल करते हुए भारत ने नुमाया तरक्की की है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख्वातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए मुतअद्दिद अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज आपके लिए एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम मुल्क के सकाफती विरसे के तहफ्फुज़ और फरोग के लिए हुकूमत के जरिए किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
0: भारत ने अपनी तहजीबी विरासत के तहफ्फुज, फरोग और उसका जश्न मनाने के लिए कई तारीखी इकदामात किए हैं, जिनसे लाखों शहरियों में फख्र का जज्बा पैदा हुआ है। अहम वाकयात में सबसे अहम वाकया जनवरी 2024 में पेश आया, जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में अजीम उशान श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को अंजाम दिया। ये सदियों पुरानी एक ख्वाहिश की तकमील थी। हाल ही में मंदिर का दौरा करने वाले एक अकीदतमंद पंकज जारिया ने आकाशवाणी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए अपने तजुर्बात बयान किए।
2: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
0: मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में महाकाल लोक प्रोजेक्ट का पहला मरहला अक्टूबर 2022 में कौम के नाम वक्फ किया गया। ये अजीम कॉरिडोर शानदार मुजस्मों, दीवारों पर बने फन पारों और तामीरात पर मुश्तमिल है, जो भगवान शिव की जिंदगी और उनसे मंसूब रिवायात की अक्कासी करते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी और मस्नूई जहानत पर मबनी निगरानी के निजाम से आरास्ता महाकाल लोक विरासत और जिद्दत का

0: तीन इम्तिजाज पेश करता है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसका इफ्तिताह दिसंबर 2021 में किया गया था, ने यात्रियों के सफर के तजुर्बे को यकसर बदल कर रख दिया है। ये कॉरिडोर मंदिर को बराह रास्त दरियाए गंगा से जोड़ता है। 5.5 एकड़ पर मुहित इस प्रोजेक्ट ने लोगों की रसाई को बेहतर बनाया है और भारत के सबसे मौजिज रूहानी मराकज में से एक को नई जिंदगी बख्शी है। आकाशवाणी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए वाराणसी के रहने वाले प्रियांशु सिंह ने कहा कि ये कॉरिडोर यात्रियों की आमद और रफ्त में काफी आसानी फराहम कर रहा है।
1: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
0: ये इनकलाबी इकदामात इस बात की अक्कासी करते हैं कि मुल्क अपनी सकाफती जड़ों के तहफ्फुज़ के साथ साथ एतमाद के साथ मुस्तकबिल की जानिब गामज़न है। सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
2: दिल्ली पुलिस के खसूसी सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के मुबैना हैंडलर शहजाद भट्टी से वाबस्ता 8 रुकनी कसीर रियासती दहशतगर्दी मॉड्यूल के मजीद 5 मुलजमों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन गैंग बेस्ट 2.0 के दौरान मस्कुरा मॉड्यूल के 3 अरकान को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान को दिल्ली और पड़ोसी रियासतों में पुलिस अहलकारों को निशाना बनाने, पाकिस्तान में मौजूद राबताकारों की तशहीर करने और ISI की सरपरस्ती में मुबैना तौर पर कायम तंजीम तहरीक तालिबान हिंदुस्तान को फरोग देने की जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 5 हथियार, शहजाद भट्टी नेटवर्क से मुतालिक पोस्टर्स और दीगर काबिल एतराज मवाद भी बरामद किए, जिनमें पुलिस अहलकारों को धमकियां देने वाली वीडियोज भी शामिल हैं। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने कल मुल्क के शिमाल मशरकी इलाकों और मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खत्ते में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल बिहार, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के इलाकों में भी शदीद बारिश का इम्कान है। IMD ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन के दौरान तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड और बिहार के मजीद कुछ इलाकों, नीज छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में जनूब मगरबी मानसून की पेशकदमी के लिए हालात साजगार हैं। महकमे मौसमियात ने अगले 2 रोज के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक कल

0: हालात साजगार हैं। महकमे मौसमियात ने अगले दो रोज के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। आईएमडी के मुताबिक कल झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और अंडमान और निकोबार जजायर में इसी तरह के हालात रहने का इम्कान है। क्रिकेट में लखनऊ में तीन एक रोजा बैन अलावामी मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 403 रन का निशाना रखा है। इससे कबल भारतीय टीम 49 ओवर्स में 5 गेंदों में 402 रन बनाकर आउट हो गई। शुभमन गिल और ईशान किशन ने सेंचुरियां बनाई। गिल ने 154 रन बनाए जबकि किशन ने 125 रन से स्कोर किए। इससे कबल अफगानिस्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। अब से कुछ देर पहले तक अफगानिस्तान की टीम ने 44.3 ओवर्स में 8 विकेट पर 232 रन बना लिए थे। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एवियों में G7 सरबराह इजलास के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग की। मीटिंग में बहरी जहाजों के अमले की सलामती और आबनाई हुरमुज को खुला रखने के उमूर पर बातचीत की गई। वजीर आजम ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय काउंसिल के सदर अंतोनियो कोस्टा और यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फोन देर लेन के साथ भी दोतरफा मीटिंगें की। पेरिस में वेबटेक 2026 के दौरान इंडिया पवेलियन की इफ्तिताही तकरीब में भारत और फ्रांस ने जिद्दत तराजी, मसनूई जहानत और तकनीकी ताउन के फरोग के अज़्म का इरादा किया। रेलवे ने कनेक्टिविटी और मुसाफिरों की हिफाजत को बेहतर बनाने के लिए 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई प्रोजेक्टों की मंजूरी दी है। और मर्दों के क्रिकेट में लखनऊ में तीन एक रोजा मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 403 रन का निशाना रखा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: After the pitch of the ball.

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से।
1: ये कौन है? कबाब में हड्डी।
0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज जिक्र उस अभिनेता का जिसने सन 1955 में बनी बिमल रॉय की फिल्म देवदास में चुन्नी लाल की यादगार भूमिका निभाई थी।
2: हाय हाय, तुम क्यों रुक गई? तुम रुकी क्या, दिल हमारा रुक गया, गम के मारे आसमां भी झुक गया। ए देवदास, तुम कहाँ चले, घबराने की क्या बात है? बैठो बैठो बैठो। हाँ तो शुरू हो जाओ उसका।

0: मोतीलाल को हिंदी फिल्मों के बेहद सौम्य और शिष्ट अभिनेताओं में गिना जाता है। सन 1910 में शिमला में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम था मोतीलाल राजवंश। सन 1934 में आई फिल्म शहर का जादू से मोतीलाल की अभिनय यात्रा की शुरुआत हुई थी। सागर मूवी टोन के बैनर तले बनी इस फिल्म के निर्देशक थे केपी घोष। 30 के दशक में नायिका सविता देवी के साथ फिल्मों में उनकी जोड़ी बड़ी मशहूर रही। इस जोड़ी की कुछ खास फिल्में थीं डॉक्टर मधुरिका, जिसके लेखक थे जाने माने साहित्यकार कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, रंजीत मूवी टोन की फिल्म अछूत, जयंत देसाई की फिल्में दीवाली और शादी, जिनमें मोतीलाल और सविता देवी नायक नायिका थे। बाद में चतुर्भुज जोशी की सन 1941 में आई फिल्म परदेसी और ससुराल में वे अभिनेत्री माधुरी के साथ दिखाई दिए। भारतीय सिनेमा की यात्रा पर शुरुआती दौर में पारसी रंगमंच और नौटंकियों के बेहद कलाबाजी भरे अभिनय की गहरी छाप पड़ी थी। अभिनय में अति नाटकीयता का समावेश होता था, लेकिन कहा जाता है कि मोतीलाल ने हिंदी सिनेमा में स्वाभाविक और सहज अभिनय की शुरुआत की, जिसमें संवादों की अदायगी उतनी नाटकीय न होकर बिल्कुल आम जिंदगी की बोलचाल जैसी होती थी।
1: देखते हुए रंगीन जिंदगी, ये वो लोग हैं जिन्हें सड़कों पर बटुए मिले और उन्होंने लौटाए नहीं।
2: इसे मुझे जानने की जरूरत नहीं, मुझे इजाजत दीजिए।
1: क्या काम करते हो?
2: बेकार।
1: नौकरी चाहते हो?
2: मुझे नौकरी मिलेगी।
1: इस पते पर कल चले जाना और मैनेजर साहब से मिलना।
0: जाने माने फिल्मकार महबूब खान की शुरुआती फिल्मों में मोतीलाल नायक रहे थे, जैसे सन 1943 में आई तकदीर, सन 1937 में आई जागीरदार और सन 1938 में आई फिल्म हम तुम और वो। केदार शर्मा की फिल्म अरमान और कलिया में भी मोतीलाल ने काम किया था। सन 1945 में आई थी फिल्म पहली नजर, जिसमें वीणा मोतीलाल की नायिका थी। हम आपको याद दिला दें कि इसी फिल्म से पार्श्व गायक मुकेश की गीत यात्रा शुरू हुई थी। मोतीलाल मुकेश के चचेरे भाई थे और वे ही मुकेश को फिल्म संसार में लाए थे। फिल्म पहली नजर में संगीतकार अनिल विश्वास के निर्देशन में मुकेश ने गाया था अपना पहला नगमा।

सन 1948 में आई फिल्म गजरे, जिसमें सुरैया मोतीलाल की नायिका थीं। इस फिल्म के संगीतकार थे अनिल विश्वास और गीतकार गोपाल सिंह नेपाली। ये है सुरैया का गाया नगमा।

सन 1949 में आई रूप शौरी की फिल्म एक थी लड़की, इसमें मोतीलाल की नायिका थी मीना शौरी। आपका ये दोस्त इस फिल्म का एक दुर्लभ गीत ढूंढ कर लाया है खास तौर पर आपके।

0: मोतीलाल की सबसे उल्लेखनीय फिल्म मानी जाती है सन 1952 में आई जेमिनी प्रोडक्शंस की मिस्टर संपत। आर के नारायण के प्रसिद्ध उपन्यास पर बनी इस फिल्म में मोतीलाल ने एक शरीफ बदमाश का किरदार निभाया था।
1: इतना ही नहीं जनाब, मैं कहता हूँ कि आज आधी से ज्यादा दुनिया 420 है। जिधर निगाह उठा के देखिए, चोर बदमाश डाकू नजर आते हैं, और मजा यह है कि देखने में आपसे और हमसे ज्यादा शरीफ मालूम होते हैं। कौन जाने यहाँ हम लोगों में कौन शरीफ है और कौन 420। न जाने क्या होने वाला है दुनिया का। 8 आने के 12 केले, लूट मची हुई है चारों तरफ। जिसको देखो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। आपने वो केले वाले को मुझे ना बताया, सीधा पुलिस की हिरासत में भेज देता उसको।
2: अच्छा
1: जी हाँ, आप लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और क्यों हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि मैं थर्ड क्लास पैसेंजर हूँ। जी नहीं, मैं चाहूँ तो फर्स्ट क्लास में सफर कर सकता हूँ, सलून में भी सफर कर सकता हूँ, लेकिन चाहता नहीं। पूछिए क्यों। मैं ये जानना चाहता हूँ कि थर्ड क्लास के पैसेंजरों को क्या क्या तकलीफें हैं, उनको किन किन सहूलियतों की जरूरत है। मैं आप लोगों का हूँ, जनता का हूँ। बाय द वे, जनता एक्सप्रेस के बारे में तो आपने सुना होगा, वो मेरा ही आइडिया था।
2: आपका आइडिया?
1: ऑफ कोर्स।
2: टिकट प्लीज, टिकट, टिकट प्लीज।
1: पास।
2: क्या मैं देख सकता हूँ?
1: ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। मैंने तुम्हें कहीं देखा है, शर्मा जी के घर।
2: कौन शर्मा?
1: अरे भाई वो तुम्हारे DTS।
2: आपका मतलब वर्मा जी से है?
1: वर्मा जी, वर्मा शर्मा में क्या फर्क है, दोनों मेरे जिगरी दोस्त हैं। क्या तनख्वाह मिलती है तुम्हें?
2: 125 रुपए।
1: 125 रुपए। और डियरनेस अलाउंस और भत्ता?
2: 50 रुपए।
1: 50 और 125, 175 रुपए मिलते हैं। और दिन रात बैल की तरह से काम करते हो। जुल्म है ये, सरासर जुल्म है। मैं तुम्हारे लिए वर्मा जी से बात करूंगा। क्या नाम है तुम्हारा?
2: राम प्रसाद।
1: मैं वर्मा जी से तुम्हारे लिए बात करूंगा और तरक्की कराने का इंतजाम करूंगा। अब तुम जा सकते हो।
2: थैंक यू सर, थैंक यू।
0: सन 1954 में HS रवेल की फिल्म मस्ताना में मोतीलाल ने एक यादगार भूमिका निभाई। इस फिल्म में उनकी नायिका थी निगार सुल्ताना।

0: सन 1955 में आई मोतीलाल के फिल्म जीवन की सबसे यादगार फिल्म देवदास।
1: अरे देवदास, अरे चुनिंदा हो तुम, ये क्या सूरत बना रखी है, पहचाने भी नहीं जाते, क्या खबर है?
2: खबर बस यही है कि जिंदा है। तुम यहाँ कैसे?
1: भाई कलकत्ता हमें रास नहीं आया, दिल्ली में एक नौकरी कर रखी है, उस सिलसिले में दौरे पे जा रहे हैं, आज यहाँ कल वहाँ। तुम कहाँ जा रहे हैं?
2: ये अभी कुछ तय नहीं किया।
1: मकसद?
2: जिंदगी में अब कोई मकसद ही नहीं रहा चुनी बाबू।
1: तुम रहे वही देवदा। अच्छा ठहरो, इतने दिनों के बाद मिले हैं, मुलाकात को रंगीन किया जाए, क्या ख्याल है? अब तो हम सोडा मिलाने के भी कायल नहीं रहे, क्यों फजूल सोडे पे पैसे जाया किया जाए, लेकिन तुम्हें तकलीफ होगी, थोड़ा पानी मिला लो।
2: मैंने पीना छोड़ दिया है चुनी बाबू।
1: किसी ने अपने सर की कसम तो नहीं दिला दी?
2: ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस नहीं पीऊंगा।
1: अरे अरे, मगर ये गिलास कहाँ ले जाते हो? तुम नहीं पियोगे तो मैं पी लूंगा। अच्छा ये वो पुराना मर्ज है या कोई नया रोग लगा लिया? अरे कुछ कहते क्यों नहीं?
2: क्या कहूँ चुनी बाबू, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अब तो बस यही अच्छा लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगे।
1: तुम्हें क्या दुख है? मैं अच्छी तरह समझता हूँ देवदास, लेकिन ये ना समझो कि सिर्फ तुम ही इस दुख के शिकार। जब इस दुख की आग सीने में भड़कती है तो इसी का सहारा लेना पड़ता है, इसी आग से उस आग को बुझाया जा सकता है, और कोई चारा नहीं।
0: सन 1956 में फिल्म जागते रहो, जिसमें मोतीलाल के अभिनय की मिसाल आज भी दी जाती है।

0: सन 1959 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनाड़ी में मोतीलाल एक कड़क बिजनेसमैन के किरदार में नजर आए थे।
1: आज ये इस घर में हो क्या रहा? तुम बैठो, मैं भी आता।
2: ये क्या गाना पूछी हो रही तुम घर?
3: कुछ नहीं चाचा जी, यूं ही बात कर रहे थे। वो राजकुमार नीचे आए हैं ना।
1: तुम्हें कैसे मालूमगा कि उसका नाम राजकुमार है?
3: जी मुझे आशा ने बताया।
1: आशा को कैसे मालूमगा कि वो कौन है, क्या है, कहाँ काम करता है?
3: जी मैं जी आरती। घबराओ नहीं आशा, चाचा जी तुम्हें काट थोड़ी खाएंगे, बताओ ना।
1: हाँ, डरने की क्या बात है, राजकुमार को तो मैं खुद पसंद करता हूँ, मेरे यहाँ तो काम करता है वो।
3: सॉरी।
1: हाँ मैं क्या कह रहा था, राजकुमार बड़ा काबिल लड़का है, बड़ा होनहार है, बड़ा ईमानदार है।
3: हाँ और बड़े अच्छे चित्रकार भी हैं और गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं।
1: अच्छा,
3: मुझे आशा ने बताया।
0: सन 1959 में दिलीप कुमार और मोतीलाल एक साथ नजर आए फिल्म

0: रॉय की फिल्म परख, मोतीलाल का यादगार अभिनय।
1: ये क्या पागलपन फिर से शुरू कर दिया है तूने? कहाँ था डेढ़ महीने से?
2: तुम्हारे ही काम के लिए गया था मन।
1: मेरा काम?
2: हाँ, तुम्हें याद नहीं, पिताजी की वसीयत के मुताबिक वो 5 लाख रुपए का चेक जो राधा नगर मैंने भेजा था, उस वक्त तुम्हें कहा था कि ये रुपया किसी गलत आदमी के हाथ में ना पड़ जाए, इसलिए मैं वहाँ गया। वहाँ जाके पोस्ट ऑफिस में एक डाकिये की नौकरी कर ली और वहाँ से छुट्टी लेके अब अपनी माँ के दर्शन करने के लिए आया हूँ।
1: लेकिन तुझे इस पोशाक में देखकर मुझे बड़ा डर लगने लगता है।
2: डर लगने लगता है क्यों माँ?
1: कुछ ऐसी ही पोशाक में तेरे पिताजी को वो गांव छोड़ना पड़ा था, इसलिए अब तुझे उस जिंदगी के नजदीक जाके देख मेरा रोम रोम कांपता है।
2: माँ तुम बहुत ही भोली हो, मैं को असली डाकिया थोड़ी बन गया हूँ, ये तो एक स्वांग है, देखो तुसी तमाशा क्या क्या होता है।
0: सन 1965 में मोतीलाल ने एक फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था। ये फिल्म थी छोटी छोटी बातें, जिसमें नादिरा उनकी नायिका थी।

0: रहता है।
1: ये फिल्म नाकाम रही थी और मोतीलाल को इससे गहरा सदमा पहुंचा था। इसी साल यानी सन 1965 में मोतीलाल का देहावसान हो गया था।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन छायागीत कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वज्रदंती भारत का गम एक्सपर्ट।
2: टीनेज में पिंपल्स नहीं आएंगे तो कब आएंगे? चिल, नेचुरल है।
3: इसका सोल्यूशन वो भी नेचुरल है,
2: वीको का टर्मरिक फेस वॉश, हल्दी के असरदार एंटीऑक्सीडेंट्स और कर्क्यूमिन के साथ। ये बैक्टीरिया को मिटाए और पिंपल्स, एक्ने और ब्लैकहेड्स दूर रखने में मदद करे। वाओ, सो ब्यूटीफुल,
3: नेचुरल है।
2: नेचुरल ब्यूटी वॉश।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, प्यार की पहली मुलाकात और उसका पहला एहसास जिंदगी के सबसे खूबसूरत और जादुई अनुभवों में से एक होता है। वो पहली नजर, किसी को चुपके से देखने की वो आदत, नजरें चुराकर बार बार देखने का वो मीठा सा एहसास, न जाने कैसा जादू होता है उस पहली नजर में, है ना?

पहले प्यार की यादें और इसका खुमार जिंदगी भर जहन में ताजा रहता है। पहला प्यार सिर्फ किसी को पसंद करने का नाम नहीं, बल्कि महबूब की मौजूदगी में सुकून और गैर मौजूदगी में एक मीठा सा खालीपन महसूस करने जैसा होता है। पहला प्यार प्रेम की गहराई और मासूमियत का वो जादुई दौर है जो हमें भीतर तक बदल देता है।

उफ, ये प्यार, पहली नजर में प्यार का वो जादुई एहसास, क्या कहने। प्यार में एक अलग ही दुनिया जीने लगता है मन। खुद से बातें करना, बार बार खुद को आईने में देखना, सजना संवरना, हर बात पे दिल की धड़कन का बढ़ जाना, सुर्ख चेहरा और एक अनजानी सी घबराहट लिए मन इधर उधर भटकता है। बस महबूब के ख्यालों में खोया रहता है ये मन।

0: छाए गीत में अब लेते हैं एक अंतराल।
1: पिंपल, टीनेज में पिंपल्स नहीं आएंगे तो कब आएंगे? चिल, नेचुरल है।
2: इसका सोल्यूशन?
1: वो भी नेचुरल है। वीको का टर्मरिक फेस वॉश, हल्दी के असरदार एंटीऑक्सीडेंट्स और कर्क्यूमिन के साथ, ये बैक्टीरिया को मिटाए और पिंपल्स, एक्ने और ब्लैकहेड्स दूर रखने में मदद करे।
2: वाओ, सो ब्यूटीफुल,
1: नेचुरल है।
2: नेचुरल ब्यूटी वॉश।

इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक भावनात्मक सफर है प्यार, खुमारी, बेचैनी, उम्मीद और रोमांस का अद्भुत मिश्रण। मन बेताबी से अपने प्यार को थामे रखना चाहता है, प्रेम को पकड़ना चाहता है, छूना चाहता है, उसे महसूस करना चाहता है, और यही प्यार धीरे धीरे मन के भीतर एक पूरा ब्रह्मांड रच लेता है।

प्रेम के सावन में पहली बार भीगा हुआ मन का कोना जीवन में कभी नहीं सूखता। किसी के होने से भीतर एक ऐसा स्पंदन होता है जो खामोशियों में भी शब्द ढूंढ लेता है। कितना तेज, कितना सुंदर, कितना गहरा होता है ये प्यार। और जब दो टूटे बिखरे उजड़े हुए लोग आ मिलते हों, अपने खोए हुए टुकड़ों को, बिखरे हुए वजूद को और उजड़े हुए चमन को खोजते खोजते, तो यही प्यार और तीव्र हो जाता है।

वो पहला प्यार जो अब आपका संसार बन चुका होता है, इस शोर और भाग दौड़ भरी दुनिया में अब कोई तुम्हें बाहों का सहारा दे रहा है, अपने दिल में जगह दे रहा है, तो तुम बिना किसी डर के समा जाओ उसकी बाहों में, बैठ जाओ उसके दिल के आंगन में, दुनिया का सारा बोझ उतार दो, खिलखिलाकर हंस पड़ो, निश्चिंत हो जाओ उसके आगोश में। कभी कभी एक गहरा आलिंगन वो कह जाता है जो शायद हजार शब्द नहीं कह पाए।

0: और अब छाया गीत से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
1: टीनेज में पिंपल्स नहीं आएंगे तो कब आएंगे? चिल, नेचुरल है।
2: इसका सोल्यूशन
1: वो भी नेचुरल है, वीको का टर्मरिक फेस वॉश, हल्दी के असरदार एंटीऑक्सीडेंट्स और कर्क्यूमिन के साथ। ये बैक्टीरिया को मिटाए और पिंपल्स, एक्ने और ब्लैकहेड्स दूर रखने में मदद करे। वाओ, सो ब्यूटीफुल,
2: नेचुरल है।
1: नेचुरल ब्यूटी वॉश।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अभी अब समवेत स्वर में आकाशवाणी गीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 21 जून 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है योग द्वारा रोगों का इलाज। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारी डॉक्टर होंगी डॉक्टर अंजना त्रिपाठी। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 18 जून 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच, तो हमें फोन करना ना भूलें। हमारा फोन नंबर है 222-1052, बनारस का एसटीडी कोड है 0542। तो सुनते रहिए आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
2: मुझे याद कर कभी श्रद्धा से झुक जाए अगर तुम्हारा सर, तो मान लेना तुम्हारे भीतर ही है मेरा होना। कभी मेरी राह पर चलते हुए चोट खाओ, रुक जाओ फिर भी चलो, तो मान लेना मैं हूं, मैं था, मैं रहूंगा।
3: हमने तो शराबत से अपनी आजादी ली, ऐसा सारी दुनिया कहती है। तब मैं कहूंगा कि जो शराबत से चीज मिली है उस चीज को रखने के लिए भी हमारी शरीफ होना चाहिए।
2: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक शुक्रवार गांधी चर्चा कार्यक्रम में सुबह 6:25 पर सुनिए बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ।

0: बजने दे जरा। जी हाँ श्रोताओ, आपके मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी अब आपके और भी नजदीक आपके मोबाइल सेट पर। जी हाँ, आकाशवाणी वाराणसी अब न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। तो जहाँ भी हो आप, अब हर पल आपके साथ आकाशवाणी वाराणसी न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी वाराणसी के साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी, और हर पल हर घड़ी बजने दें अपने मन का रेडियो।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से संप्रसारित करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एमिया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
3: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं।
2: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 3 महत्वपूर्ण घोषणा पत्र अपनाए हैं। इनमें संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
4: 2 प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। 3rd प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय

0: December, fourth plant of semiconductors will be fully functional commercial manufacturing in our country.
1: इस बीच श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।